0: समीन, आपके लिए पेश करते हैं तारीख के आईने में आज का दिन।
1: अमित, तारीख की अगर कात करो, अगर इस प्रत कुन दोहच कात करो, प्रत कुन दोहच छ पन आक अहमियत
0: जी,
1: न के तारीख हवाले तो प्रत इंसान इस तिच्छ पन आक अहमियत।
0: जैसे
1: इंसान अमर तिच्छ अलग अलग क्वालिटीज ये मन आक अलग अलग कशु शरारत खसान कह चु वारिया काम आसान कह चु अंडरस्टैंडिंग आसान कह चु न अंडरस्टैंडिंग आसान अगर ये के सार नहीं चुन नेचर हुई आसान के सारी चुन गलत थे आसान खराब थे आसान के सही चुन सही थे आसान के अच्छा कमियां भी होती है इंसानों में और क्वालिटीज भी होती है। अब कर गुडनती प्रोग्राम के शुरुआत मजी कत के इंसान पनस पानस सहन कुछ पल रहता केहन सहन चु रोजान तमिस पनस पानस समझन मौक मिलान।
0: बिल्कुल,
1: तो कुछ चीज़ें हैं जो फॉर द टाइम बिंग आती है और टाइम बिंग चली जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जन उम्र भर रोजान चे। जैसे कि तारीख की बात करें, तारीख के आईने में हम अगर आज के दिन की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही हैं जो आज भी हम याद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर आज के दिन की बात करें, आज ही के दिन 1836 में पेरिस की मशहूर तारीखी यादगार आर्क डी इसका इफ्तिताह किया गया था।
0: जी, आज ही के दिन 29 जुलाई 1848 को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ यंग एयरलैंड बगावत का एक अहम वाकया पेश आया।
1: दुनिया के मारूफ मुसव्विर विंस्टन, मैं माजरत चाहूंगी, कभी कभी खराब हो जाता है थोड़ा बहुत या ज्यादा बोलने से। वेल, दुनिया के मारूफ मुसव्विर विंसेंट वैन गोग का आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1890 को फ्रांस में इंतकाल हुआ।
0: सन 1900 में इटली के बादशाह एम्ब्रोटो अव्वल को 29 जुलाई को मोनिजा में कत्ल कर दिया गया।
1: 1921 में आज ही के दिन एडवॉल्फ हिटलर नाजी पार्टी की कयादत में फैसला कुन मकाम पर पहुंचा और पार्टी का चेयरमैन बना।
0: 1948 को आज ही के दिन दूसरी आलमी जंग के बाद पहले समर ओलंपिक गेम्स का आगाज आज ही को हुआ, यानी आज ही उसका आगाज लंदन में हुआ था।
1: अमेरिकी सदर ड्वाइट डी आइजन ने आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पर दस्तखत किए जिसके नतीजे में नासा कायम हुआ।
0: 29 जुलाई 1981 को लंदन के सेंट हॉल सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रिंस चार्ल्स और लेडी डेना स्पेंसर की शादी हुई, जिसे दुनिया भर में करोड़ों अफराद ने टेलीविजन पर देखा।
1: 29 जुलाई 2005 को माहिरीन फलकियात ने निजाम शमसी के एक बड़े एरिस की दरियाफ्त का ऐलान किया जिसे बाद में बोना सयारा करार दिया गया।
0: और समीन, आज ही के दिन 29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। ये था तारीख के आईने में आज का दिन।

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन के साथ इस वक्त आप जुड़े हैं। कशिर मौसीकी शोते बोजान तो हमें चकरान जे ये मौसीकी ऐसे तो ही विनकस दिलन तरावत पक्षान ते गैजे कशिर मौसीकी शो अपन आक अलगे रंग। वैसे अगर मौसीकी हिंस कात करो आमिर प्रथ का मौसीकी छे दिलस तुरुहस सुकून बख्शान तेल दे इंसान थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब आसान सोच बनान वो बोझा कि हम बहुत अक्सर अक्सर लोगों की जो तादाद है तम से आसान यही मौसीकी बोझन अच अल्लाह तला सब थे आक अलग थोमत
1: मशहूर गसान इंसान से बिल्कुल बेशक।
0: एक्चुअली अंदर से मैंने पहले भी बात की थी जो हमारे माहिरीन बोलते हैं कि अंदर जो फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स आसान यूस ये मौसीकी जो ये साज अगर सही तरीक आसना आमुतन

0: मोहम्मद सिराजो बरतल तस्त्राव सरतो सारनी सर छु सोन सरदार अवल अखर छुई आ सर वरतो जिंदे मरतो मरख नजा।
1: सामिन मोहतरम मोहम्मद सिराज छु सूफी नुक्त बावान बावान इंसानस यह चेनवन दिवान जे तमिस तहकीक कर तहकीक करित ब्रोह पकुन जिंद पाने सर तो अदन मरुन जा हू हू सीत अंदर निब्र जोश दुन पनन पान कहवच खाल तो लूबी लुबाब छु सोरी सूफियतुक महबूबी खुदा ताजदारी कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवै छ मोहम्मद सिराज से वनान मोहम्मद सिराजो बरतल तस्त्राव सरतो सारनी सर छु सोन सरदार अवल अखर छुई आ सर वरतो जिंदई मरतो मरख नजा। समिनी मोहतरम मोहम्मद सिराज सबनिस कलामस मंज छु रूमनी अंदाज ते नजर गछान यह छु मजाजस ते तारीफ करान तो मजाज मंज हकीकत लबनिच कोशिश करान। सिराज सबनिस कुनि कुनि बतस मंज छु रसूल मीरुन अंदाज ते नजर गछान यानि यमि आये रसूल मीर सबन अश्किया अल्फाज थुरिमत छे तमी अंदाज छे मोहम्मद सिराज सबन ते लफजन जाम बनमत तो बासान छु जे सिराज सब छु जन ते रूमनी शायर।
0: अथ गुल रोयस शबनम दुर छी हरान तई बुलबुल छ मलक बखलक दरूद परान तई या मीम दहान नत गंच दहान तई खंद छस वुजमल दंद छिसना दुर्दान तई सखन छी गवहर नत लाल मा हरान तई अथ गुल रोयस शबनम दुर छी हरान तई नस्का छ खंजर वंजर बुम कमान तई या छु मेहराब नत हिलाल ताबान तई या हारंज नत शमशेर मियान तई अथ गुल रोयस शबनम दुर्छी हरान तई रक्याच वजल जन छ गुलाब फलान तई ऐ मुश्क अमरन कत छ करमित देवान तई छी खाल सिया मंजलालन शूबान तई अथ गुल रोयस शबनम दुर्छी हरान तई सिर निश गछित लबक सिर कुई निशान तई सरचई करतो जानुक जान जानान तई खलवत शाये सिराज महमूद रिवान तई अथ गुल रोयस शबनम दुर्छी हरान तई।
1: युद्वई मोहम्मद सिराज सब जहरी जामु छु लागान पन्न लफजन मगर कत छु वनान अंदरिम तो यही अकिस बहलि पाई सूफी शेर सज खूबी आसान कस वन जे सिर निश ग लबक सिर कुई निशान तई सरसई करतो जानुक जानी जानान तई खलवत शाये सिराज महमूद रिवान तई अत गुल रोयस शबनम दुर्छी हरान तई अमी रूमानी अंदाज छे मोहम्मद सिराज सबन बे कह बत वनमित यमन मंज दुर फलिन हिंद पट लफज द्रंट छ गछान तो इंसान छु हैरान सपदान जे अखर कत पट छु मोहम्मद सिराज सब यमन लफजन जाम वलान त कथ वनान।
0: जुलुफ त्रवित बर्दोश वुछवन छ गमत बेहोश वलि मुत छ चन जुलुफ खमन जानान जान छुक सूरतन गुलरोय दिल न्यूत बुलबुलन जानान जान छुक सूरतन दिल नित जागान छुक शिलन

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविन तुसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। यह प्रोग्राम प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न 10 बजन ताम नश्र सब्दान।
2: सविन तुसु बोजान प्रोग्राम सूफी सदा। यह आकाशवाणी श्रीनगर सोन दई मैलान बुझे हो। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा अब हमें सुन रहे हैं FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 10:30 होने वाले हैं। चंद लम्हों में आप समाध करेंगे हमारे पैम सुबह की नशरियात में हमारा लाइव मॉर्निंग शो, और मेरे साथ है मेरी साथी तस्लीम।
3: जी फहमिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने सुनाने की इस खूबसूरत दुनिया में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह में वक्त हो रहा है आपकी मुलाकात आज के मेहमान के साथ कराने की। और आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अज़म, मेहनत और कामयाबी का इस्तारा, जम्मू कश्मीर के नामवर बैन अक्वामी पैंचक सलात एथलीट और अब महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के नौमंतखब चीफ कोच सुहैब फिरोज जेलानी। इनका हम तहे दिल से अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सुहैब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में।
4: थैंक यू सो मच मैम।
3: सुहैब, हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में यहाँ से कुछ चंद अहम बातें बताएं।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहैब फिरोज जिलानी है, मैं श्रीनगर हैदराबाद में रहता हूँ। तो स्पोर्ट्स की जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि जब मैं क्लास 5th में था तब मैंने अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट की। स्टार्ट मैंने रग्बी से की, क्योंकि तब हमारे स्कूल में नया नया एक रग्बी का टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका था
3: जी।
4: तो फिर इतना खेला कि स्टार्ट ही हमने सब जूनियर नेशनल की सिलेक्शन से हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर खेलते खेलते जूनियर पे पहुँचे, सीनियर पे पहुँचे, और अल्टीमेटली 2015-16 में मैंने एक ऐसा फैसला लिया कि मैं एक टीम गेम को छोड़ के एक इंडिविजुअल गेम पे जाना चाहता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम रग्बी 2015 के करीब मैंने एक पेंचक स्लाट मार्शल आर्ट गेम में शिफ्ट किया
3: जी।
4: तो मेरी जर्नी 2015 से पेंचक स्लाट मार्शल आर्ट गेम में, जो कि एक मार्शल आर्ट गेम है, इसमें सेल्फ डिफेंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए, मार्शल आर्ट माना जाता है। 2015 में मैंने पेंचक स्लाट स्टार्ट किया। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था पेंचक स्लाट में आना, क्योंकि बचपन से बहुत साल एक टीम गेम में देख के एक इंडिविजुअल गेम में आ गया। बहुत टाइम लगा सीखने में, 3-4 साल लगे पूरा स्टार्ट बेसिक्स से करने में। मेरे कोचेज इकबाल सर, इरफान सर ने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो 3-4 साल ट्रेनिंग करने के बाद मेरा एक स्टेट चैम्पियनशिप में पहला मेडल निकला, 3-4 साल प्रैक्टिस कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद। और उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, और मैंने जो मेरे पहला मेडल स्टेट चैम्पियनशिप में निकला वहाँ से मेरी जर्नी और भी स्टार्ट हो गई, और मेरे में एक बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस कि मेरे को यहाँ नहीं छोड़ना है, मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और वहाँ से मेरी जर्नी वापस स्टार्ट हो गई 2018 एंडिंग में मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल के लिए, जहाँ पे सबसे पहला मेरा नेशनल गोल्ड आया, और वहाँ से अभी तक गोल्ड की बारिश चालू है।
3: इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इंसान का अगर इंसान पूर अज़्म होता है किसी चीज़ को लेके तो उसके कदमों को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। रग्बी की बात करेंगे, रग्बी में काफ़ी आपका रुझान रहा है और काफ़ी अपने उस खेल के साथ अपना टाइम दिया है, कम से कम आई थिंक 10 साल से आप उस फील्ड में हैं। तो रग्बी का जो यहाँ पर रुझान है हमारे कश्मीर में कितना है, और रग्बी खेल के बारे में हमें बताएं यहाँ पर, ताकि

0: जो हमें सुन रहा है उन्हें इस खेल को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए?
1: बेसिकली रग्बी भी एक टीम स्पोर्ट है, उसमें दो इवेंट्स होते हैं, एक 7-a-side इवेंट होता है और एक 15-a-side इवेंट होता है। जो 7-a-side इवेंट होता है उसमें 7 प्लेयर खेलते हैं, 15-a-side में 15 प्लेयर खेलते हैं। तो बेसिकली रग्बी एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक ओवल शेप की बॉल होती है, वो बॉल अगले के गोल पोस्ट पे डालनी होती है। जैसे फुटबॉल में आप पाँव से खेलते हो, रग्बी में आप हाथ से खेलते हो। उसमें आपके पास बॉल जो होती है उसमें आपको अपने अपोनेंट को पास करना होता है, और जो आगे की डिफेंस टीम होती है उनको डिफेंस पार करके अपने गोल पोस्ट पे डालनी होती है
0: जी।
1: तो उसको एक ट्राई बोलती है, ट्राई के 5 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद रग्बी में पोल्स 2 होते हैं, उसके बीच में कन्वर्जन किक मारनी होती है, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। तो हर एक ट्राई के बाद एक कन्वर्जन किक होती है, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। तो टोटल मिला के एक गोल के आपके पास 7 पॉइंट्स हासिल करने का।
0: गुड। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो रग्बी का कितना रुझान है यहाँ पर, हमारे जो नौजवान है उनमें कितना इस चीज को लेके हमारे नौजवान पोजेसिव है, या मतलब कितना वो चाहते हैं इस खेल में आना, और कितने लोग अभी हैं हमारे नौजवान, किस तादाद में अभी है इस रग्बी खेल में कश्मीर की बात पर्टिकुलरली?
1: स्टार्टिंग की बात करूंगा मैं, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ग्राउंड्स नहीं थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुझे लगता है 2020 के बाद जेके स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर द गाइडेंस ऑफ सेक्रेटरी मैम नुसरत गुल मैम, हमें एक टीआरसी में एक ग्राउंड अलॉट किया गया एक्सक्लूसिवली रग्बी के लिए। तब से डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है रग्बी के यहाँ पे, हमारी सब जूनियर की टीम भी, जूनियर की भी, सीनियर की भी टीम भी, और सारे मेडलिस्ट टीम्स हैं
0: जी। आपसे बात और भी करेंगे, यहाँ पर रुकते हैं एक गीत के लिए।

0: नगमे के बाद वापस आते हैं अपने मेहमान की तरफ और सवाल का जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं। सोएब, आपसे बात हुई रग्बी की और रग्बी से आप पंचक सलात में आ गए। रग्बी के मैदान से लेकर पंचक सलात के आलमी मुकाबलों तक और अब आप बतौर चीफ कोच जिम्मेदारियां भी संभालने वाले हैं, तो आपका ये सफ़र जो है, ये अज़म जो है और जद्दोजहद की एक जो लाजवाब मिसाल है, इस तवील और कठिन सफ़र में वो कौन सा सबसे अहम नुक्ता या सबक था जिसने आपको हर मुश्किल मरहले पर हार न मानने की ताकत दी?
1: स्टार्ट काफ़ी टाइम पहले मैंने जर्नी की थी, तो मेरा यही एम रहा कि मैं एक इंटरनेशनल मेडल लाऊं, अपने घर वालों को प्राउड करूं, स्कूल को प्राउड करूं, कोचेस को प्राउड करूं। तो तब हम यही सोशल मीडिया पे देख रहे होते थे कि बहुत कम मेडल्स इंडिया के लिए आते थे, तो वो एक मोटिवेशन बनती थी हमारे लिए कि हम भी उस पोडियम पे चढ़े, हमारे पीछे भी एक नेशनल एंथम बने। काफ़ी सारी इंजरीज हो गई, तब भी हार नहीं मानी, घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, उसकी वजह से कभी हार नहीं मानी और इस सिलसिले को जारी रखा।
0: जी, तो अगर हम अब बात करें कि ये जो रग्बी से आपने पंचक सलात की तरफ आए, तो जब आपने पंचक सलात की तरफ अपना जहन तैयार किया कि आपको ये सीखना है, एक तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, दूसरा कितना टफ रहा वो? एक बहुत बड़ी तब्दीली है, रग्बी खेल एक अलग खेल है और पंचक सलात की बात अगर करें तो इट्स ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। हालांकि सेवन होगी कि अश्चुन विंता का पूर्व पठ ये प्रोनाउंस थे करुण कहीं, तो ज़्यादा हम इस बारे में नहीं जानते, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये गेम है। तो क्यों थ्रू सो सफ़र, तो क्या बात से होता है बहुत से वाई उस फील्डस में, तो ऑलरेडी रग्बी हिंदिस फील्डस में जैसे सुमार रोज तो मुश्किल था कुन गसुन।
1: बेसिकली रग्बी जो है एक टीम स्पोर्ट है, तो पूरा एक टीम साथ परफॉर्म करती है, किसी एक की परफॉर्मेंस की वजह से पूरी टीम पे असर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का एक मिस पास हो गया, फॉरवर्ड पास हो गया, बॉल गिर गई, तो उसे पूरी टीम सफ़र करती है। तो वो चीज़ मुझे एक लगा कि मेरी एक जितनी अपनी परफॉर्मेंस है वो एक टीम स्पोर्ट में बाहर नहीं, आउटकम नहीं होगा। तो वो एक फैसला मैं लेने पे मजबूर हो गया कि मैं एक ऐसी इंडिविजुअल गेम खेलूं जहां पे मैं हारूं या जीतूं अपनी काबिलियत की वजह से, पूरे टीम की बदौलत नहीं। तो वो फैसला मैंने इसलिए लिया कि मैं एक इंडिविजुअल स्पोर्ट पे जाऊं, यही एक मेन रीज़न था कि मैं अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस था उसको पर्सनली लेवल पे लेना चाहता था। तो जर्नी बहुत मुश्किल थी, एक टीम स्पोर्ट से, एक फिज़िकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाना, और उस एज पे जब इंसान छोटा होता है तो वो बहुत जल्दी सीखता है, बट जब इंसान सीनियर लेवल पे ज्वाइन करता है तो कंपटीशन ऑलरेडी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। 3-4 साल तो पूरा गेम को समझने में, सीखने में लगे, तो जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल थी,
0: टफ थी,
1: बहुत टफ थी,
0: लेकिन फिर भी आप उस अपने गोल तक पहुँच गए।
1: बिल्कुल, बेशक।
0: तो ये जो पंचक सलात जैसे शानदार मार्शल आर्ट को अगर हम इसकी बात करें, क्यों इसको समझना और इसकी गहराई में जाना क्यों ज़रूरी है? ये खेल इंसान की जिस्मानी और जहनी सलाहियतों पर क्या गहरे असरात अगर हम बात करें मुरतब करता है, और एक खिलाड़ी की ज़िंदगी के नज़्म ज़ब्त और दिफाई ज़ात के लिए इसके क्या हकीकी फ़वाद हैं?
1: देखिए, पंचक सलात एक सेल्फ डिफेंस गेम है। आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस की काफ़ी अहमियत होनी चाहिए।
0: जी,
1: जैसे एक रग्बी है वो एक टीम स्पोर्ट है, मतलब उसमें सेल्फ डिफेंस का कोई काम नहीं है। जो एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट है वो आप में डिसिप्लिन लाता है, वो आप में सेल्फ डिफेंस लाता है, और काफ़ी सारी ऐसी हम टेक्निक सीखते हैं जो आप डे टू डे लाइफ पे भी आपके लिए बहुत ज़रूरतमंद होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए, छोटे छोटे लड़कों के लिए जो खाली पढ़ाई के साथ, घर में फ़ोन के साथ इंडल्स रहते हैं। तो फिर सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आज के लिए, उसमें आपकी फिटनेस भी आती है, आपकी स्ट्रेंथ भी आती है, खाली सेल्फ डिफेंस भी नहीं आता है।
0: और ये जो पंचक सलात में अगर हमारा कोई बच्चा जाना चाहता है, कोई ऐसा खिलाड़ी इसमें मतलब अपनी जो गाइडेंस या

0: इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसमें एक वो चाहता है कि इसका ट्रेन हो जाए इस खेल का, तो उसके लिए उसमें क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए वो फिट माना जाएगा इस गेम में, अगर उसको शामिल होना हो तो उसके लिए तमसिन खतर क्या अच्छी तिम चीज़ तिम ज़रूरी चीज़ ये मुमकिन सो अत गेम खतर फिट ही मानना।
1: इसमें बेसिकली वेट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरीज़ होती है, जैसे कोई 50 to 55, 55 to 50, तो सब अपनी अपनी वेट कैटेगरीज़ में खेलते हैं। तो जिसका जो वेट होगा कोई भी खेल सकता है, चाहे वो हैवी वेट का होगा, लाइट वेट का होगा, कोई भी खेल सकता है। तो फिर इसमें यही होता है कि इंसान अपनी टेक्निक्स को कितना शार्प बनाएगा, इंसान अपनी डे टू डे प्रैक्टिस को कितना अच्छा बनाएगा, उस हिसाब से वो ग्रो कर सकता है।
0: ठीक, तो मतलब कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो एक खिलाड़ी के पास होना बहुत ज़रूरी है जिसकी बुनियाद पर उसको इस गेम में एंट्री दे सकते
1: नहीं,
0: हैं।
1: ऐसा कुछ खास नहीं है। आप किसी को रॉ टैलेंट होता है, किसी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: तो लेकिन सीख दोनों सकते हैं, अगर
1: सीख
0: किसी में टैलेंट है तो वो भी सीख वो तो सीखता ही सीखता, अगर किसी में टैलेंट नहीं है तो उसको इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है,
1: बेशक बेशक
0: तो वो कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अपने रग्बी के सफ़र के दौरान में बताइए कैसा रहा वो सफ़र, और उस दौरान क्या आपने किसी को ट्रेन किया, और दूसरी बात ये कि जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं कैसा लगता है आपको, क्या समझ के आप उनको अपने साथ जोड़ते हैं या फिर इस गेम की तरफ उनको लाते हैं?
1: तो जब रग्बी खेलते थे तब हम सब जूनियर जूनियर लेवल के ही थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई मेरे साथ जोड़ा, बट जब सीनियर लेवल पे पहुँचे तब हमने काफ़ी सारी अपनी सीनियर टीम्स बनाई, कॉम्पटिशन्स करवाए, और फिर छोटे छोटे काफ़ी लोग इंस्पायर हो गए हमारे साथ, हमें देख के, हमारी वीडियोस देख के या कॉम्पटिशन्स देख के, अचीवमेंट्स देख के, तो उनने भी फिर साथ साथ गेम ज्वाइन की। तो सफ़र काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बेहतरीन रहा। काफ़ी सारी स्टेट्स में मैं गया नेशनल्स खेलने, ऐसी कोई मुझे लगता है इंडिया में कुछ ही स्टेट्स बची है जहाँ पे हम गए नहीं होंगे, बाकी बहुत सारी स्टेट्स में हम नेशनल खेलने जा चुके हैं ऑलरेडी।
0: 10 साल का तजुर्बा है आपका स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर इस रग्बी को लेकर, इन 10 साल में कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा वाक्य जिसने आपको कुछ सीखने को जिससे आपको मिला हो, या फिर आपने किसी के लिए कुछ ऐसा किया हो जो आपको आज तक याद है, या फिर कुछ ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: वाक्य तो बहुत सारे हैं, बस यही है कि जितनी सारी इंजरीज हो गई, लिगामेंट इंजरी हो गई, एल्बो इंजरी हो गई, टेंडन कट हो गए, हार नहीं मानी, हर एक इंजरी को आउटकम किया। सीनियर लेवल पे जब आई, लोगों को सिखाया, जब इंडिया कैंप में थे हम, एशियन कैंप में थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के कैंप में थे, तो वहाँ पर टीम एक ऐसी बनती है कि एक दूसरे को लोग सिखाते हैं, एक दूसरे की जिसकी जो कमज़ोरी हो गई उसको वो सिखाते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे जर्नीज है जो हम याद रख सकते हैं हमारे कैंप्स में, जो मुझे कभी बोलेंगे नहीं।
0: क्यों खेलना ज़रूरी है एक खिलाड़ी के लिए? मतलब अच्छा, अक्सर उनके अगर कुछ वैसा अच्छा आस पास ही माहौल कि हमारे घरों में जब बच्चे होते हैं तो हम अक्सर फोकस करते हैं कि हमका सिर्फ पारे लेखन का बोर्ड ऑफिसर बन, जिसका जो गोल है थीम है या कोई टारगेट है सो ही गोस पूरा का सुनता, अक्सर जो है इस बात से आसानी समाज में कि उसे खेलना है, बच्चे को खेलने भेजना है, अमी चु गिंद दून, अमी चुन स्पोर्ट्स मज दून हिस्सा न खतरे, तो ये शो आख फजूल प्रैक्टिस, ये शो आख सुचीज वक्त का जिया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए, मैं आजकल की जनरेशन जो सारे हैं वो सब फ़ोन के साथ लगते हैं, टीवी के साथ, फ़ोन के साथ, तो खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको घर के बाहर का एक्सपोजर नहीं है। घर के बाहर का एक्सपोजर ज़रूरी होना चाहिए, स्टेडियम्स का एक्सपोजर ज़रूरी होना चाहिए, और J&K से निकलने का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। वो उनको आगे जाके लाइफ में, उनकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। आप बोलेंगे कि खाली पढ़ने से लोग अचीव करते, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्टेट में, मैं अपनी स्टेट की बात करूँगा, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारे कैश प्राइज पॉलिसीज़ है, जॉब की पॉलिसीज़ है, और एडमिशन की पॉलिसीज़ है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जैसे आप, मैं बताऊंगा कि कोई नीट का एडमिशन लेना चाहता है या कोई JEE का एडमिशन लेना चाहता है, जिसके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी होगी, जिसने स्पोर्ट्स में अचीवमेंट ली होगी, उसके चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। आप जैसे बाकी ओपन मेरिट या कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी भी है उसको भी वहाँ पे फ़ायदा आता है। अपार्ट फ्रॉम एडमिशंस, हमारी यहाँ पे J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की एक पॉलिसी है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, हर साल 20 से 25 लोगों को एक गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड

0: करेगी एज़ पर देयर मेरिट। जिसके
1: ओके
0: पास जितना मेरिट होगा आउट ऑफ 100 उनका स्कोर नोट किया जाएगा, उनकी सर्टिफिकेट्स वेरीफाई की जाएगी, हर साल उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ये ऑनरेबल एलजी ने इन स्पोर्ट्स काउंसिल ने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की एक पॉलिसी निकाली।
1: जी
0: तो अब बोलेंगे कि पढ़ने से ही लोग आगे बढ़ेंगे, बट स्पोर्ट्स से भी यू कैन अर्न अ गवर्नमेंट जॉब।
1: सेहती एतबार कूता फ़र्क छु पैमान अगर इस स्पोर्ट्स ज्वाइन छ करान सोनबज स्पोर्ट्स ज्वाइन छ करान और दिमागी क्या मतलब दिमाग पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं?
0: बिल्कुल, इंसान पूरा फिजिकली फिट रहता है, इंसान में कोई टेंशन नहीं होता है, टेंशन भी रिलीज़ होता है जब इंसान पढ़ाई के साथ भी होता है, स्पोर्ट्स के साथ भी होता है, पूरा एक डिसिप्लिन रहता है, पढ़ाई किस टाइम करनी है, स्पोर्ट्स किस टाइम खेलना है, प्रैक्टिस किस टाइम करनी है, इंसान को किसी भी गलत चीज़ के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलेगा।
1: और
0: जब
1: एक
0: उसका
1: डिसिप्लिन आता है
0: और पूरी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आता है कि इंजरीज से भी सीखेगा, कि हर एक चीज़ से इंसान सीखता ही सीखता है। और इसको क्या बोलते हैं, जब बच्चा खाली पढ़ाई करता है उसके बाद घर पे आता है बैठता है, वो अल्टीमेटली फ़ोन यूज़ करता है, सोशल मीडिया यूज़ करता है, उसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी इंसान को उनको स्टेडियम्स भेजना है, कोई भी स्पोर्ट हो उनको ज्वाइन करवाना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। अब पहले तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोचिंग कैंप्स नहीं थे, स्टेडियम्स नहीं थे, कोचेज़ नहीं थे, तो आज
1: जी
0: के टाइम पे इतनी इतनी फैसिलिटीज़ है, इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इतने कॉम्पिटिशन्स है, हर एक स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोचेज़ है, कोई भी गेम हो हर एक कोच यहाँ पे J&K में अवेलेबल है, वो आपको हर एक गेम की ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द सब जूनियर कैटेगरी अप टू सीनियर कैटेगरी।
1: जी सुहेब आपके साथ और भी बात करेंगे, मज़ीद बातचीत करेंगे इस बारे में कि ये जो मुस्बत सरगर्मियाँ हैं, ये जो खेल कूद है, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त के हालात को लेकर, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक खूबसूरत से नगमे के लिए।

0: कभी कभी बहुत सारे नज़ारे छुप जाते हैं और वो शाम होने की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से छिप जाते हैं कि हम पर हमारा ही कंट्रोल नहीं रहता और हम खूबसूरत से ज़िंदगी को कहीं और लेके चले जाते हैं जहाँ पर ना नज़ारे होते हैं, ना खूबसूरती होती है और ना ही कोई खुशी। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात होती हैं और वो वजूहात कहीं ना कहीं आपके जो दिमागी एतमाद जो है, जो जहनी फिटनेस है, उससे कनेक्ट करते हैं। सुहैब, मैं एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगी, इसका जवाब कि आज के दौर में जब नौजवानों को जिस्मानी और जहनी फिटनेस के साथ साथ हिफाजत और एतमाद की भी ज़रूरत है, और ऐसे में पंचक सलाद का खेल नौजवान नस्ल को एक बेहतर और मज़बूत इंसान बनाने में किस तरह सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है? और दूसरा ये कि एक कोई भी जो स्पोर्ट है, मतलब कोई भी जो खेल है, वो कैसे एक इंसान को उसके लिए मस्बत सरगर्मी बन सकता है? हम अक्सर कहते हैं कि खेल जो है वो मस्बत सरगर्मियां हैं ज़िंदगी में, तो कैसे ये अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाती है जो खिलाड़ी होता है उसकी पूरी ज़िंदगी पर?
1: कोई भी बच्चा हो या कोई भी एथलीट हो, जब वो एक जगह बैठेगा, कुछ करने को उसके पास होगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। उसका जहन खाली सोचने पे मजबूर हो जाएगा।
0: कुछ करने के लिए अगर हम ये कहें कि पेरेंट्स मन नहस पारुन छुक या छुक करुन रिसर्च छक करन टॉप छुक करुन डिग्री छक हासिल करन, करने के लिए बहुत कुछ है। उस हिसाब से तो करने के लिए बहुत कुछ है, खाली बिल्कुल बेकार भी नहीं बैठे हैं। तो फिर कहाँ पे ये खालीपन आ जाता है, जबकि वी आर एंगेज्ड इन आवर स्टडीज टू अचीव आवर गोल्स, मगर ये खला कतु ये खालीपन कतु ये जो हमारे खेल है वो भर देते हैं।
1: आप इन

0: पड़ेगा भी तो वो पूरा टाइम 12 घंटे 13 घंटे, जब वो छोटी उम्र का होगा या जूनियर लेवल का हो गया उतना तो वो पढ़ नहीं सकता है। हाँ, जो बात आप कर रहे हैं कि उनको पढ़ाई करनी है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे है जहाँ पे वो 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटे पढ़ सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जहाँ पे उनके लिए मेन फोकस है कि उनको आगे जाके क्या करना है, तब जाके उनको आधे घंटे 2 घंटे का काम होता है तो वो कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली वो आइडल बैठते हैं। और आजकल के पेरेंट्स को भी इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को टाइम दें, सब वर्किंग है,
1: बिल्कुल
0: माशाल्लाह सब वर्किंग है।
1: सही बात।
0: और जो बच्चे होते हैं वो अल्टीमेटली या तो मोबाइल फ़ोन्स के साथ लग जाते हैं या तो वो टीवी के साथ लग जाते हैं, और अल्टीमेटली उनको एक नेगेटिव एनर्जी हिट होती है। तो बहुत सारे बच्चे गलत सोहबत में भी चले जाते हैं। तो
1: जी
0: वही एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स एक चीज़ हमें सिखाता है कि एक ज़िंदगी में डिसिप्लिन कैसे आएगा, एक बच्चा गलत चीज़ों से दूर कैसे रहेगा, और अगर कोई बच्चा गलत सोहबत में चला भी गया तो एक स्पोर्ट्स ही एक वैसा है, एक नेचुरल रिहैब हम मान के चले कि वो हर एक चीज़ को भूल सकता है उस चीज़ से। जब वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा, वो अपने कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करेगा, तो वो इंडल जो एक फिज़िकल फिटनेस में हो जाएगा।
1: जी
0: और अल्टीमेटली अगर आज दिन वो डे वन से स्टार्ट करेगा तो डे वन पे थोड़ा सा थकेगा, डे टू पे कम थकेगा, तो अल्टीमेटली उसका स्टेमिना भी बूस्ट हो जाता है। जितना जितना उसका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा तो उतना वो फिज़िकली फिट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चों के लिए कि वो किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। बट आजकल सारे लोग घर पे फ़ोन्स के साथ, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, खाली नेगेटिव एनर्जी है। तो रिसेंटली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 100 डेज ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल एलजी ने
1: जी
0: लिया
1: बिल्कुल
0: चलाया, तो कितना यहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि स्पोर्ट्स में आओ। इस 100 दिन मेरे को लगता है जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑल अराउंड जे एंड के इतने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए, इतने यूथ्स को इंडल्ज किया गेम्स की तरह खेलने के लिए, हर एक जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ है, जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स है, हर जगह से बच्चे आके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे थे इसी अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से। तो
1: जी
0: मेरी यही मैसेज रहेगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व
1: ज़रूर शामिल करें,
0: करना
1: क्योंकि
0: चाहिए।
1: इस वक्त इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ वा रही है, यूँ तो इस डेवलप गई तो यूँ तो गई फिजिकल एक्टिविटीज़ कम, तो बॉडी में जो एनर्जी क्रिएट होती है उसका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है,
0: बहुत ज़रूरी है।
1: और इसको रिलीज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि स्पोर्ट्स में आप वर्कआउट जब होता है, फिजिकल एक्टिविटीज जब होती है, तो इंसान का जो ओवरऑल जो वेलबींग होता है वो सही रहता है और ग्रो भी सही तरीके से करता है। तो हमें मुझे लगता है कि इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है।
0: बेशक, बिल्कुल।
1: अच्छा सर, आप पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले कुछ सालों में आपने जम्मू कश्मीर के खेलों के इकोसिस्टम की बात अगर करें, इकोसिस्टम में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं?
0: मैं बात करना चाहूँगा ज़्यादा पीछे नहीं, लास्ट 5 ईयर्स की बात करना चाहूँगा मैं, कि 2020-21 से पहले मेरे को नहीं लगता है जे एंड के में, स्पेशली मैं कश्मीर की बात करूँगा, कि ऐसा इकोसिस्टम था, ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ऐसे कोचेस थे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो 2020-21 के बाद बहुत सारे चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिले, अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे हमारी जो सेक्रेटरी मैम है उनकी गाइडेंस के अंडर जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल ने और यहाँ के जे एंड के स्पोर्ट्स ने काफ़ी फ्लरिश किया। नए नए स्टेडियम्स बनाए, नई इंडोर हॉल्स बनाई, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हर एक जगह कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अवेल कर सकता है, हर जगह कोचेज़ है, इतने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि खेलो इंडिया स्कीम्स के अंडर हर एक स्टेडियम में किसी न किसी स्पोर्ट का कोच होता है, और उसी नज़र से हम देखिए कि जितने सारे कोचेज़ हैं वो एथलीट्स को तैयार करते हैं, मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करते हैं, और इस बदौलत जितने भी ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स जो है वो सामने आ चुके हैं।
1: जी
0: तो डेवलपमेंट 2021 के बाद स्पोर्ट्स में जे एंड के में बहुत ज़्यादा हो गई,

0: स्टेडियम्स को लेके चके हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे आ गई।
1: अच्छा, ये जो SO12 है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम, इसके बारे में बताइए।
0: 2022 में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मनोज सिन्हा साहब ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी ये कहती है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स है J&K के, उनको एक रोज़गार मिलेगा। अब खाली पढ़ के आपको एक इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही नहीं कर सकते हो, बट के स्पोर्ट्स पर्सन भी इवन गेस्टेड नौकरी कर सकते हैं, नॉन गेस्टेड नौकरी भी मिल सकती है स्पोर्ट्स के बदौलत। तो SO12 बेसिकली क्या है, SO12 एक रिक्रूटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की, जिसमें हर एक साल 25 नॉन गेस्टेड पोस्ट एंड
1: जी
0: 5 गेस्टेड पोस्ट हमारे एथलीट्स को दी जाएगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल एंड इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। तो अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं कि 2026 है और लास्ट रिक्रूटमेंट 2023 में हो गई, तो जितनी अचीवमेंट्स एक प्लेयर के पास है वो सारी काउंट कर की जाएगी, एंड आउट ऑफ 100 उनके पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स दिए जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट प्रॉपर स्क्रूटनी कमेटी बिठाई जाती है और
1: जी
0: उसमें एक लिस्ट बनता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने एलिजिबल है, क्या कट ऑफ रहा, और उनको फिर गवर्नमेंट ऑफ J&K नौकरी देता है।
1: तो अब इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, शायद कल इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो वो ख़तरा भी नहीं है।
0: बिल्कुल वो खतरा नहीं
1: तो
0: है।
1: आई थिंक पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि वो इक्वली, जैसे वो अगर पढ़ाई करवाते हैं अपने बच्चों से, पढ़ाई कराना ज़रूरी है, उससे हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करवानी, लेकिन साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स को लेकर जिस स्कीम के बारे में आपने बात की, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये भी जो फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अच्छा स्वेब, जो सरकारी मुलाजिमत में शामिल होने के बाद आप खेलों में किस तरह, जो अभी आपका जो पोस्ट डिक्लेयर हुआ है तो चीफ कोच की हैसियत से, तो सरकारी मुलाजमत में शामिल होने के बाद आप खेलों में किस तरह अपना हिस्सा डालने का इरादा रखते हैं?
0: देखिए, बचपन से ही मेरा एक शौक था कि मैं भी अपने एथलीट्स तैयार करूं, मैं भी बच्चों को ट्रेनिंग दूं। तो आज मान के चलिए मेरे 12-15 साल स्पोर्टिंग जर्नी के बाद मैं हमारी रिक्रूटमेंट निकली थी 2023 में, और
1: जी
0: फाइनली हमारा एक फ़ाइनल लिस्ट रिसेंटली जून में निकल चुका है, जिसमें मेरे को एक चीफ कोच का पोस्ट मिल चुका है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज जो को ज्वाइन करने के बाद एक ग्रेट प्लेटफॉर्म मेरे को मिल जाएगा, जहाँ मैं स्पोर्ट्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करूँगा, जितने भी ग्रास रूट लेवल पे, जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ में जितने भी लोग हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, हम लोग वहाँ जा सकते हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ। मतलब जितने भी हमारे कोचेस सेलेक्ट हो गए, हमारा टैलेंट J&K में बढ़ सकता है। कि पहले ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, कि अब हमारा यही है कि हमने अपना टाइम तो दे दिया, दैट हम अब हमारा फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे वाली जनरेशन को हम उस तरह की तैयार करेंगे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ला के J&K और इंडिया का नाम रोशन
1: रोशन करें।
0: करेंगे।
1: जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आप चीफ कोच के, वैसे चीफ कोच आप ये जो जुड़ना चाहते हैं खिलाड़ियों के साथ, तो खिलाड़ियों की नस्ल में आप जो कश्मीर के नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी नस्ल में आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि वो भी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकें? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके नस्ल में आप मुंतकिल करना चाहते हैं?
0: बस उनको यही एक कॉन्सेप्ट है कि उनको घर से निकाल के उनको स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना है, कि जैसे फार फ्लंग एरियाज़ में तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, बट वहाँ पे उनको हम अवेयर करना है कि पढ़ाई भी ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, बट पढ़ाई के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे आप कॉन्कर कर सकते हैं, आप जॉब हासिल कर सकते हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, आपको गवर्नमेंट खेलने के पैसे भी देगी, आपके कोचिंग के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, आप इस लेवल पे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो वहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट है कि स्पोर्ट्स क्या होता है। काफ़ी सारे एरियाज़ हैं हमारे आउटसाइड जम्मू के।

0: साइड कश्मीर के, जहाँ लोगों को, बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको एटलीस्ट अवेयर करें कि स्पोर्ट्स होता क्या है, कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है, किस किस स्पोर्ट्स में आप कहाँ कहाँ किस किस लेवल तक पहुँच सकते
1: पहुंच
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: तो वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको खेलने के बाद, मतलब खेलने के पहले, एक हम थोड़ा सा अवेयर करें कि वो क्या क्या ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहाँ पे टावर्स नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे लाई करते हैं, वहाँ पे भी वो स्कूल जाते हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो हम सेलेक्ट हो गए, जितने भी कोचेस सेलेक्ट हो गए, तो हम उनको अवेयर करें, उनको हम थोड़ा सा काउंसलिंग करें कि स्कूल तो ठीक रहा, बट आपके पास स्कूल के बाहर पढ़ने के बाद भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप कल को इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको नौकरी मिल सकती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए।
1: अच्छा मुझे बताएं, ये जो हमारे कश्मीर में इतने हमारे पास युद्ध स्कोप छा से पीछा तिम फैसिलिटीज़ ऐसे कि अगर कहाँ यूज बच्चों का नौजवान ये से गसुन हिचुन कहाँ ते कोई भी खेल को सीखना चाहेगा, कोई भी स्पोर्ट को उसमें जाना चाहेगा, मगर उसके पास पैसे नहीं हैं, लाइक फीस नहीं है या पैसे देने के लिए नहीं है, तो ऐसा कोई रास्ता है कि उसके बगैर उसकी रहनुमाई हो सके या फिर उसको सिखा दिया जाए, उसको ट्रेन किया जा सके उस पर्टिकुलर गेम में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा था कि 2021 के बाद यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ का इकोसिस्टम है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया। पहले तो स्टेडियम्स में खाली बनाए गए थे, बट वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब फैसिलिटी नहीं थी, जब कोचेज़ नहीं थे, तो वहाँ ट्रेनिंग नहीं होती थी। बट जितने भी आज एथलीट्स है या जितने भी स्टेडियम्स है, हर एक स्टेडियम में कोई ना कोई कोच अवेलेबल है।
1: जी
0: तो सारे गवर्नमेंट स्टेडियम्स है, कहीं पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है,
1: ज़रूरत नहीं है।
0: तो सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी स्टेडियम में जाओ, वो कश्मीर में जाओ, वो जम्मू में जाओ, उधमपुर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर एक स्टेडियम में आपको खेलो इंडिया कोचेज़ मिलेंगे, स्पोर्ट्स काउंसिल के कोचेज़ मिलेंगे, हर एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको यूथ सर्विस के कोचेज़ मिलेंगे, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स मिलेंगे, जो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करें कि जब वो बच्चा सब जूनियर या जूनियर लेवल पे पहुंचता है, और वो इतना एलिजिबल होता है कि उसको नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाती है,
1: जी
0: वो पैसा भी आपका जेके स्पोर्ट्स काउंसिल बियर करता है।
1: जी
0: अगर आपको इंटरनेशनल के लिए जाना है, आपकी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई है, वो पैसा भी आपका जेके स्पोर्ट्स काउंसिल बियर करता है।
1: जी
0: तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पे कोई एक गरीब बच्चा, उसके पास टैलेंट होगा, वो पैसा बियर नहीं कर सकता है। बट स्पोर्ट्स काउंसिल की गाइडेंस में मैंने 3-4 इंटरनेशनल्स खेले हैं, और अंदर गाइडेंस ऑफ आवर सेक्रेटरी नुसरत गुल मैम, सारा कुछ हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल ने बियर किया। मैंने अपने जेब से पर्सनली कुछ स्पेंड नहीं किया। जब मैं उस मकाम पे पहुंचा, मेरी सिलेक्शन हो गई, कैंप्स हो गए, एवरी थिंग वॉज स्पॉन्सर्ड बाई जेके स्पोर्ट्स काउंसिल एंड द जेके गवर्नमेंट। तो हमने अपनी जेब से भी कोई पैसा नहीं निकाला। अब किसी को ये कॉन्सेप्ट होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बच्चों पे पैसा लगाना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इवन आपको काफ़ी गेम्स में किड्स भी जेके स्पोर्ट्स काउंसिल, जेके यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो देते हैं।
1: तुत बच अक्सर विकस वान पानस आसपास हमारे लोकेलिटीज़ में, रिश्तेदारों में या कहीं ना कहीं एक बच्चा तो ऐसा मिल ही जाता है उस डिप्रेशन का शिकार आसान, नाउमीदी हूँ शिकार आसान, हालांकि पढ़मुत आसान ठीक ठाक और क्या लाइफ हैं तम सिचुएशंस आसान इन सो टैकल हकान करन सोचा अकिस तथा जोनस मज ये सोया डिप्रेशनस मज आसान और ऐसे हालात होते कि वो कुछ करना नहीं चाहता है या उसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो क्या अगर उसको थोड़ा सा पुश किया जाए कि कहीं वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुबतला ना हो, वहाँ से निकालने के लिए अगर हम ये कदम उठाना चाहें कि उसको स्पोर्ट्स में डालें तो क्या वो एलिजिबल है?
0: बेसिकली हमारा यही गोल है, जितने मेरे साथ मेरे को एथलीट्स है, कि हम एक सर्वे करें उन स्कूल्स में, उन लोकेलिटीज़ में जहाँ पे ड्रग ज़्यादा घुस गया है। हम उन एथलीट्स को, उन लड़कों को हम खुद स्पॉन्सर करें, खुद घरों से उठा के, स्कूल से उठा के उनको काउंसलिंग करें, उनको स्पोर्ट्स में लाए, उनको ट्रेनिंग दे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो भी एक डिप्रेशन से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जहाँ पे उनको एक पेरेंटल सपोर्ट अच्छा नहीं मिला होगा, या फाइनेंशियल सपोर्ट उनको अच्छा नहीं होगा, या उनके स्कूल की तरफ से प्रॉपर

0: गाइडेंस नहीं की गई होगी। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे एथलीट्स को, ऐसे लोगों को ढूंढना, वो स्कूल्स के लेवल पे हो, वो लोकेलिटीज़ के लेवल पे हो, या किसी भी कश्मीर में एक ऐसी जगह हो। ये हमारा एक सपना है कि हम उन ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में लाए और कल जाके वो कश्मीर का नाम या इंडिया का नाम रोशन करें। उससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है।
1: बहुत खुशायन बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोएब, यहाँ से हमें जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नौजवान हैं कि वो कुछ करते नहीं हैं, आलस में हैं, डिप्रेशन में हैं, लो लेवल में हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, दिन ब दिन नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ उनका माइंड जाता है, गए नहीं है, माइंड जाता है। तो उनके माँ बाप को कभी लगता है कि इमच बेकार, इमच बोझ, ये महकोक न इस पान से पकने की, तुम चु दुहे तिमन सुजलालत करान, कि वैसा रवैया उनके साथ रखते हैं कि तुम छुन सु रवैया है कहाँ बर्दाश्त करित कहीं क्या ये तो ये पेट तिमन मान तिमन पेरेंटन बे तिमन नौजवान यम जन एम कम्प्लेक्स की शिकार छ या मायूसी हैं शिकार छ।
0: ये जनरली हम एक सारे पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं, खासकर इन पेरेंट्स को, कि जिनको लगता है कि उनके बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं या जो पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहे हैं। जितने भी उनके आसपास जितने भी स्टेडियम्स हैं, वो अपने बच्चों को उधर भेज सकते हैं। हर जगह, हर एक स्टेडियम में, कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह कहीं ना कहीं उनको एक गवर्नमेंट स्टेडियम दिख सकता है। वो उन बच्चों को एटलीस्ट उधर भेज सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बच्चों की लाइफ, या कोई नेबर होगा वो, या कोई मोहल्ले का प्रेसिडेंट होगा, वो बच्चों को स्टेडियम्स भेज सकते हैं। एटलीस्ट इतना वो कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ताकि उन बच्चों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए, एक पॉजिटिव ग्रोथ आए, और कल को जाके वो इतना आउटकम करेगा कि वही पेरेंट्स जो उनको किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनसे प्राउड हो गए।
1: सोएब और भी बात करेंगे इस बारे में, यहाँ पर रुकते हैं एक नगमे के लिए।

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइम रजिस्ट्रेशन के साथ इस वक्त आप सब जुड़े हुए हैं प्रोग्राम पयाम सुबह में, हमारा लाइव मॉर्निंग शो। और इस वक्त हमारा इंट्रैक्शन चल रहा, हमारे जो आज के मेहमान हैं ये बहुत ही पुरअज़्म हैं, जो शीले नौजवान जिन्होंने अपनी इतनी यंग एज में बहुत कुछ अचीव किया, वो भी स्पोर्ट्स फील्ड में रहकर। जबकि हम सब का जब भी हम स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो यही सेकेंड थॉट आता है कि क्या स्पोर्ट्स में जाना मेरे आगे के फ्यूचर के लिए ठीक है, क्या इससे मेरी पढ़ाई या मेरे बच्चे की पढ़ाई सफ़र तो नहीं होगी, क्या मैं वो टारगेट, वो स्कोप, वो जगह पा सकता हूँ जो मेरे जहन में है, जो कल मुझे बहुत ही हाई लेवल का स्टेटस देगा, या फिर ये इशू सिर्फ गंद रखूँ तो बस वक्त ज़ाय करूँ। पूछते हैं अपने मेहमान से कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल। सहेब युचुबासा हमेश में कर कात कि युचुबासा को सो प्रैक्टिस यूजलेस प्रैक्टिस, मतलब कुन कुन सा पानस तो बसान यह यूजलेस प्रैक्टिस, क्या वनकस तुम करो यह कत कि वह स्कीम तथा मज़ आम यहाँ मज़ बेनिफिट मिलान हम जन सड़ी स्पोर्ट्स पर्सन मिलान असल तथा मज़ हेल्प कि मदद मिलान तम हकन अत मज पन वक्त सर्व कर पन ट्रेनिंग करित या पन हिस्सा नित, मगर क्या तो छा बासान कि स्पोर्ट्स फील्ड वनकस सान खतर सिक्योर, सोन फ्यूचर बनावनस मज अत मज का स्कोप वनकस कि अगर हमारे बच्चे इसमें जाना चाहेंगे तो आगे की लाइफ में वो क्या प्रोफेशनली स्पोर्ट्स फील्ड में जा सकते हैं और वहाँ जाकर उनका फ्यूचर सिक्योर है?
1: बेशक स्क्वायर है फ्यूचर, खाली मैं जे एंड के की बात नहीं करना चाहूँगा कि जे एंड के बाहर भी अगर ऐसा कोई एथलीट है कि वो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स या एशियन गेम स्पोर्ट्स खेलता है और वो उस लेवल पे पहुँचता है कि वो एशियन गेम्स खेले या ओलंपिक्स खेले, और अगर वो एशियन गेम्स या ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में कंपटीशन में एक मेडल आता है इंडिया के लिए, इंडिया गवर्नमेंट भी उसको एक कैश प्राइज, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश प्राइज प्लस एक गेस्टेड नौकरी इंडिया गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब हम नहीं बोलेंगे कि खाली जे एंड के में ये पॉलिसी है, हमारी इंडिया की भी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है जहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट्स एथलीट्स जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो इनकम टैक्स हो गया, CISF हो गया, SSB हो गया, BSF हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, हर एक डिपार्टमेंट्स में स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू वो जॉब कर रहे हैं। खाली स्पोर्ट्स

0: पे एक ऐसी जॉब नहीं है कि जिसने स्पोर्ट्स खेला या जिस जो एक नेशनल एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है, वो खाली कोच बन सकता है, वो खाली बच्चों को सिखा सकता है। अपार्ट फ्रॉम कोच, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वो
1: जी
0: वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जितनी उनकी अचीवमेंट्स है उनके बदौलत वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जैसे मैं रिसेंटली बोलूँ, एक इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट निकली थी जहाँ पे खाली स्पोर्ट्स पर्सन्स अप्लाई कर सकते थे, स्पेशली वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए थी, और कुछ 60 to 80 पोस्ट्स भी थे ऑल ओवर इंडिया। नॉट उसमें जितनी भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाके वो वहाँ पे उनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकल सकता है।
1: अच्छा, आपकी बात करेंगे, आप स्पोर्ट्स में आए और आज आज की बात अगर करेंगे, आप महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में बहस द चीफ कोच, एक नई और बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, तो क्या कभी सोचा था कि आपको ये जॉब मिल जाएगी? मतलब
0: जब
1: स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में गए थे कभी ये सोच कर कि आपको ऐसा ओहदा मिल सकता है?
0: जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया या सीनियर लेवल पे वो पहुंचा, कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स खाली मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या मेरे को एडमिशन करना है आगे जाके मैं इस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स खेलूं।
1: जी
0: हमेशा मेरा यही मकसद था कि एक टाइम पे मैं भी उस मुकाम पे पहुंचूं कि मेरे लिए भी मेरे पीछे एक नेशनल एंथम बने। तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे एक बिग अचीवमेंट होती है, जहाँ पे भी वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाता है, 3 लोगों में से 3 मेडल्स में खाली गोल्ड मेडल का एक नेशनल एंथम बजता है, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे एक प्राउड मोमेंट होता है। तो उसी लिए मेरा भी यही सपना था कि मैं इस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ और स्पोर्ट्स में ऐसी अचीवमेंट लाऊँ कि मेरा यह सपना पूरा हो जाएगा।
1: अच्छा, जो ये अब आपको ओहदा मिला है, मैं मुख्तसरन जानना चाहूँगी कि इसके पीछे ऐसी कौन सी चीज़ है, आपकी कौन सी कोशिश काविश या कौन सी ऐसी चीज़ है, मेहनत है, जिसने आपको इस ओहदे तक पहुँचाया, इसका हकदार बनाया कि खुद चलकर ये जो ओहदा है आपको
0: नहीं,
1: मिल गया?
0: बचपन से ही मेहनत की, बचपन से ही सुबह 5 बजे इंसान निकलता था, पहले प्रैक्टिस करता था, फिर स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, फिर वापस प्रैक्टिस करता था। तो ये जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, कोई 10 साल 12 साल खेल के हर दिन प्रैक्टिस करके सब जूनियर नेशनल, फिर नेशनल, फिर फेडरेशन कप, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स खेल के आज फिर इंडिया के लिए मेडल्स ला के आज इंसान इस ओहदे पे पहुंचा है। तो द जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, काफ़ी इंजरीज से थी, और बदौलत जब घर वालों की दुआएं साथ होती है तभी कोई इंसान कामयाब होता है।
1: तो यहाँ से अभी हमारा जो प्रोग्राम है अख्ताम पर है, आखिरी लम्हात पर है, हम चाहेंगे कि आप अपने सुनने वाले तमाम नौजवानों को एक ऐसा मैसेज देना चाहें जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे
0: मेरी
1: उन तक?
0: यही मैसेज होगी, जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्पोर्ट एथलीट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे यही एक मैसेज रहेगी कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, वो आप अपने स्कूल लेवल पे करो, वो आप नज़दीकी स्टेडियम में जाके करो, वो आप किसी प्राइवेट क्लब को ज्वाइन करो। बस आपको एक चीज़ की नज़र रखना है, एक चीज़ वेरीफाई करना है कि कौन सा स्पोर्ट्स वैलिड है, कौन सा स्पोर्ट्स वैलिड नहीं है। अगर आपको एक ऑप्शन बनाना है कि मुझे स्पोर्ट्स को कैरियर बनाना है, तो आप वो स्पोर्ट्स चूज़ करो। J&K की मैं बात करूँगा कि जो भी स्पोर्ट हमारा JK स्पोर्ट्स काउंसिल से वेरीफाइड होगा, रिकग्नाइज्ड होगा, वहाँ जाके आप वो स्पोर्ट्स पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी रिकग्नाइज स्पोर्ट होगा, उसके बाद किसी भी स्टेडियम में जाके ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग लेने के बाद मेहनत करो और अल्टीमेटली आप भी अचीव कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं जिनने वो अचीव किया है। देखिए, रिसेंटली हमारी रांची टीम ने फर्स्ट प्लेस लाई, कितने टाइम के बाद लाई,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: हार नहीं मानी
1: हार
0: उन्होंने
1: नहीं
0: जब तक
1: मानी।
0: उन्हें जीत लाई। तो यही मैसेज रहेगी कि स्पोर्ट ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर बनाओ।
1: और हार नहीं माननी है।
0: हार नहीं माननी।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने वैल्यूबल अपने प्रेशियस थॉट्स हमारे साथ, हमारे सामीन के साथ शेयर करने के लिए। और कहते हैं ना सामीन, सफ़र चाहे जितना भी तवील और कठिन हो, अगर इरादा पुख्ता हो तो मंजिल मिल ही जाती है। रग्बी से लेकर पंचत

0: सलात तक आलमी अखाड़े तक और अब बहसत चेप कोच नई नस्ल की रहनुमाई करने तक का सोहेब फ़ेरोज़ जिलानी साहब का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि ख्वाब देखना और फिर उनके लिए अपनी पूरी जान लगा देना ही असल कामयाबी है। आज के इस शानदार सेशन को समेटते हुए हम सोहेब साहब के इस अज़म और हौसले को सलाम पेश करते हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आपकी ये कही हुई बातें सिर्फ अल्फाज नहीं हैं बल्कि कश्मीर के हर उस नौजवान के लिए एक मशाल रहा है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की तकदो कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू सो मच। और समीन यहीं पर आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आज का शो यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मिलते हैं अगली सुबह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। आगे का सफ़र रहेगा आपका फहमीदा के साथ।
2: शुक्रिया तस्लीमा। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समीन 11:30 हुए हैं। हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 6:75 समय समीन वली बोजो छकर तरो पेशकरण अब्दुल रशीद हाफिज दस से थी। वली बोजो मनीष कला में मंजूर दमदार।

0: سامعین، تو اسے اچھا کرتے رو بوزان پیش اس کران عبدالرشید حافظ دی ہند ستھی منش بوزو تا ایک کلام منظور دمدار یہ چھ آکاشوانی سری نگر سوندے ملان بوزیو۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ اب پیش ہے آکاشوانی دلی سے خبریں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں پریانکا اروڑا۔ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
3: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीत

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लोकसभा में आज मामूल की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन मेंबरान ने दिल्ली में तालिबे इल्मों के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर वजीर दाखिले के बयान की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाला शुरू करने का ऐलान किया, ताहम हिजब इख्तिलाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजे देखे गए। ऐवान बाला की कार्रवाई भी अपोजिशन मेंबरान के एहतजाज के नतीजे में दोपहर 12 तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ज़िराअत के वज़ीर जावेद अहमद डार की सरबराही में जम्मू कश्मीर के आला सतह के एक वफद ने हाल ही में यूरोप का दौरा किया। इस दौरे का मकसद यूरोपीय ममालिक में हॉर्टिकल्चर के फरोग के लिए अपनाई जा रही जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करना था, ताकि इस टेक्नोलॉजी को बरोयकार लाकर जम्मू कश्मीर में बागवानी शोबे को जदीदियत से हमकरार कराया जा सके। दौरे के दौरान वफद के मेम्बरान ने बैन अक्वामी शहरत याफ्ता हॉर्टिकल्चर नर्सरीज और हॉर्टिकल्चर से वाबस्त चंद एक इदारों का भी दौरा किया। दौरे के ताल्लुक से वजीर ज़िराअत जावेद अहमद डार ने कहा है कि इस तरह जम्मू कश्मीर में बागवानी शोबे को फरोग देने के लिए सरकार की संजीदगी और अज़म की अक्कासी होती है। रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल अनु मल्होत्रा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दस्तियाब रकूमात का मुनसिफाना और मुनासिब इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में इस मिशन की अमलावरी का जायजा लेते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों की बर वक्त तकमील की हिदायत दी। अनु मल्होत्रा ने कस्बों और देहात में कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके पर ठिकाने लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और कल शाम तक मजमुई तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। आज दोपहर 12 तक 4068 मजीद यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते इस रूट से यात्रा आरजी तौर पर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 2051 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशना में अखाड़ा से महंत दीपेंद्र गिरी की क्यादत में पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि पहलगाम पहुंचने पर छड़ी मुबारक का भूमि पूजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इख्तिसादी जराइम से मुतालिक विंग ने एक तवील अरसे से जेर समात भर्ती से मुतालिक धोखाधड़ी के एक मामले में मुलजिम को सजा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। 13वीं फाइनेंसिंग कमीशन की एक खसूसी अदालत ने बड़गाम के रहने वाले नज़ीर अहमद मलिक नामी एक शख्स को कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई है। मजकूरा शख्स पर जाली तालीमी असनाद का इस्तेमाल करके इंडियन रिजर्व पुलिस में धोखाधड़ी से कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने का इल्जाम है। मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन रूहानी गुरुओं की याद में मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस दिन की मुनासिबत से मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इंसानियत के अकदार को बढ़ावा देने में गुरुओं के रोल को अहम करार देते हुए लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके जिले में मुख्तलिफ अलाई और फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वे वंदना योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ का तफसील से जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 70 साल से ज्यादा की उम्र के अहल बुजुर्ग शहरियों को वे वंदना योजना के दायरे में लाकर इस स्कीम के फवाहिद इन तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टेस्टिंग, निगरानी और बेदारी प्रोग्राम में वसत लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम अथहर आमिर खान ने कहा कि जरिए सेक्टर को मजीद फरोग देने के लिए बुनियादी सतह पर बामानी इकदाम किए जाने चाहिए। शेखुल आलम हॉल बड़गाम में कल एक रोजा किसान मेले का इफ्ताह करने के बाद उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लेबोरेटरियों से खेतों तक ले जाने से इस सेक्टर में जदीदियत लाई जा सकती है। इस वर्कशॉप के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों को पायदार जरिए सरगर्मियों को फरोग देने और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतलिक जानकारी फराहम की गई। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने एक मीटिंग के दौरान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले की अमलावरी और इस सिलसिले में अब तक की हसूलियाबियों का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि इस स्कीम के तहत 21,533 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 17,701 दरख्वास्त दहिंदगान को स्कीम के लिए अहल पाया गया और इनकी दरख्वास्तों पर कार्रवाई शुरू की गई है। तरक्याती कमिश्नर ने इस स्कीम से मुतलिक जानकारी आम करने की जरूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर मणिपुरा इंदु

सामीन नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 12:30 होने वाले हैं। अब पेश है हमारे यहाँ से खबरें।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जाँच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

वेव 268 अशारिया 8 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़। समय 1:10 हुए हैं। समाप्त करें एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?

0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-5559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम

0: अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ,
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। हाँ। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: अरे वाह जॉन, देखो सामने।
1: अरे हाँ,
0: क्या बात है।
1: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
0: हाँ जॉन, हाँ हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
1: हाँ
0: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो।
1: तुम्हें भी विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो यह बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, यह संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: आइए इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सामईन, आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है।
4: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समय 1:50 होने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मामले पर लोकसभा में बहस से कतरा रही है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में

0: आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पर गौर खोज और मंजूरी के लिए बहस जारी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तिजामात हैं जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सजा याफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। इसमें मुकदमात की तहकीकात 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमात का फैसला कर देने की तजवीज़ है। अमला, अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर मामलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में यह बिल पेश किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट दिलेश्वर कामत ने बिल पेश किए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह कानून तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के साथ साथ तालीमी निजाम में शफाफियत को भी फरोग देगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के अरकान ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 की दफात पर बहस के दौरान कोई बात नहीं की बल्कि गैर मुतालिका सियासी मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि यह तरमीमी बिल तलबा के खदशात और मुतालबात के जवाब में पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को लाने के वजीर आजम के फैसले ने इम्तिहान के निजाम पर तलबा के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: लोकसभा ने उस मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तौसी कर दी है जो एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक कानून साजी पर गौर कर रही है। इस कमेटी की मुद्दत पार्लियामेंट के 2026 के मौसम सरमा के इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ाई गई है। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने आईन में 129वें तरमीमी बिल 2024 और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 के साथ मुश्तरका कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की तहरीक पेश की। इस तहरीक को ऐवान ने जबानी वोट से मंजूर कर लिया। बीजेपी के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने, जिनमें झारखंड के अराकीन भी शामिल थे, पार्लियामेंट के अहाते में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर एहतजाज किया। उन्होंने CBI से इसकी तफ्तीश कराने और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के रहनुमा संजय सेठ ने भी इस मामले की CBI से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। जनाब सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं और यकीनन उन्हें इनसे फायदा पहुंचेगा। आज राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि अपोजिशन ने नीट मामले पर तलबा पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की वजह से ऐवान में शोरगुल किया। जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा से बात की और इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहां बालाई आसाम में जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सरमा ने यह जानकारी दी।

0: ने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरतेहाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ, बहाली और तमाम जरूरी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान शिवसागर, गोलाघाट, चराईदियो और जोरहाट के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा जिलों में इमदादी और बाजाबादकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। आसाम सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहुत से इमदादी और बचाव इकदाम का ऐलान किया है। इन इकदाम में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को फौरी माली इमदाद देना भी शामिल है। इसके अलावा मुतासर कुम्मों को भी माली मदद और तलबा को तालीमी मदद दी जाएगी। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाजे में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने GFS गैलेक्सी, MT अलबाहिया और MT मुम्बासा समेत कई बहरी जहाजों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाजों की बिला रुकावट और आजादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दो दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी UKPNP ने गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनिया भर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरतेहाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says center to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime

सामीन ये नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। 2:30 होने वाले हैं, हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये छा आकाशवाणी श्रीनगर समीन धूच 2:30 वलीबोजो छकरतोरो पेशकरण अब्दुल रशीद हफिज दस से थी वलीबोजो मनीष कला में अहमद बटवेरी।

Зок шок тогда пайда кивней са земін на осман. Зок шок тогда

0: Azusu man sofra.
1: Ruhul qamirnas şahko sakınam ayrıfan

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है। मीरे वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर। सामीन सपहर के 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेजबान फहमीदा आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब खैर आफियत से हैं। दोस्तों, फिर नगमों का सिलसिला हमारा शुरू होने को है और नगमों के साथ साथ हम बात करते हैं अपने सुनने वालों, अपने चाहने वालों के साथ करते हैं अपने दिल की बात।

बयां और आपके दिलों की बात भी हम तक ज़रूर पहुंचती है। दोस्तों, हम हर बार ज़िंदगी के अलग अलग मौजू पे बात करते हैं, ज़िंदगी के हर उस ढंग रंग को सामने लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यही ज़िंदगी है, एक हसीन सफ़र, एक ख़ूबसूरत नगमा और एक ऐसी धुन है जो हर दिल में अलग अंदाज से गूंजती है। दोस्तों, कभी खुशियों की बरसात, कभी यादों की महक, तो कभी ख्वाबों की रंगीनी, यही तो ज़िंदगी की असल मस्ती है। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत से, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं कि एक म्यूज़िकल सफ़र में, हम बात करेंगे उन लम्हों की जो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं, दिल को सुकून देते हैं और रूह को ताजगी अता करते हैं। ज़िंदगी का हुसन सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि रास्तों में भी है। हंसती मुस्कुराते चलते रहना, छोटी छोटी खुशबू को गले लगाए अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना और हर नए दिन का शुक्र अदा करना, यही तो ज़िंदगी की असल मस्ती है। तो ज़िंदगी हर लम्हा एक नया साज छेड़ती है, बस शर्त यह है कि हम दिल से इसकी धुन सुने। तो दोस्तों, आइए इस खूबसूरत एहसास का साथ सुनते हैं आज का ये पहला नगमा, जो ज़िंदगी के रंगों को और भी दिलकश बनाता है।

वाह दोस्तों, क्या नगमा था खूबसूरत सा। वाकई मौसीकी ज़िंदगी की थकन को खुशबू में बदल देती है। जब दिल बोझल हो तो एक अच्छा गीत उम्मीद की किरण बन जाता है, और जब दिल खुश हो तो वही गीत खुशबू को दो चांद कर देता है।

है। दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नया मौका देती है मुस्कुराने का, मोहब्बत बांटने का और दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी बनने का। इसलिए हर दिन को एक खूबसूरत तोहफा समझ कर जिए। तो दोस्तों, अब वक्त है एक और दिलकश नगमे का, जो ज़िंदगी की मस्ती को शायद मज़ीद रंगीन बना दे।

जी दोस्तों, ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। दोस्तों, वाकई खूबसूरत नगमे हैं जिन्हें हम कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी कि जितना पुराना हो उतना ही सुहाना। दोस्तों, जिंदगी की बात हम कर रहे हैं, जिंदगी से जुड़े

हर नगमे, हर ताल, जिंदगी के हर साज को हम छेड़ते हैं जिंदगी को मुस्कुरा कर जीने के लिए, क्योंकि मुस्कुराहट वो चिराग है जो अंधेरों में भी रोशनी बिखेर देता है। दोस्तों, इन अंधेरों से निकल के एक मौसीकी, एक गीत की वो झलक जो हमें पूरे दिन भर का सुकून अता करती है।

जी दोस्तों, बहुत खूबसूरत नगमा और खूबसूरत सी आवाज़ों में आपने इसे सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों, बेशक ज़िंदगी एक खूबसूरत सा नगमा है। कहते हैं, ज़िंदगी अगर एक किताब हो तो इसका हर सफ़ा एक नई कहानी, और अगर ज़िंदगी एक नगमा है तो इसका हर सुर एक नया एहसास। कभी खुशबू की लय, कभी उम्मीद की धुन, और कभी यादों की मधम सी मौसीकी। यही तो ज़िंदगी का हुस्न है। दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर सुबह ये पैगाम देती है कि गुजरे हुए लम्हों को दुआ बना लीजिए, आज को मोहब्बत से संवार लीजिए, और आने वाले कल को उम्मीद के सुपुर्द कर दीजिए। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है, नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि इसमें है कि हम जो कुछ रखते हैं इसकी कितनी कदर करते हैं। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत से सफ़र में हम ऐसे नगमे सुन रहे हैं जो दिल को सुकून, यादों को महकाएं और चेहरों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेरते हैं।

बेशक दोस्तों, सुरों का संगम और आवाज़ों की वो मिठास। उम्मीद है ये नगमा आपके दिल को ज़रूर छू गया होगा, जैसे आवाज़ लता मंगेशकर और यसुदास की। दोस्तों, मौसीकी वो जुबां है जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधा दिल से बात करती है और दिल ही में उतर जाती है। इसी तरह ज़िंदगी भी एक संगीत की मानंद है। ज़िंदगी में अगर कभी थकन महसूस हो तो ज़रा रुक कर अपने इर्द गिर्द देखें, खिलते हुए फूल, चलती हुई हवा, बच्चों की हंसी और अपनों की मोहब्बत, ये सब याद दिलाते हैं कि खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छिपी होती है। दोस्तों, खुश रहने का हुनर यही है कि हर लम्हे में कोई ना कोई खूबसूरती तलाश कर ली जाए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा जो जिंदगी की इस दिलकश कैफियत को और भी रंगी बना दे।

0: फौजी दोस्तों, फिल्मी नगमों का ये सफर जारी है। हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी का सफ़र हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो शख्स उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, इसके लिए हर नई सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है। इसी उम्मीद और मोहब्बत के साथ आज की महफिल को हम और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये एक प्यारा सा नगमा।

जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी की मस्ती की, ज़िंदगी के उस सफ़र की। दोस्तों, ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जीना सीखें, क्योंकि मुस्कुराहट वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, ज़िंदगी की इन्हीं हसीन साथों को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो दिल में ताजगी, चेहरे पर मुस्कुराहट और यादों में खुशबू बिखेर दे।

बेशक दोस्तों, किसी को जाने बिना हम ज़िंदगी का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई हमदम की शक्ल में। दोस्तों, बेशक ज़िंदगी का हुस्न यही है कि यह हर लम्हे हमें कुछ न कुछ नया दे जाती है। कभी मुस्कुराहट की सूरत, कभी आजमाइश की शक्ल में, और कभी किसी खूबसूरत याद की सूरत में। दोस्तों, हम हर लम्हे को खुले दिल से कबूल करें तो ज़िंदगी खुद एक खूबसूरत नगमा बन जाती है। दोस्तों, क्या कभी गौर किया है कि बारिश की बूंदों की आवाज़, ठंडी हवा का लम्हा, सुबह की पहली किरण, शाम की खामोशी और किसी अपने की मुस्कुराहट, ये सब वो नगमे नेमतें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, मगर ये ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी का मज़ा मंजिल में नहीं बल्कि इसके सफ़र में है, जिसे हम मोहब्बत, खलूस और उम्मीद के साथ तय करते हैं।

बेशक दोस्तों, वक्त भी बहुत कीमती है, ये खामोशी से गुजरता है, इसलिए हर लम्हे को खुशी, मोहब्बत और शुक्रिया के साथ जीना चाहिए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत नेकी है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश करें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस निशस्त की ये आखिरी सौगात।

बेशक दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये महफिल, ये बातें और ये खूबसूरत नगमे आपके दिल को अच्छे लगे होंगे। दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों, मोहब्बत, उम्मीद और मुस्कुराहटों से ही भरी रहे। तो दीजिए अपनी मेज़बान को आज की निशा से इजाज़त, आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सामिन 3:50 होने वाले हैं। पेश है हमारी यहाँ से खबरें।
1: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम

बजे तक के लिए मुलतवी। वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की शमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया आज़म। जम्मू कश्मीर में मुनाकिद होने वाले बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर

वैष्णवी अखाड़ा श्रीनगर से पहुंच गई पहलगाम। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 पर गौरखोज और मंजूरी के लिए बहस आज भी जारी रही। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तजाम शामिल है, जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक की कैद की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सजायाफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। इसमें मुकदमात की तहकीकत 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमात का फैसला कर देने की तजवीज है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले को

0: लेकर हिजब इख्तलाफ के शोरगुल के चलते 2:30 बजे तक मुलतवी करना पड़ी। पहले इल्तवा के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी तो राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हिजब इख्तलाफ के अरकान ने नाराबाजी जारी रखी। इसके बाद चेयरमैन ने कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की शमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है ताकि तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के साथ साथ लोगों को आला मियार की सहूलियात दस्तियाब हो सके। इन बातों का इजहार आज उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कई अरकानी कानून साजिया के साथ मुलाकात के दौरान किया। इन अरकान ने अपने अपने हलकों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात को उजागर किया। वज़ीर आला ने अरकान को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 7 सितंबर से 10 सितंबर तक मुनाकिद होने वाले पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2026 में आलमी सतह के फिल्मसाज काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और अब तक 50 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले फिल्मसाजों ने 875 फिल्में दाखिल की हैं। इस फेस्टिवल के लिए फिल्में दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। इस फेस्टिवल का इनेकाद महकमा इतलात व राबिता आमा जम्मू कश्मीर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट के इश्तराक से कर रहा है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और कल शाम तक मजमू तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। आज दोपहर 2 बजे तक 5,285 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है जिसके चलते इस रूट से यात्रा आरजी तौर पर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 2,051 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां काफिला वादी पहुंचा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह छेड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा से महंत दीपेंद्र गिरी की क्यादत में पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि पहलगाम पहुंचने पर छेड़ी मुबारक का भूमि पूजन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया के साथ बात करते हुए महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा,
1: स्वामी अमरनाथ जी की अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर पहलगांव में प्रस्थान कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से, और वहां जाकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो पारंपरिक अनुष्ठान है, इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान है जैसे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण, वो अनुष्ठान वहाँ हम पहलगांव में करेंगे। पूजन करने के पश्चात वापसी पे मारतंड रुकेंगे, छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और सायंकाल हम वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में लौट आए।
0: मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन रूहानी गुरुओं की याद में मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस दिन की मुनासिबत से मुल्क के आवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इंसानियत के अकदार को बढ़ावा देने में गुरुओं के रोल को अहम करार देते हुए लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम की शुरुआत करेंगे। उमूरी नौजवान और खेलकूद के वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इब्तदाई तकरीब में 1 करोड़ से जायद शुरका शामिल होंगे। 100 हफ्तों पर मुश्तमिल इस कौमी सतह की जनभागीदारी मुहिम का मकसद नौजवानों को मनुष्यात से दूर रखना है। मुहिम के तहत हर एतवार को नशा मुक्त अहद दिलाया जाएगा और नौजवानों के लिए बेदारी प्रोग्रामों और कम्युनिटी रिलीज का इनेकाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 8,181 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं जिनसे 85 मेगावाट की तवानाई पैदा हो रही है। इस तरह जम्मू कश्मीर मुल्क की 31 रियासतों और यूटीज में इस प्रोग्राम की अमल आवरी में 3रे नंबर पर हैं। इस बात की जानकारी श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा को दी गई। वजीर मौसूफ ने इस हसूलियाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए मजकूरा स्कीम को मजीद वसत देने की हिदायत दी। हुकूमत ने यारवन शादीमर्ग पुलवामा में खू साहब चश्मे को तरक्की देने के लिए 6,30,00,000 रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वजीर आला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत इस अहम मकाम पर बुनियादी ढांचे को तकवियत मिलने के साथ साथ इसकी शानी रफ्तार बहाल करने में भी मदद मिलेगी। वाजह रहे कि हुकूमत ने हाल

में शोपियां की तारीखी जामा मस्जिद और रामबन में सर्वाधर चोमंडा माता मंदिर की बहाली के लिए 16 करोड़ 36 लाख रुपए के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी थी। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने चंद रोज कबल अनंतनाग में एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के घर जाकर उनके लवाकिन के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। वजीर मौसुफा ने सोगवार कुंबे को सरकार की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एमएलए बीरवा, एमएलए खान साहब और एमएलए टंगमर्ग भी उनके हमराह थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग तलब करके जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस प्रोग्राम के तहत अब तक की हसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में हर तरह की तवालत को दूर करने और कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने इंतजामिया के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके जिले में मुख्तलिफ फलाई और फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वे वंदना योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का तफसील से जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 70 साल से ज्यादा की उम्र के अहल बुजुर्ग शहरियों को वे वंदना योजना के दायरे में लाकर इस स्कीम के फवायद उन तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टेस्टिंग, निगरानी और बेदारी प्रोग्रामों में वसत लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम अतर आमिर खान ने कहा है कि जरई सेक्टर को मजीद फरोग देने के लिए बुनियादी सतह पर बामाना इकदाम किए जाने चाहिए। शेखुल आलम हाल बड़गाम में कल एक रोजा किसान मेले का इफ्ताह करने के बाद उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लेबॉरेटरियों से खेतों तक ले जाने से इस सेक्टर में जदीदियत लाई जा सकती है। इस वर्कशॉप के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों को पायदार जरई सरगर्मियों को फरोग देने और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक जानकारी फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब की हिदायत पर मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में वकार नॉलेज सेंटर कायम किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अजस की तालिबात ने जिला इंतजामिया की इस मुहिम के तहत मजकूरा सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर वहां तैनात अमले ने तालिबात को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों और खदमात के अलावा कैरियर गाइडेंस से मुतल्लिक हुकूमत के मनसूबों के बारे में जानकारी दी। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने एक मीटिंग के दौरान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहल की अमलावरी और इस सिलसिले में अब तक की हसूलियाबियों का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि इस स्कीम के तहत 21,533 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 17,701 दरख्वास्त दहंदगान को स्कीम के लिए अहल पाया गया और उनकी दरख्वास्तों पर कार्रवाई शुरू की गई। तरक्याती कमिश्नर ने इस स्कीम से मुतालिक जानकारी आम करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। समीन सपहर के 4 बज चुके हैं। समाप्त करें आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले सुनते हैं ये वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम केन कम में आ तुसदा मेजबान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया कुआख्ता। उम्मीद है तुसी खैरियत नाल होसो ते प्रोग्राम सुनदे होसो। सामीन अज 29 जुलाई है, इस दिन आलमी सतह उते सियां दा आलमी दिहाड़ा मनाया जुलदा है। ए दिन जंगली सियां दी घटती हुई नस्ल को बचाना और उनके कुदरती घर यानी जंगलों के तहफ़ वास्ते शोर पैदा करता है।

सामीन आप समाप्त कर रहे थे आज का पहाड़ी प्रोग्राम। सपहर के 4:20 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप समाप्त करेंगे पहाड़ी में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा इनका में हाँ लियाकत अब्बास। पहले पेश इन कुछ खास खबरों की सुर्खियाँ। लोकसभा विच पब्लिक इम्तिहान का तरमीमी बिल 2026 का बहस है जारी। अपोजिशन वट को देखते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई अज भी मुतासर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह जम्मू कश्मीर के सारे खितियां बिच शमूलियाती ते बराबर की तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया अजम। जम्मू कश्मीर में मुनक़द होने वाले बैन अवी फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर में आलमी फिल्म साजा की बड़ी दिलचस्पी उन्होंने दोनों भरे गई। 875 फिल्म और बल दल के रस्ते थी। सालाना श्री अमरनाथ की यात्रा चल रही है। छड़ी मुबारक जश्नी अखाड़ा से नगर थी पहुँच गई पहलगाम तो हम पेश है इन्हें तो दुनिया खबरों की तफसील। लोकसभा बिच पब्लिक इम्तिहान बिच गलत तौर तरीकों की रोकथाम के मुतलक तरमीमी बिल 2026 का गौर खोज तो मंजूरी वास्ते बहस अज भी चलती रही। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहान बिच गलत तौर तरीकों की रोकथाम के मुतलक तरमीमी एक्ट 2024 बिच तरमीम करना है। इस कानून बिच लरसरे अहम इल्तजाम शामिल हैं जिन्हें बिच मुलजमा को 10 साल की कैद की सज़ा 10 करोड़ रुपये तोड़ी का जुर्माना और सज़ा दिते जुलने के नफरों की जायदाद जब्त करने जिया सख्त सज़ावें शामिल हैं। इस कानून के तहत सारी रियासतों की हुकूमत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें बढ़ा सी ताजे मुकदमे की हर दिहाड़े समाप्त हो सके। इस बीच मुकदमे की तहकीकत 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला करने की तजवीज़ रखी गई है। इधर राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले का एहतजाज करने वाले गदरियां तो पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले को केंद्र का अपोजिशन के चीहे वढ़ते चलदियाँ 2:30 बजे तोड़ी मुलतवी करनी पी। पहले इल्तवा के बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन CB राधाकृष्णन सुन सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन के अरकान सुन नाराबाजी जारी रखी जिसके पिछा चेयरमैन सुन कार्रवाई को दोपहर 2:30 बजे तोड़ी मुलतवी कर छुड़िया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन जम्मू कश्मीर के हर खिते की शमूलियाती तो बराबर की तरक्की को यकीनी बना

जी सामिन, तुमने सुन लिया था। सामिन, सेहतमंद जिस्म एक कामयाब जिंदगी की बुनियाद है। खेल जिस्मानी सेहत ना बरकरार रखन को बेहतरीन जरिया है। दौड़नो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और दूजा खेल जिस्म का तमाम एजाना मुतहरक रखें। खेड़ों के जरिए खून की गर्दिश बेहतर वह, दिल मजबूत वह, फेफड़ा की कारकर्दगी माँ बादो वह और जिसम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहे। डिजिटल दौर में मोटापो, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दूजा तर्ज जिंदगी के मुतलक बीमारी जुड़ी हैं तेजी ना बढ़ रही हैं। इन बीमारियों की एक बड़ी वजह जिस्मानी सरगर्मियों की कमी है। खेड़ न सिर्फ इन बीमारियों से बचाव को जरिया हैं बल्कि एक मतवाजन और सेहतमंद जिंदगी गुजारन में भी मदद दें। मौजूदा दौर में ज़हनी दबाव, बेचैनी, डिप्रेशन और तन्हाई का मिसाइल आम होता जा रहा है। मुसलसल मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नाल ज़हनी थकन और नफसियाती मिसाइल में बाधो हो रहा है। खेड़ ज़हनी सुकून और खुशी फराम करें। खेड़ों के दौरान जिस्म में ऐसा हारमोन्स खारिज हुएं जो इंसान ना खुश, पुरसकून और पुरजोश बनाएं। खेड़ ज़हनी यकसोई, फैसला साजी, सब्र और बर्दाश्त की सलाहियत ना भी फरोग दें। जो नौजवान खेड़ा में ऐसा लें वे अमूमन ज़्यादा पुरएतमाद, मुस्बत सोच रखने वाला और जहनी तौर पर मजबूत हों। सामीन, आगे पेश है यू नगमा।

जी सामीन, तम नगमो सुन रहा था ते गल हो रही थी खेडन की। खेड इंसान की शख्सियत ना निखारन मा अहम किरदार अदा करे। खेड़ा का मैदान मा नज़्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, मेहनत, दयानतदारी और टीम वर्क जैसी खूबी पैदा हुए। एक खिलाड़ी जीत और हार दोनों ना कबूल करना सीख है, जो कि अमली जिंदगी में कामयाबी के वास्ते इंतहाई ज़रूरी है। खेड नौजवानों में कायदाना सलाहित भी पैदा करे, टीम की क्यादत, मुश्किलात को सामनो और इज्तिमाई फैसलो करनो, ऐसी खसूसियातें जड़ा खेडन के जरिए परवान चढ़ें और मुस्तकबिल में इन्हीं कामयाबियों ना शहरी एक रहनुमा बनने का असूल अपना लें और उनमा रहनुमा बनने की सारा जड़ा सिकलें वे आ जाएँ। खेड मुख्तलिफ ज़बाना, मज़ाहिब, इलाक़ा और सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद ना एक प्लेटफार्म पर इकट्ठो करे। खेड़ा के जरिए भाईचारों, रवादारी, एहतराम और आपसी तावन को जज्बो फरोग पर। खेड़ का मैदान में रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक ख़त्म हो जाए और सिर्फ काबिलियत, मेहनत और खेड़ को जज्बो बाकी रह जाए। इस तरह खेड़ माशरा में इतिहाद, अमन और यकजहती का फरोग में अहम किरदार अदा करे। सामीन, आगे पेश है ये नगमा।

0: समीन तम नगमो सुन रहा था। समीन आगे मारे को एक इंटरव्यू है और मारी आज की मेहमान है आबिदा चौधरी। इना को ताल्लुक बांडीपुरा नाल है और ये इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। इनके ना गल किए मोहम्मद यूनुस कालूखेल साहब और ने।
1: सामीन हजरात, एक वक्त वैत हो कि लोग लड़कियों की तालीम ना, उनकी तरक्की ना मायूब समझे था। तो ख़ास तौर पर अगर हम अपनी बरादरी की गल करें, हमारी बरादरी के बीच जितने बच्चा ना पढ़ाए था और बच्चों की जी तालीम है वह बहुत घट थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वक्त बदलियो, दौर बदलियो, वक्त जिस टाइम नज़ाकत तब्दील हुई तो लोगों ने देखा देखी पर जिस तरीके नाल बाकी कौम अगे गई, तालीम हासिल की, इल्म हासिल की, और इस तरीके नाल अज हमारी बरादरी की जी बची हैं वे भी तालीम का मैदान में भी और ज़िंदगी का मुख्तलफ शोबा में काफ़ी आगे निकल गई हैं। तो यह हमारे वास्ते एक बड़ी फख्र की गल है। तो इसी तरीक़े के नाल खासी सारी बच्ची जी उन्हें तालीम के नाल नाल कुछ और ऐसा शोभा भी चुनिया है जिनमें उन्हें बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। मेरा रो बरो तशरीफ़ फरमा है आबदा जी। आबदा जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: तुम अपना तारुफ दियो, थारोपुर के ना है ते कित के रहने वाली हैं
2: जी। मेरा नाम आबिदा अख्तर है, हूँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर का चिट्ठी बांडी इलाका में रहने वाली हूँ
1: जी। नो भी तारीखी तौर पर यू चिट्ठी बांडी जुड़ो है ना, यू पहला इनते बड़ो सरफेस तरी है
2: जी। जी बिल्कुल
1: जी। आप तो जी तब मैंने दस

0: हमारी जो इब्तदाई तालीम है
1: जी
0: वह तुमने किस माहौल में शुरू की, कार को माहौल कैसा थो, तो इस तरह फिर शुरू करना बाकी गल।
1: जी इब्तदाई तालीम में अपना इतने इलाका में ही हमारे 10-15 कदम दूर है, हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हुआ तो उस टाइम में तो उससे मेरी स्कूलिंग हुई है, बेसिक स्कूलिंग
0: ठीक
1: गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिट्ठी बाणी बाला।
0: जी,
1: उस तो बाद मिडिल हमारा दूजो ग्राँ है तो 2-3 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल थो जी एम एस आरा गाँव ते मेरी मिडिल स्कूलिंग हुई है। उस तो बाद हायर सेकेंडरी स्कूल आरा गाँव ते 12th की में ते उस तो बाद डिग्री कॉलेज बांडीपुर ते बीए की।
0: बहुत अच्छा। तो
1: जी
0: कार को माहौल कैसा था, तालीमी माहौल था?
1: जी उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि वालिद साहब की वफात हो गई थी तब वो 1 साल को जाई महीने की थी।
0: ठीक
1: कार माँ बड़ो पाई तो वो नानियाल चले गए थो, नानियाल का साइड में थी पढ़ाई को थोड़ो
0: अच्छा
1: जी अच्छो रुझान। इस हमारा ग्राम उतना ज़्यादा नहीं थोते फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह

0: वफात हो गई थी तब, वो 1 साल को जाई महीने की थी।
1: ठीक
0: कार माँ बड़ो पाई तो वो नानियाल चले गए तो नानियाल का साइड में थी, पढ़ाई को थोड़ो
1: अच्छा
0: जी अच्छो रुझान इस हमारा ग्राम उतना ज़्यादा नहीं तो है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिना मतलब बचपन ती शौक थी हूँ जहाँ स्कूल जान थे पहले 3 साढ़े 3 साल की उम्र में, मतलब फिर कार का के क्यों कारी में तख्ती वगैरह भैया और चले था स्कूल उन्हें
1: ठीक
0: के लिए कहते लिखू थी तो
1: ठीक
0: शौक में ना बचपन ती थो
1: जी
0: जी
1: तब ने पाया कर क्यों या थारी बहन बहंगी उन्हें भी
0: जी
1: पढ़िया लिखियो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: अच्छा
0: भाई तो मेरा तो बड़ा है, उन्होंने भी तालीम 12वीं तक की है, उस तो बाद कार का वो माली हालात तो उतना बसी नहीं था कि
1: ठीक
0: आगे भी अपनी तालीम जारी रख सकता,
1: जी
0: उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी जॉब उनकी लग गई थी, फिर
1: ठीक
0: उन्होंने आगे तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकी
1: जी।
0: जी
1: तो आपदा जी अगर हम बच्चे की तालीम की गल करें कि कोई
0: जी
1: मुश्किल आता है।
0: बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज का, अगर इसने देखा आज उतने नहीं है लेकिन
1: ठीक
0: उस टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। घर तो कतरी की जात ना, मतलब बाहर नहीं चला में था, वालदेन भी माहौल ही नहीं था बिल्कुल भी अच्छा,
1: ठीक
0: तक भी मतलब मेरा याददाश्त में मैंने लगे हमारा एरिया की पहली कतरी हूँ थी जो कॉलेज गई है
1: ठीक
0: जी।
1: तब ना देख के ते
0: जी जी
1: कितनी एक बच्ची जुड़ी थी हमारी बरादरी की विकाल जब पहुंची।
0: बहुत ज़्यादा आज तो
1: जी
0: माशाल्लाह पूरा ग्रां की हमारे काफ़ी सारी जड़ी गदरी हैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले और उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की है, लेकिन उस टाइम में कोई नहीं थी हमारा, मेरा क्लास में मैंने जब भी याद है हम मेरी जड़ी प्राइमरी या मिडिल स्कूल की क्लासमेट थी वे 10th में चल के हम खाली 3 गदरी रह गई थी
1: ठीक
0: जी, उस तो बाद कॉलेज में सिर्फ हम 2 पहुंची थी
1: जी
0: जी
1: आपदा जी जो तुमने सूरत हाल दसी बच्चे की तालीम की यानी थारा वक्त के बीच
0: जी
1: या खाली थारे चिट्ठी बांटने को यो हाल है कि ना पूरा बांटी को पूरा कोई उस नहीं रहा है।
0: नहीं नहीं बाड़ी पूरा पूरा कोई हाल है हमारी जड़ी बरादरी है गुजर बरादरी उसमें बहुत का अच्छा भी हमारा जड़ा कुछ इलाका है जिस तरह बांडीपुरा को कुडारा एरियो है
1: ठीक
0: सिलंदर है और उसमें अच्छा भी गदरिया की तालीम चढ़ी है वह बिल्कुल ना
1: बराबरी
0: होने के बराबर है जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: तो बाकी इलाका में यह तब्दीली आ गई है।
0: जी जी अब बाकी इलाका में काफ़ी सारी तब्दीली आ गई है, काफ़ी सारी हमारी बच्चे जड़ी यूनिवर्सिटी में पीजी करें या
1: ठीक
0: बाकी कोर्सेज करें प्रोफेशनल कोर्सेज करें हमारी बरादरी की और काफ़ी तब्दीली आ गई है
1: जी तो आप दादी इस टाइम वो थारा इतने कार बैठो भी है
0: जी
1: थारो सोना मकान है और इसके नाल ये कछो कमरों भी है
0: जी
1: ते कमरा के बीच एक सोनी जी शो अलमारी है
0: जी
1: खासी बड़ी अलमारी है। ते इसमें जिस टाइम मेरी नज़र पड़ी ते कम से कम कोई 35-40 के करीब इसमें मेडल है गिफ्ट है प्राइज है जरा तुमने इनाम मिल लिया है और नाल नाल खासा सारा सर्टिफिकेट भी है।
0: जी
1: ते यू खैर ये किस तरह का था इसका वाला मतलब दसो।
0: जी मैं स्कूलिंग के नाल नाल असल में जब हूँ मिडिल स्कूल में थी 6th 7th थी
1: ठीक
0: टाइम हमारो सिर्फ गदरिया को स्कूल हुआ था वो तो उसमें हमना गेम्स क्लास हुई थी तो फिर हमना जो हमारो PET सर थो वो हमना मतलब इंटर स्कूल इवेंट में ले जाए थो
1: ठीक
0: तो वो तो ही मेरे अंदर गेम्स को भी मतलब शौक पैदा हुआ
1: ठीक
0: जी, तो मैं पढ़ाई के नाल नाल गेम्स में भी हूँ पार्टिसिपेट करती रही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, लेकिन ज़्यादातर मेरो गेम्स में पार्टिसिपेशन रहती उतनी
1: ठीक
0: बाकी एक्टिविटियाँ में नहीं उतने ज़्यादा करूँ थी लेकिन गेम्स में मुझ ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँ थी
1: जी
0: जी। तो फिर आगे चल के जिसले हायर सेकेंडरी में पहुँचा 12th में तो फिर शुरू में मैं स्टार्ट किया था खो खो हैंडबॉल वॉलीबॉल थी,
1: ठीक
0: फिर आगे चल के मैं 12th में जिसले पढ़ूँ थी उस टाइम हमारा स्कूल में जो मेरे फिर बाद में चल के कोच रहे हो
1: जी
0: उन्होंने एक मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम एक किया उसमें
1: ठीक
0: भी आया उन्होंने हमने मार्शल आर्ट की अवेयरनेस दी थी
1: ठीक
0: जी, तो फिर मैं भी चल के सोचो उन्होंने हमने जिस टाइम मार्शल आर्ट के बारे में दस्यो तो वीकेंड लगा कि यह एक गेम के नाल नाल एक लड़की वास्ते जो है सेल्फ डिफेंस भी है,
1: ठीक
0: मेरा फिर शौक थोड़ा मतलब और ज़्यादा बढ़ गया उसमें
1: जी
0: जी। मैं फिर टीम गेम के नाल नाल टीम गेम भी वो खेलू थी लेकिन उसके नाल नाल मैं फिर ज़्यादातर अपना टाइम देनो मार्शल आर्ट ना स्टार्ट कियो
1: ठीक
0: जी, तो फिर चल के मैं 12th के बाद कॉलेज का टाइम अभी मैं अपना स्टेट ना रिप्रेजेंट कियो नेशनल लेवल पर, तो
1: जी
0: फिर BA तो बाद मैं जो है स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था, फिर
1: ठीक
0: मैं अपना इसना प्रोफेशनल इसना लिंक करना सोचो
1: ठीक
0: तो BA के बाद मैं फिर कियो BPED की हुई फिजिकल एजुकेशन में
1: अच्छा
0: जी, तो उसके नाल मैं अपनी गेम भी कंटिन्यू रखी तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टेट ना और अपना मुल्क ना भी بین الاقوامی سطح پر ریپرزینٹ کی ہوئے.
1: ماشاء اللہ بہت بہت مبارک. تو آپ تھی تم میرا دسو کہ تم نے کیونکہ سٹیٹ ریپرزینٹ کیو
0: جی.
1: یعنی

0: जी
1: क्या
0: जी
1: कित के जान को मौको मिलियो।
0: जी मना अल्हम्दुलिल्लाह मना लगे कि मैं पूरा हिंदुस्तान में मतलब विजिट किया है। तो
1: ठीक
0: स्टार्टिंग में मैं हमारा जो नेशनल था गोवा मोयो, तो बेंगलोर कर्नाटका यानी कि साउथ इंडिया में भी, यूपी बिहार महाराष्ट्र में तो मैं बीपीएड यू तुम किया है।
1: ठीक
0: तो उसके उस दौरान भी हमने मतलब हर एक जगह में, दिल्ली
1: जी
0: चंडीगढ़ जी मैक्सिमम स्टेट में रिप्रेजेंट किया है
1: जी
0: नेशनल लेवल पर अपना स्टेट।
1: ते इस वास्ते पैसा की भी जरूरत पड़े, यो माली जरूरी या बजट है, इसको कैसा हुआ तो
0: जी शुरू में तो ट्रेनिंग वगैरह पर इंसान ना होवे पैसा की जरूरत होवे,
1: ठीक
0: पैसा की बहुत ज्यादा मतलब एक मुश्किलात भी रही है, क्योंकि हम ना स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़े उन्होंने खाली हम इवेंट के दौरान पैसा गवर्नमेंट जी है वह मुहैया करे।
1: ठीक
0: आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी सारा सेंटर ऐसा खुल गया है, एक्सीलेंसी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोले हैं बच्चा की ट्रेनिंग वास्ते फ्री ट्रेनिंग। लेकिन हमारा
1: ठीक
0: टाइम ऐसा कुछ नहीं था,
1: जी
0: और अपना खर्चा पर फिर मारो मेरे जो कोच थे उन्होंने को भी बहुत बेहद शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की है
1: ठीक
0: जी। काफ़ी सारे मतलब जगहों पर जड़ी फ़ी वगैरह थी भी उन्होंने मेरा तो फ़ी नहीं ली,
1: जी
0: क्योंकि मेरा वालिद साहब को इंतकाल हो गया तो
1: ठीक
0: माली हालात उतना नहीं था, तो उस करके उन्होंने मेरी इस चीज़ ने लेकर काफ़ी हेल्प की।
1: ठीक
0: लेकिन आम हर किसी बच्चा ना मतलब वे भी या और कोई हुआ को वे मतलब नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग ऊपर जो खर्चा
1: ठीक
0: हुआ एक एथलीट की वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं हुआ थी, हम अपना ही मतलब समझो कि अपना बलबोता पर अपनी लगन अपनी
1: जी।
0: शौक की वजह से इस लेवल तक पहुंची।
1: तो जिस वक्त तब मुल्क में चले थी,
0: जी
1: तो जिस वक्त हम जीत के आई थी, एक तो
0: जी जी
1: इनाम मिले था,
0: जी जी
1: तो इसके बीच पैसों मिला तो
0: जी नहीं, पैसों नहीं
1: अच्छा
0: मिला। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज मतलब स्पोर्ट्स ने बढ़ावा देने
1: ठीक
0: वास्ते काफ़ी सारी स्कीम रखी है, और आज जो अगर बच्चों रिप्रेजेंट करे ना स्टेट ना नेशनल लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाला ना बाजाबता पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की
1: जी
0: स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसके अंडर बच्चा ना स्कॉलरशिप मिला है। लेकिन बाकी स्टेट उस टाइम भी नहीं थी, लेकिन
1: ठीक
0: हमारे स्टेट में स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब बैकवर्ड एक हिसाब तो हमारा
1: ठीक
0: स्टेट जी,
1: जी
0: तो अवेयरनेस उतनी नहीं है स्पोर्ट्स की ना उतना कल्चर थो कि मतलब हमना मिलती है, लेकिन इतनो ही थो कि हमना किरायो वगैरह रेंट सेंट वो सारा फ्री थो
1: ठीक
0: जी
1: तो
0: इवेंट में
1: आप जी तब फरमाए थे कि तम ना मुल्क की जो तमने वे प्रेजेंटेशन तमने की है,
0: जी
1: तो इसको मतलब है तम मुल्क से बाहर गई है,
0: जी जी बिल्कुल
1: किस किस मुल्क में गई है तब।
0: जी। मैं 2017 में इंडिया ने रिप्रेजेंट किया हुआ है मलेशिया में
1: ठीक
0: जी इंटरनेशनल लेवल पर वुशु मार्शल आर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सेकंड पोजीशन रही है जिस हमारी उस कैटेगरी में मैं अपने वेट 52 के अंडर खेड़ी और मैं सेकंड पोजीशन ली है सिल्वर मेडल में ली है
1: माशाल्लाह बहुत
0: जी
1: खूब। तो मेरा लगा कि मारी बरादरी की शायद जम्मू कश्मीर की तम पहली औरतें बच्चियां जड़ी बाहर जाके इस तरीके नाल जीत के आई
0: जी
1: हैं
0: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और उस तो बाद मैंने लगे मैंने देख के आज हमारी बिरादरी की
1: जी।
0: काफ़ी और बच्ची हैं जड़ी मुल्क ने रिप्रेजेंट करने लगी
1: माशाल्लाह बहुत बड़ी
0: जी
1: गल है। तो देखो ना जो जो खेल कूद सिलसिले है, तब बॉक्सिंग है या मार्शल आर्ट है,
0: जी
1: इसके पीछे कारगरों को सपोर्ट लाजमी है,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई लोग है जितना अपनी बच्ची ने पढ़ाता नहीं थे,
0: जी
1: और तो
0: जी
1: खेल कूद में हिस्सों लेना तो बड़ी गल है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: कैसे हो रही हो तुमने जो देहरा की तरफ एक सपोर्ट।
0: जी। शुरू में तो आई मुश्किलात क्योंकि
1: ठीक
0: माहौल सो नहीं था
1: जी
0: इलाका में, मतलब बच्चियां ना पढ़ने वैसे स्कूल कॉलेज नहीं चलाने था, तो फिर एक मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ना ट्रैक सूट ला के जाना बहुत मुश्किल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है, मेरा जो बड़ा भाई है उनको काफ़ी सपोर्ट रही है,
1: जी
0: दो भाइयों को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है, माँ को सपोर्ट रही है
1: ठीक
0: जी इस चीज़ में कि तो अगर अपनी मतलब कोई पहचान बढ़ाने वास्ते करे तो हम इसमें कोई हर्ज नहीं है, और मतलब कोई अगर अपनी डे में कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें तो
1: जी
0: उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है
1: जिस वक्त है तब एक बावकार तरीका के नाल मुल्क में गई, मुल्क से बाहर गई, और
0: जी जी
1: उसी इज्जत के नाल एक वकार के नाल
0: जी
1: तब घर वापस आई, जीत के आई,
0: जी
1: कामयाबी लेके आई।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उस वक्त फिर घर आला के कहता या बाकी बरादरी का लोग जहाँ पहला नुकता
0: जी
1: चीनी
0: ये
1: करता
0: चीज़
1: है।
0: हम बिल्कुल तुमने याद दहानी की मेंशन करना चाहूंगी कि एक और चीज़ उनका अनुकूल की थी, मैं एक दो बार मेरा नेशनल इस चीज़ तो मिस भी हो गया था कि मेरा बीच में एग्जाम आ गया था
1: ठीक
0: जी, तो एग्जाम और उसना बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल
1: मुश्किल
0: हो गया था। तो
1: ठीक
0: इवन फैमिली मेरी तैयार हो भी गई थी लेकिन मेरे कुछ एक मतलब समझो तुम टीचर एक थो एक उसने ते नहीं मन मतलब यो मशवरा देतो कि ना वह नेशनल खेल ना चले या एग्जाम दिए
1: ठीक
0: तो उस टाइम

0: एक वो एक मतलब रुकावट से एक समझ मेरा कैरियर में स्पोर्ट्स कैरियर में वह भी आई, लेकिन उस तो बाद और भी बाकी जिस वो चलूँ थी बाहर आसपास का के था कि ना बच्ची है ऐसा करूँ बाहर तुम क्यों चला
1: ठीक
0: मैं माहौल नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन वही लोग फिर जिसला वो मेडल लेके आई तभी फिर मुबारकबाद नहीं आया
1: जी
0: है।
1: जी
0: जी
1: देख, कुदरती इंसान जिस वक्त कार से निकले ना, मुश्किलात जरूर आए,
0: जी जी
1: और देखो
0: बिल्कुल
1: उनको मुकाबला करके जिस वक्त कामयाबी हासिल करा तो फिर
0: जी
1: विसारा या पड़ा हो जाए।
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: खैर, जो एक जिंदगी को एक अहम हिस्सा एक
0: बिल्कुल
1: पड़ा है,
0: बिल्कुल
1: तो इसमें इंसान आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी
1: और इस मेरा दो चीज सवाल आए लगा,
0: जी जी
1: एक तो स्पोर्ट
0: जी
1: खेलकूद, और
0: जी
1: नाल तुमने सेल्फ डिफेंस की गल की।
0: जी जी बिल्कुल
1: पहला सवाल मेरा यू रहेगा कि गेम्स जुड़ी है
0: जी
1: खेलकूद का, इसका क्या फायदा है?
0: गेम को फायदा जी हम तुमने दसूँ कि अगर आज जो कैरियर अगर किसी ने बनाना हो वो स्पोर्ट्स एक बड़ी वास्ट है, मतलब है इसमें मुझ सारा का फील्ड है कि
1: ठीक
0: जिसमें इंसान कैरियर बढ़ा सके। फॉर
1: जी
0: एग्जांपल एक अगर एथलीट है वो मतलब खेल के जरिए ही अपना कैरियर बढ़ावा है को उसमें
1: ठीक
0: स्टेट ना नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने आज बाजाबता एक स्कॉलरशिप भी दिया, और
1: जी
0: अगर कोई ओलंपिक या एशियन वगैरह इवेंट में जो वर्ल्ड का बड़ा
1: जी
0: बड़ा इवेंट है उन अगर पार्टिसिपेट कराया उसने बाजाबता SRO एक बने या
1: ठीक
0: नेशनल लेवल पर भी एक SRO जो कुछ गेम ऐसी है जिड़ी SRO में SRO के अंडर जिड़ी गेम आवे
1: ठीक
0: उन्होंने अगर कोई उन्होंने कोई अगर मेडल कड़े को उसने बाजाबता SRO के तहत जॉब मिले।
1: ठीक
0: दूसरी चीज ये है कि मेन चीज असली जी मेन वजह है स्पोर्ट्स की गेम्स की मेरे नजरिया में और मैं उस चीज पर अपनी मतलब जिंदगी में भी अमलाई जड़ी है कि फिजिकल फिटनेस रहे बंदा के
1: ठीक
0: अंदर काफी सारी बीमारियां थे हम दूर रहा,
1: एक डिसिप्लिन भी आ
0: एक
1: जाए।
0: डिसिप्लिन रहे, एक टीम मैनेजमेंट रहे, एक
1: ठीक
0: लीडरशिप क्वालिटीज इंसान के अंदर
1: ठीक
0: बने।
1: जी
0: जी तो दूसरी चीज यह है कि स्पोर्ट्स के माँ भी काफी सारा और उसका पार्ट है जहाँ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है,
1: ठीक
0: स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है,
1: जी
0: स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं वगैरह
1: ठीक
0: मैक्सिमम मतलब फील्ड है जिनके अंदर इंसान अपना कैरियर चुन सके।
1: जी ते
0: जी
1: कई दफा जैसे हमारा बच्चा खैर बाहर आंगनी में खेलना शुरू करे या बाहर ग्रामा,
0: जी
1: तो माँ बाप बिल्कुल उन्ना ठाक लेना, तो पाड़ी पाड़ते यो खेल कूद में सोना ले के कहेंगी तुम?
0: ओ यो मैसेज देना चाहूंगा पूरा अपना बिरादरी का लोका ना और पूरा स्टेट या मुल्क का लोका ना कि जिड़ा भी मारा मतलब गुजरी बिरादरी नहीं पूरा ना कि
1: जी
0: बच्चा ना आजकल देखो तो मतलब बच्चा बच्चा जिड़ा मारा है उन्हें ना खेल तो नहीं रोकना चाहिए
1: ठीक
0: जी, इस वजह से कि वे अगर मिट्टी में भी खेड़े आज साइंस टेक्नोलॉजी भी यह चीज़ क्या कि बच्चा ना कम से कम तो मतलब बाहर आपस में सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए, हम बच्चा ना ज़्यादातर मतलब कहाँ के बाहर ना जाइए चाट जाएगा ये वो उस चीज़ पर मतलब रोकथाम नहीं लानी चाहिए, बच्चा ना छोड़ना चाहिए ताकि उनको इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होए
1: ठीक
0: वे फिजिकली भी फिट होए। दूसरी चीज़ यह है कि बच्चा ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर दे के बिल्कुल मारे तो सोशली दूर होने
1: ठीक
0: लग गए, तो मेरी सारा मतलब वालिदैन ने यही मैसेज है कि बच्चा ना खेल कूदन ते नहीं रोकना चाहिए,
1: ठीक
0: उन्होंने टाइम देना चाहिए पढ़ाई के नाल नाल बाहर जो खेल वास्ते जाए उन्होंने वे मेन चीज़ एक और मेंशन करना भूलगी कि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान की जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन
1: ठीक
0: और फजूल टाइम तो इंसान ना दूर रखे और
1: ठीक
0: खास कर जड़ी आज का दौर में एक बुरी लत या नशा की लत
1: जी
0: मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं अपना मतलब इस लाइफ के अंदर अपना स्पोर्ट्स में जड़ा भी मतलब मारे नाल जड़ा कलीग्स रहे हैं मेरा स्टार्टिंग से लेकर आज तक जड़ा भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें के अंदर मुझ सारी चीज चेंज देखी है मैं ये कि उन्हें के अंदर मतलब जड़ी बाकी आम लोगों के अंदर बुरी आदतें आम लोगों के अंदर वे एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर नहीं होती हैं, वो इना बिदाता थे उना इना फजूल चीज़ों से दूर रहे वो अपना टाइम जो अगर आजकल का बच्चा अक्सर मतलब गलियां कोचा में बैठा रहे फिर एक दूजा नाल लग के बुरी सोहबत में आके गलत काम करने में मुलव्वस हुए नशा में मुलव्वस हुए वो टाइम अगर एक बच्चों एक नौजवान अपनी गेम ना दिया गो अपने खेल कूद ना दिया गो वो एक तो फिजिकली फिट रहेगा
1: ठीक
0: दूजो बुरी चीज़ों से दूर रहेगा।
1: जी क्या इस खेल कूद का इंसान की पढ़ाई पर कोई असर पे?
0: बिल्कुल भी नहीं मेरे
1: अच्छा
0: मिन्ना में यो मतलब मैं अपनी लाइफ से यो एक्सपीरियंस की है कि अगर हम जड़ो मतलब टाइम अगर पढ़ाई में दे के इंसान काफ़ी
1: जी
0: ज़्यादा टाइम अगर बैठो भी रहे कोई एक जगह तो
1: ठीक
0: वो इंसान कुदरती मतलब बोर हो जाए
1: स्मार्ट बन जाए
0: यो हो जाए ना नहीं अगर
1: जी
0: काफ़ी टाइम एक जगह बैठो रहेगा तो
1: जी
0: थोड़ा मतलब लेजीनेस फील करे,
1: ठीक
0: अगर वो बीच में टाइम जो ब्रेक को टाइम है ले वो अपना अपना रिफ्रेश करे गेम के नाल
1: स्मार्ट बन जाए
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी कोई असर मतलब मेरी लाइफ में मेरी पढ़ाई पर गेम्स के जरिए बिल्कुल भी नहीं आई मैं बल्कि इसमें सुधारी हुई है।
1: जी तम थारा को मतलब है कि एक तो स्पोर्ट इंसान ना आगे जाके एक करियर भी दिया है,
0: जी बिल्कुल
1: रोजगार का वसार भी बन
0: बिल्कुल जी
1: जाए,
0: बिल्कुल
1: और ना इंसान बुराई से भी बचे।
0: जी।

0: बिल्कुल
1: ठीक। खैर मैं एक सवाल पूछूं तो, लेकिन दाल एक सवाल और रह गया तो
0: जी
1: तब निकाल गई थी सेल्फ डिफेंस की,
0: जी जी
1: और खास तौर पर आजकल जो जो
0: जी जी
1: माशरों बिगड़ गई हुआ है,
0: जी बिल्कुल
1: हमारी जी बची है वी
0: जी
1: भी हूँ जिस तरीके ना पहला बार बची गैर महफूज अपना अपना समझे थी,
0: जी
1: और
0: जी
1: भी हालात इतमारी वादी के बीच भी आ गई है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: सेल्फ डिफेंस खास तौर पर बच्चियों वास्ते क्यों मुफीद है, तो यू है सेल्फ डिफेंस पहले की चीज़ है।
0: सेल्फ डिफेंस को मतलब है हमने अपना तहफ्फुज़ खुद करना है।
1: ठीक
0: सेल्फ डिफेंस ये है कि मार्शल आर्ट के जरिए जो मैं सीखी हो कि हम मतलब एक हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाए,
1: ठीक
0: हम वे टेक्निक सीख लें कि जितना हम अल्लाह ने करे अगर हमारे ऊपर कोई
1: हम लोग करें
0: हम लोग करें, कोई
1: जी।
0: जानवर ही है कोई इंसान ही कोई मतलब दरिंदो ही कोई इंसान पर अगर हम लोग करें, हम ना उस तो किस रंग बचना है, हम ना अपना आप किस रंग बचाना है
1: जी
0: एक लड़की ना। इसमें हम मार्शल आर्ट में जो सेल्फ डिफेंस में हम टेक्निक सीखा,
1: जी
0: किकिंग है पंचिंग है बाकी मुझ सारी टेक्निक सीखा कि हम ना किस रंग अपना अपना बिचाणो है और किस रंग उसना अटैक करना है दूजा
1: ठीक
0: पर। जी
1: हाँ
0: एक तो इंसान के अंदर खुद मुख्तारी खुद हिम्मत आ जाए, दूजा वो
1: ठीक
0: टेक्निक के जरिए अपना अपना बचा के
1: जी
0: किसी भी मतलब अनहोनी थे अपना अपना बचा सकें।
1: जी
0: जी
1: लेकिन उन बारी बदकिस्मती समझो कि हमारा ग्राई इलाका में इस किस्म की चीज़ें भी सिखाई नहीं जाती,
0: जी
1: क्या
0: जी
1: स्कूलों के बीच या कितने कॉलेजों में इस किस्म को कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि बच्चे ने ये इस किस्म की ट्रेनिंग भी सिखाई जाए।
0: बिल्कुल जी होना चाहिए। हमने थारे गल इस चीज़ अभी थोड़ा मेरा इशारों मिल गया कि हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोर में 1-2 साल पहला एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, तुम बखूबी वाकिफ होंगे
1: जी
0: तो उसके अंडर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमना हर एक डिपार्टमेंट थे एक एक मेंबर चुने थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसके एक मेंबर रही थी। तो हमने फिर कुछ जाए में कराया था पहला भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समग्र शायद मिलने लगे कि
1: जी
0: उसके फंड इसके मतलब इम्प्लीमेंट की थी और
1: ठीक
0: स्कूल में यो निज़ाम कियो तो एक एक साल वास्ते
1: जी
0: जी। तो उस तो बाद वो फिर तो दोबारा बंद हो गया है। मैं चाहूँ कि मेरी या अगर मैसेज आला काम तक पहुँचे तो वो यही मैसेज देना चाहूँ कि वे दोबारा इसना सिलसिला ना जारी जारी करना चाहिए। एक या दो बार ना मतलब ये नहीं होता क्योंकि वे कुछ बच्चा ड्रॉप आउट हो जाए कुछ पास आउट होके चले जाए,
1: ठीक
0: बाकी जड़ी हमारी आने वाली जनरेशन है उन तक भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमारा UT JNK में या पूरा मुल्क में ऐसा प्रोग्राम्स होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स सेल्फ डिफेंस का, फॉर फ्लंग एरिया में भी और सिटी का बच्चा में भी यह चीज़ पहुँचनी चाहिए।
1: जी तो जिस वक्त तुमने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, थारो एक नाम भी मशहूर हो गया, तो इलाका की बच्ची भी और बाकी बच्ची भी थारा रब्तों करती रहेंगी
0: जी जी
1: कि यो
0: बिल्कुल
1: किस तरह अपना सीखना चाहिए, गेम्स में किस तरह आना चाहिए, तो उन्हें तुम किस तरह की सलाह देती रहें।
0: जी बिल्कुल उस टाइम से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना BPED करने तो बाद PG भी कियो, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में ही हूँ कम भी करूँ और मेरी
1: अच्छा
0: पोस्टिंग
1: तुम
0: आज
1: सरकारी जॉब है थारी,
0: जी जी
1: ठीक
0: तो स्कूल का बच्चा ना भी और बाकी आउट ऑफ स्कूल मतलब बाकी भी इलाका के बच्चे या डिस्ट्रिक्ट की जित कितने पहचान है बच्चा अप्रोच करें बच्चा
1: जी
0: मतलब सलाह लें, खासकर फीमेल फोक जड़ी है विलें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हर जगह इंसान उस रंग पहुँच नहीं सकता क्योंकि
1: ठीक
0: यह प्रैक्टिकल चीज़ है
1: जी
0: या एक बार दसन नाल या मतलब
1: जी
0: वर्बली के नाल इंसान नहीं सीख सकता है। इस वास्ते प्रॉपर टाइम और प्रॉपर मतलब इसका टेक्निक से जरा सिखाना कम से कम इंसान ना वो तो कहूँ स्कूलों में भी कम से कम 5 दिन भी काफ़ी नहीं है, लेकिन
1: जी
0: कुछ ऐसी टेक्निक है खाली सेल्फ डिफेंस की कि कम से
1: ठीक
0: कम 5-5 दिन को एक प्रोग्राम होना चाहिए स्कूलों में जिसके जरिए बच्चा ऐसा सीख सकें। स्कूल में नहीं हर एक इंस्टीट्यूशन में
1: जी
0: बाकी या आम ग्राम में भी ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जरा बच्चा अगर स्कूल मिसाल नहीं भी जाता है खासकर आजकल का माहौल में मा, जरा हम आए रोज सुना के बच्चियों नाल
1: जाती में लगी
0: ज्यादती होने
1: जी
0: लगी उस ना लेके कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि बच्चियां ना इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चियां।
1: जी
0: जी
1: तो आपदा जी जरा ये इस तरफ थारी शो अलमारी के बीच इतना इनाम तो इतना गिफ्ट या प्राइज है कि जरा उन अलमारी में मिटता नहीं, कोई तमने साइड में भी रखी हुई है, तो कितो कितो तमना ये हासिल किया है, कह महसूस हुआ
0: जी
1: तमना थारा
0: मेरा
1: कार आना ना जिस वक्त ये देखें कि इतनो इतना इनाम हमारी बच्ची ने हासिल किया।
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत प्राउड फील करा, ये मेरा अवार्ड जो है ये स्टेट लेवल का है नेशनल लेवल का है। स्कूल स्टार्टिंग में जरा मैं मतलब इंटर स्कूल वगैरह खेले ज़्यादातर जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल को एक सर्टिफिकेट है, बाकी
1: जी
0: डिपार्टमेंट ने भी डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी
1: ठीक
0: इस चीज़ ना उन्होंने एक 2021 में करियो तो डिफरेंट फील्डा थे चुनिया था जरा मतलब जरा ने
1: जिन्हें
0: अच्छो
1: जिंदगी का
0: काम किया
1: शोभा
0: तो
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी तो
1: ठीक
0: उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में UT ऑफ JNK में पहली फीमेल जड़ी ने

0: अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें पेश होंगी, जिसके फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन पेश होगा।
2: सामीन आदाब, 5:50 हो गए हैं। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी खबरां नाल हूं रियाज अहमद बिजाड़ हाजिर। पहला इस वक्त तक की खास खबरां पर एक नज़र। पब्लिक एग्जामिनेशन तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में मंजूर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का तमाम खित्ता की शमूलियाती और बराबर तरक्की यकीनी बनाने को दोहरायो अज़्म। जम्मू कश्मीर में होने वाला बैन अवी फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर में आलमी फिल्म साजी की बदती दिलचस्पी। होन तक 875 फिल्म दाखिल। ते बालतल के रास सालाना श्री अमरनाथ की यात्रा जारी। छड़ी मुबारक दशनमी अखाड़ा श्रीनगर ते पहुंच गई पहलगाम। ओन खबर की तफसील। लोकसभा ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीका की रोक के मुतलिक तरमीमी बिल 2026 ना मंजूरी देती है। इस बिल को मकसद पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीका की रोक के मुतलिक तरमीमी एक्ट 2026 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तजाम शामिल हैं, जिनमें मुजरमाना 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपया तक को जुर्मानों और सजा याफ्ता लोगों की जायदाद जब्त करने जैसा सख्त कानून है। इस कानून के तहत सारी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाका की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम करेगी, ताजे मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। बिल पर हुई बहस को जवाब देता मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा जे बिल में तरमीम आनी गई है ताजे कानून ना मजीद सख्त बनाया जाए और तेज दर इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा जे नई बिल हुकूमत की तरफों तलबा और नौजवानों का मुफादात का तहफ्फुज वस्ते है। इं राज्यसभा की कार्रवाई नेट मामला पर एहतजाज करने वाला तलबा पर पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला न लेकर हिजब इख्तलाफ का शोर के चलते 2 बजे तोड़ी मुलतवी करनी पड़ी। पहला इल्तवा के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। तय राज्यसभा में चेयरमैन सीपी राधा कृष्णन ने वक्फा सवालत शुरू करने की कोशिश की, मगर हिजब इख्तलाफ का अरकान ने नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद चेयरमैन ने कार्रवाई 2:30 तोड़ी मुलतवी कर दी। बाद में ऐवान बाला ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026 मंजूरी दी। मुजवजा कानून के तहत वंदे मातरम नवी कौमी तराना जनगण मन के बराबर वकार हासिल होगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का हर खित्ता की शमूलियाती और बराबर तरक्की यकीनी बनाने का हुकूमत का अज़्म न दोहराया है, ताजे तरक्याती अमल ना बेहतर करने के नाल नाल लोगों ना आला मियार की सहूलियात दस्तियाब हो सकें। इन गलों को इजहार उन्होंने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कई अरकान कानून साजिया के नाल मुलाकात के दौरान कियो। इन अरकान ने अपना अपना हल्का का मसाइल और तरक्याती जरूरियात ना उजागर कियो। वजीर आला ने इन अरकान ने यकीन दवायो जे उजागर किया गया मामला न तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 7 सितंबर से 10 सितंबर तक होने वाला पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ

0: जम्मू कश्मीर 2026 में आलमी सतह का फिल्म साज काफी दिलचस्पी ले रहा है और हूं तक पंजाब मुल्क से ताल्लुक रखने वाला फिल्म साजा ने 875 फिल्म दाखिल की हैं। इस फेस्टिवल वास्ते फिल्म दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। इस फेस्टिवल को इनकात महकमा इतलात व राबते आमा जम्मू कश्मीर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट साझे तौर कर रहे हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रस्ते जारी है और कल शाम तोड़ी मजमुई तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया था। आज 5 बजे तोड़ी 6114 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। पहलगाम रस्ता पर मरम्मत को काम जारी है, जिसके चलते इस रूट से यात्रा आरजी तौर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू का बुनियादी कैंप से 2051 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां काफलो वादी पहुंचो। श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला में आज सुबह छड़ी मुबारक श्रीनगर का दशनमी अखाड़ा ते महंत दीपेंद्रगिरी की क्यादत में पहलगाम की तरफ रवाना की गई। मारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद ने खबर दी थी जे पहलगाम पहुंचने पर छड़ी मुबारक की भूमि पूजन हुई, जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया नाल गल करता महंत दीपेंद्रगिरी ने कहो,
1: स्वामी अमरनाथ जी की अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर पहलगाम में प्रस्थान कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से, और वहां जाकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो पारंपरिक अनुष्ठान है, इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण, वो अनुष्ठान वहाँ हम पहलगाम में करेंगे। पूजन करने के पश्चात वापसी पे मारतंड रुकेंगे, वहाँ छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और सायंकाल हम वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में लौट आए।
0: पूरा मुल्क में आज गुरु पूर्णिमा को त्यौहार मनाया जा रहा है, जो दिन रूहानी गुरुओं की याद में मनाया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस दिन की मुनासिबत नाल मुल्क का लोगों ने मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इंसानियत का अकदार ना बादो देवण में गुरुआ का रोल ना अहम करार देता लोगों ने नेक ख्वाहिशात पेश की। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त न नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम की शुरुआत करेगा। अमूर नौजवान और खेड का वजीर मनसुख मंडाविया ने कहो जे इफ्तिताई तकरीब में 1 करोड़ से ज्यादा शुरका शामिल होगा। 100 हफ्ता पर मुश्तमिल इस कौमी सतह की जन भागीदारी मुहिम को मकसद नौजवाना ना मुनशियात से दूर रखनो है। मुहिम के तहत हर इतार ना नशा मुक्त अहद दुआए जाएगो और नौजवाना वास्ते बेदारी प्रोग्राम और कम्युनिटी रिलीज का इनकाद किया जाएगो। जम्मू कश्मीर में 8181 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल नसब किया गया है, जिन नाल 85 मेगावाट की तवानाई पैदा हो रही है। इस रियाज जम्मू कश्मीर मुल्क की 31 रियासतों और यूटीज में इस प्रोग्राम की अमलावरी में 3 नंबर पर है। इस गल की जानकारी श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर सतीश शर्मा ने दी गई। वजीर मौसूफ ने इस हसूलियाबी पर इत्मीनान को इजहार किया। उन्होंने तवानाई की बचत यकीनी बनाने वास्ते मजकूरा स्कीम ना मजीद अगे ले जाने की हिदायत दी। हुकूमत ने यारून शादी मर्ग पुलवामा में खो साहब चश्मा ने तरक्की देने वास्ते 6.3 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट ना मंजूरी दी है। वजीर आला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देता कहो जे प्रोजेक्ट नाल इस अहम जगह बुनियादी ढांचा ना मजबूती मिलन के नाल नाल इसकी शान रफ्ता बहाल करने में भी मदद मिलेगी। वाजिर है जे हुकूमत ने हाल ही में शोपियां की तारीखी जामा मस्जिद और राम बन मां सर्वधर चुमिंडा माता मंदिर की बहाली वास्ते 16.36 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट ना भी मंजूरी दी थी। सेहत व तिब्बी तैलीम की वजीर सकीन एतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सेहत व तिब्बी तैलीम समाजी बहबूद और तैलीम महकमा की तरफों अमलाई जा रही फ्लैगशिप स्कीम की पेशरफ्त को जायजो लियो। उन्होंने मुतलका अफसरों ने हिदायत दी जे वे कमा का एला मियार न बरकरार रखता मंजूर शुदा प्रोजेक्ट की वक्त सिर तकमील न यकीनी बनाए ताजे बुनियादी ढांचो मजबूत करण के नाल नाल लोगों ने बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो सकें। इसी दौरान कानून साज असेंबली की स्टेटमेंट्स कमेटी की एक मीटिंग नज़ीर अहमद खान की सदारत में मुनक्कद हुई, जिस दौरान सेहत व तिब्बी तैलीम महकमा का

कामकाज को जायज़ लियो गयो। बीजेपी जम्मू कश्मीर का तर्जुमान अल्ताफ ठाकर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लायो जे वे हकीर मकासद वस्ते मनफी सियासत नाल काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा जे ये दोए लीडर बार बार पैलेट मुतासरीन की गल कर रहे हैं, जबकि बकौल अल्ताफ ठाकर वे दोए अपना दौर इकतदार में पेश आया वाकात पर खामोश हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तसादी जराइम के मुतलक विंग ने एक लम्मा अरसा ते जेर समात परती ते मुतलक धोखादई का एक मामला पर मुलजम ना सजा दौड़ में कामयाबी हासिल की है। 13वीं फाइनेंस कमीशन की एक खसूसी अदालत ने बडगाम का रहने वाला नज़ीर अहमद मलिक ना का एक शख्स ना कसूरवार करार देता सजा सुनाई है। मजकूरा शख्स पर जाली तालीमी असनाद को इस्तेमाल करके इंडियन रिजर्व पुलिस में धोखादही नाल कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने को इल्जाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की शनाखत इनफरादियत और तहजीब तमद्दन के नाल नाल जबान न तहफुज देने की जरूरत पर जोर देते है। आज टेगोर हाल श्रीनगर में रूरल डेवलपमेंट की तरफों मुनक्कदा योम वालदेन तकरीब ना खिताब करता उन्होंने कहा जे दूर दौरे जदीद में बच्चों की इखलाकी तरबियत पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है ताजे उन्हें मुख्तलिफ बिदात से दूर रखे जा सके। इसके नाली गोजरी खबरों को जो बुलेटिन मुक्यो खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। दे इजाजत, रब रखो।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर शबजत 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बयान खतरा।

0: ध्यान चलाउने खतरो छ।
1: अगर
0: एस फलान तो फुलान असो सोन एग्रीकल्चर लैंड आसा फलान तो फुलान सरकार से पोतुस यथी मिशन ब्रह अनान वह खेत बचाव अभियान उस शुरू आव कर अत म गर सरकार यह कि उस सोन एग्रीकल्चर लैंड अत वात हो यूतः यह श्रिंक ग शरह करो कम ताकि सैन प्रोडक्शन सैन आमदनी अत पे गह ज्यादा जख वा
1: मगर योर वन हा मॉडर्न बन कोशिश मजा बड़ बड़ कॉम्प्लेक्स या बड़ बड़ बिल्डिंग बनाइथ यन वन यहां दुनिया दिन जी मॉडर्न मगर अतन यह वा कह सरमाय जाय झनान कर सरमायस पो अथो तबर वायन यह खेत बचाओ अभियान ये सा शुरू करो इस सोन नौजवान यमिस जन कल वनकस बहत अत जरात मज पु किरदार अदा बहत तिस कम ये सब नशनव नीमह
0: दपस इकबाल सब सरकारी इकदाम तुलन अत मान सरकार ये फोकस सैन नौजवान बेरोजगारी हूं शरह सह अम एग्रीकल्चर जरिए सह अम हॉर्टिकल्चर जरिए कम गुज नई नई स्टार्टअप क्रिएट कर अत मान प्रोडक्शन बढ़ान अत मान सो इकनॉमी सो जहत लबान तेल पोतुस मुमकिन सपदान सरकारी बड़ बड़ मिशन बनान अत पोतुस तेली शोब लगान ये सैन नौजवान पेश पेश रोजान तम तन रोल अदा कर अति क्या पोत सरकारी मिशन तय तकमील वात
1: खास कर ज्यादा पहमत आमुत यथ चीज़ कुन इशारा दिन जी खाद करा इस्तेमाल या दवा करा इस्तेमाल पन्न बागन या खाहन मज तमिक इस्तेमाल गोस कम गसुन तो इस गेस यजन ऑर्गेनिक खाद छे या वर्मी कंपोस्ट खाद या बायो फर्टिलाइजर इस पन्न गरन मज आराम सान हेको बनित या इस वुशान मुख्तलिफ जायन छे विंकस सैन नौजवान ती यजन बायो फर्टिलाइजर छे या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाउने किमो यूनिट छे खड़ा करमी अम सित क्या छु गसान अम सित छुन सैनिस जमीनस पे बुरा असर पेवान के नछु माहौलस पे बुर असर पे तो नशे सेहत पे बुर असर पे
0: इकबाल सब कत बात सिलसिल थो जारी गोड रजनो बोजन वाले दिल यमी खूबसूरत बत सब
1: बिल्कुल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सपुद 60 करोड़ लुक 5 लक्षन तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनिक तमाम 52 करोड़ इलाज सपुदमुत यम सरीब घरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़ हज बचत सपज अज करू आयुष्मान एप डाउन लोड तो बनयु आयुष्मान कार्ड जानकारी बाबत करू 1455555 फोन नंबर पे रब्त कम रेडियो
1: एक ऐसी आवाज जो
2: खबर सान प्रोग्राम अहम हिस्सा
3: तो खबरें ब्रोह कत कर खेत बचाओ अभियान सरकार तरफ शुरुआत करना सन कमर्शलाइजेशन तथ कम सजो तथ कम दमहो हना जो ताकि वादी मन सन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन या बाकी जन प्रोडक्शन अत ग जख वात
2: टनवाद मेव एक्सपोर्ट मगर अच्छा पे इम्पोर्ट कर नबर पे तो सरकार यह प्रोग्राम स्टार्ट कर चैनवन दिन कोशिश ज्यादा खुद ज्यादा जमीन अनतो काश्त मन युत मुनहसर रोजो मुख्तलिफ खन चीजन बाकन जायन
3: बिल्कुल इकबाल सो यम वक्त एग्रीकल्चर कह सन रवायती जमींदारी तम तो लुबन वनस नो जहाज वनस वान सान दान खान मन सान बागन नवे नवे मशीन नई नई तम तरीकार यम सनस जमींदार बमस काश्तकार बस फायदे फायद वा वह अत कथ मन कहन दो राय जोन जमींदार बोस पथ रोजान कह तम आई रवायती अंदाज आज सो खेती बाड़ी कर बल्कि यह नव नव टेक्नोलॉजी क्या यह वित पा पुन प्रोडक्शन बढ़ावित यह सरकार महकमन सतान रबतस मे प्रोडक्शन कथ पढ़ मो बाग कथ पल तो फूल सरकार तरफ अमिस मुख्तलिफ कस्म हिंद मदद मिलान चाहे फाइनानस लिहाज या चाहे मुख्तलिफ कस्म मशवर मिलान तम सब पुत फायदे वातान यह पुत सरकार अत जमीन पे अन पस बाग मज अन अति क्या अमिस यह प्रोडक्शन यह जहार तो बहार लबान
2: ना कशर मिसाल वनान कोकर तछान तो पूत हेचान यम सात गरु खानदार या गरस मज पोमुत लूखमुत नौजवान नबर नेरान अत खास मज पी सलाहियत हावान यम अम सत गरस मज लक बचान यद जहन मज तीन जया यह जमींदारी यह अस सू कार लोल भरन कोशिश करें तो अल्लाह ताला बूजतन

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शहरबीन टाइम शाम के 7 बजे
1: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: हालात तो वाकियात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर आज के खास मौसुआत है। जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज तक रहेगा मॉनसून का असर। रामबन खत्ते डोडा और रियासी में मरहलावार तेज बारिश की पेशगोई। डोडा खत्ते में गुज़श्ता दिनों की बारिश और सैलाबी रेलों के बाइस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। गैर मयारी और हिफ्जान सेहत के असूलों के खिलाफ तैयार की जा रही गजाई अजनास का कारोबार। रोज पर कस्बजात और गाँव देहात की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए अवाम मुतालबा। अमरनाथ यात्रा नामुवाफिक मौसम के बावजूद बालतल रास्ते से जारी। चरी मुबारक पहलगाम से पहुंची मार्टन टेंपल मटन और भी मौजूद है आज के शेरबीन में एक वक्त।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: शेरबीर अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ साथ तेज बारिश के कई दौर मरहलावार तरीके पर हो रही। गुज़श्ता शाम बांडीपोरा जिले में तेज बारिश हुई, जबकि आज जम्मू खित्ते के चंद एक अजला में तेज बारिश के मुख्तसर दौर दर्ज किए गए। इस दौरान डोडा और किश्तवाड़ अजला में खराब मौसम और बाज़ इलाकों में हुई तेज बारिश के बाइस आज तमाम स्कूल बंद रखे गए। मुश्ताक देव के मुताबिक दोनों अजला में लैंडस्लाइडिंग, पानी के तेज रेले बहने, पत्थर और मिट्टी के तूदे गिराने के खदशात बरकरार हैं। वादी कश्मीर में आज बाद दोपहर से आसमान अबर आलूद रहा, जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि अगले चंद रोज तक जम्मू खित्ते के रियासी, रामबन और डोडा के बाज़ इलाकों में तेज बारिश के कई दौर हो सकते हैं। महकमे के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक अगले चंद रोज तक मानसून जम्मू खित्ते में ज्यादा तेज असर दिखाएगा, जबकि वादी के चंद एक अजला में भी मानसून का असर दिखाई देने की उम्मीद है।
4: जी थैंक यू। अभी खासकर जम्मू रीजन के अंदर थोड़ा मानसून एक्टिव है और बारिशें जो है खासकर पिछले 24 घंटे 48 घंटों में हैवी बारिशें भी हुई, खासकर जम्मू रियासी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा और बाकी जो चैन एरिया है, और यहीं वैली के अंदर भी थोड़ा सा कल लेट आफ्टरनून इवनिंग में एक हैवी शावर हुआ खासकर बांडीपोरा और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और कुछ बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तेज बारिशें हुई। कमिंग डेज में भी सिमिलर एक्टिविटी के चांसेस हैं, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर ही रहेगा टिल 31st और हल्की बारिशें बीच बीच में ब्रीफ इंटेंस शावर्स के चांस हैं वैली के अंदर, और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा हैवी बारिशों के भी चांस हैं अर्ली मॉर्निंग और फर्स्ट सेकेंड के आसपास थोड़ा सा मौसम ठीक रहने के चांस हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के दरमियान फिर से हैवी

0: उनके चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और वैली के अंदर जो है थोड़ा ब्रीफ शावर, कुछ एक जगहों पर ब्रीफ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं।
1: तो आपका कहना है कि इम्पैक्ट ज्यादा जम्मू डिवीजन में ही रहेगा, और अगर ये है तो जम्मू में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन अजला में रहेगा?
0: बिल्कुल जम्मू में ही रहने के चांसेस हैं ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं और साथ साथ में रियासी उधमपुर इन जगहों पर जो है ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है।
1: पिछली बार सबसे ज्यादा इम्पैक्ट राजौरी पुंछ में देखा गया था, बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, तो इस बार आपको लग रहा है कि वहाँ पर कम बारिश हो सकती?
0: बारिश होंगी लेकिन उस स्केल की नहीं होंगी जो लास्ट वेदर सिस्टम के दौरान हमने देखा, तो पीर पंचाल के खासकर पुंछ राजौरी के अंदर जिस हिसाब से बारिश हुई तो वैसे बारिशों के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी लाइट टू मॉडरेट कुछ जगहों पर ब्रीफ इंटेंस शावर रोल आउट नहीं किया जाता खासकर पुंछ राजौरी के अंदर।
1: कहीं पे तेज हवाएं चलने का इम्कान या जलाबारी?
0: जलाबारी के चांस नहीं है, गस्ती विंड थोड़ा सा चल सकता है, बाकी ब्रीफ इंटेंस शावर के कारण फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स या टोरेंशियल तेज बारिशों के कारण थोड़ा फ्लैश फ्लड के चांसेस काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग खासकर जम्मू या बाकी जो आसपास के टाउन हैं इनमें पानी जो है भरने के चांसेस हैं तेज बारिशों के कारण। बाकी ऐसा कोई ऐसे इम्पैक्टफुल या कोई कंटिन्यूस रेन के चांसेस नहीं है, हैवी शावर खासकर अर्ली मॉर्निंग में ही देखा जा सकता है।
1: ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान फारूक रातिर ने इतला दी है कि दर्दगुन कुलगाम में गुज़श्ता शाम तकरीबन 7 बजे बादल फटने के बाइस सैलाब आया और इस वजह से मकामी बस्ती में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सैलाबी रेले में बशीर अहमद लोन का गांव खाना बह गया, जबकि वसीम अहमद लोन की गाय और 2 भेड़े भी सैलाब की नजर हुई। हमीदुल्ला डार के जेर तामीर मकान के लिए रखा गया तामीराती मवाद बशमूल लकड़ी भी पानी के साथ बह गया। इसी तरह चंद एक लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ और इस वजह से नुकसान हुआ। इलाके में खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वाकये के फौरन बाद दिवसर पुलिस ने इमदादी और बचाव कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम, तहसीलदार दिवसर रकीब अहमद और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कठुआ जिले में बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा। जिले में आज भी रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके बायस बनी सड़क बंद कर दी गई। ओल्ड समा सड़क भी सैलाबी रेलों के बायस बंद कर दी गई। दरियासना आज कोटा हीरानगर में सड़क का एक हिस्सा पानी के रेले के साथ बह गया। एक रिपोर्ट सुनते हैं रमेश मारहटा से।
2: सुबह जम्मू के हर हिस्से में बारिशों का सिलसिला लगभग जारी है। लैंडस्लाइड, छोटे बड़े नदी नालों में बरसात के पानी की वजह से बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। वहीं अगर जिला कठुआ की बात करें, पिछले कई घंटों से रुक रुक के बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। इन तेज बारिशों की वजह से ओल्ड सांबा कठुआ सड़क राबिता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस सड़क राबिते के जरिए आम लोगों की नकल हरकत ठप पड़ी है। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने इस सड़क राबिते का दौरा कर हालात का जायजा लिया। यहां मुकीम बाशिंदों को यकीन दिलाया कि तेजी से इस राबिता सड़क को बहाल किया जाएगा। कठुआ जिला के पहाड़ी इलाकों में बारिशों की वजह से तबाही के मनाजर देख कर रूह कांप उठती है। कटली लोहाई मल्हार का सड़क राबिता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा काम के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के हालात बिलावर के मछेड़ी, बदनोता, किंडली और दूरदराज के गांवों की है, जहां तक पहुंचना वो भी इन हालात में नामुमकिन है। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है, पर वो पगडंडियां भी बारिशों की वजह से अपना नामोनिशान खो बैठे हैं। उधर रंजीत सागर डैम में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एसओपी जारी कर आम लोगों को दरियाओं, नदी नालों के नजदीक जाने से मनाही की है। वहीं पूरी सरहदी इलाके में कई गांव पानी की जद में आकर कच्चे घरों को खाली कर सेफर प्लेसेस पर वो लोग चले गए हैं। बसोली से बनी के बीच लैंडस्लाइड आने की वजह से ये राबिता सड़क फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा हुआ है। इसी बीच बनी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने इस बात की तस्दीक की है कि सेवा दरिया में 1.74 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि रावी दरिया, सेवा दरिया और उज दरिया के साथ साथ छोटे बड़े नदी नालों के नजदीक जाने से परहेज करें। जम्मू

0: पठानकोट कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त फिलहाल मामूल के मुताबिक जारी है।
1: ये थे कठवा से रमेश मराठा। इस दौरान डोडा जिले में भी गुज़श्ता दिनों की बारिश से कई मकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जबकि यहां आज भी रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। तफसीलात नसीर खोड़ा से।
2: गुज़श्ता दिनों की लगातार तूफानी बारिशों ने जहां एक तरफ मामूलात जिंदगी के हर शोबा को मुतासर कर रखा है, वहीं दूसरी जानिब जिला डोडा के मुतलिक मकामात पर लकड़ी के आर्जी पुलों के साथ साथ डोडा के मुकाम पर दरियाई चनाब पर वाका एक बहुत बड़े पुल को नुकसान से दोचार किया है और इस पुल पर गुज़श्ता रात से गाड़ियों की आमदरफ्त को मअत्तल रखा गया है, जिसके सबब अब भद्रवा ठाठरी गुंदोबलेस व किश्तवाल से डोडा वारिद होने वाली मुसाफिर गाड़ियों को गणपत के रास्ते डोडा वारिद होना पड़ता है, जो कि मुसाफिरों के लिए दूर भी है और वक्त भी ज्यादा दरकार रहता है। बताया जाता है कि इस पुल पर तामीर का काम इब्तदा में साल 1987 से डायमंड इंडिया कंपनी ने अंजाम दिया था, जो कि उस वक्त की तूफानी बारिशों से जबरदस्त नुकसान से दो चार हुआ था और नुकसान के उस डायमंड इंडिया कंपनी ने महकमा R&B से लाखों रुपया तलब किया था और इस कंपनी ने काम अधूरा छोड़ा और अपनी मशीनरी और आलात लेकर वहां से फरार हुए। इसके कुछ अरसा बाद यानी साल 1996 में JKPCC ने इस पुल पर तामीर का काम हाथ में लिया और साल 2002 में इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के बाद इस पर गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हुई, जिसकी इब्तदा उस वक्त के मिनिस्टर बशीर अहमद किचलू के हाथों हुई थी। शहरबीन को तफसील फराम करते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डोडा मुकेश कुमार ने बताया कि इस पुल की लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 17.5 मीटर है और इसको हाई फ्लड लेवल से मजीद 1 मीटर ऊंचाई पर तामीर किया गया है, ताकि सैलाब व पानी के तेज बहाव और इसकी सतह में इजाफा होने से इसको नुकसान न पहुंचे। मगर हालिया दिनों की मूसलाधार बारिशों ने इस पर जगह जगह शिगाब पैदा किए और एहतियाती तदाबीर के पेशेंदर इस पर गलियों की नकल हमल अब मुकम्मल तौर बंद रखी गई है। हंगामी बुनियादों पर जम्मू से डिजाइन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल टीम ने कल डोडा का दौरा करके पुल का मुआयना करके सूरत हाल का जायजा लिया और जो कि चंद दिनों के अंदर इस ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस तरह पुल डोडा गठ रोड पर वाका 24 मीटर लंबा पुल भी बारिशों में नुकसान हुआ था। याद रहे कि ये पुल गुज़श्ता बरस भी नुकसान से दो चार हुआ था, जबकि गुंदोबलेस के बाद इलाकाजात में इस माह के अवाइल में चंद पुल सैलाब से नुकसान ज्यादा हुए हैं और सैलाब के रेलों की वजह से इनकी दीवारें खिसक गई थी, जो आज भी तजदीद और मरम्मत के मुंतजर हैं। फितह चनाब में तूफानी बारिशों का सिलसिला हनूज जारी है और आज सुबह भी मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त बारिशें हुई।
1: आपने नसीर खोड़ा की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौसम। PDF के सदर और साबिक काबीना वजीर हकीम मोहम्मद यासी ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो एक दूसरे पर इल्जाम आयद करने के बजाय जम्मू कश्मीर की आवाम को दरपेश अहम मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। अपने एक बयान में हकीम मोहम्मद यासी ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान इल्जाम तराशी और जवाबी बयान का सिलसिला आवाम के किसी काम का नहीं, क्योंकि लोग बखूबी जानते हैं कि इक्तदार में रहने के दौरान मुख्तलिफ जमातों की कारकर्दगी क्या रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों की पॉलिसियां आवाम को बाख्तियार बनाने में नाकाम रही हैं और सियासी और माशी मसाइल में इजाफा हुआ है। हकीम मोहम्मद यासीन ने हालिया बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजाम से मुतासर खानदानों को फौरी इमदाद, बाजाबादकारी और मौसर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए मुस्तकिल और देरपा मनसूबाबंदी नागुजीर है। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट सब डिवीजन करालपुरा का एक इजलास आज जिला सदर अब्दुल्ला भट्ट की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास में मीर फयाज और शेख बशीर अहमद ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शमूलियत की। इजलास में पेंशनर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मुकर्ररी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेंशनर्स के तमाम दीरीना मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाए ताकि बुजुर्ग शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में मेडिकल अलाउंस को लद्दाख की तर्ज पर 300 से बढ़ाकर 1000 रुपया किया जाए, क्योंकि बढ़ते हुए तिब्बी खराजात के पेश नजर मौजूदा अलाउंस नाकाफी है। इजलास के इख्तिताम पर एक करारदाद भी मंजूर की गई। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से।

0: खाली मकान से, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट दिल से।
1: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन, आज 2000 से ज्यादा श्री अमरनाथ जी यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना हुए और ये यात्री बालतल बेस कैंप पहुँच चुके हैं। सरकारी एहदाद शुमार के मुताबिक 2051 यात्रियों का काफिला सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 82 गाड़ियों में बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है। हुकाम ने बताया कि आज पहलगाम के रास्ते किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सालाना अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार पर इख्ताम पजीर हो गई। अब तक 4 लाख से ज्यादा यात्री गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इधर आज छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंची। रिवायत के मुताबिक आज छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना हुई और इसके बाद इसे मटन पहुंचाया गया। मुकम्मल तफसीलात इस तारीख से।
2: आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के रिवायती रूट पहलगाम से पवित्र गुफा तक मजमुई तौर पे मौसम अब रारूज रहा, जबकि शाम के अवकात में मुख्तलिफ मुकाम पर हल्की सी दरमियाना बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। खराब मौसमी हालात और रास्ते की बहाली के पेश नजर पहलगाम रूट से श्री अमरनाथ जी यात्रा फिलहाल आर्जी तौर पे मौतल है। यात्रियों की सलामती और सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए चंदनवाड़ी से मुकदस गुफा तक रिवायती यात्रा मार्ग पर जरूरी मरम्मत और बहाली का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तेजी से जारी है। आज का दिन श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से खुदूसी मजहबी अहमियत का भी हामिल है, क्योंकि भगवान शिव और आदि शक्ति के अकीदत की अलामत पहली छड़ी मुबारक आज पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर पहुंच गई, जहां छड़ी मुबारक के कस्टोडियन महंत दिपंदरा गिरी की क्यादत में खुदूसी भूमि पूजन और ध्वजा रोहन की रसूमात अदा की गई। इस मौके पर कश्मीरी पंडित बरादरी, मुकामी बाशिंदों और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद रही। बाद अज़ां छड़ी मुबारक सूर्य मंदिर मटन पहुंची, जहां खुदूसी पूजा और मुकदस स्नान के रसूमात अंजाम दी गई। शाम के वक्त छड़ी मुबारक को वापस श्रीनगर के दिशनाम अखाड़ा रवाना कर दिया गया। मजहबी रिवायत के मुताबिक आज ही के दिन से श्री अमरनाथ जी यात्रा की रूहानी रसूमात का बाकायदा आगाज तसव्वुर किया जाता है।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी ये दिन आज का प्रचलित है, और प्रत्येक वर्ष की तरह परंपरागत हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को, दो छड़ियां, उनको लेकर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम पहुंचे और यहाँ आकर हमने भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और शटिकाओं का पूजन किया। ये सारे अनुष्ठान छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा के धार्मिक रूप से प्रारंभ होने के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अनुष्ठान हमने किए, हवन हुआ, अब जो भी महात्मा और जो भी हमारे साथ श्रीनगर से आए सभी को भोजन हुआ, और इसके पश्चात अब यहाँ से हम मार्टन जाएंगे, वहाँ छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी दर्शनार्थ यात्रियों के लिए, और जो मार्टन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनके दर्शन के लिए छड़ियों को वहाँ रखा जाएगा, और पूजा के बाद हम मार्टन से फिर श्रीनगर के लिए रवाना। तो ये गतिविधि है हमारी।
2: 57 रोजा श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3 जुलाई से अब तक 4,37,000 से ज्यादा अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन की सादत हासिल कर चुके हैं। आज ये रिपोर्ट इंसार किए जाने तक 5,000 से ज्यादा यात्री मुकद्दस गुफा में दर्शन कर चुके हैं, जबकि दर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा।
1: अमरनाथ यात्रा से मुतलिक रिपोर्ट सुना रहे थे इस तारिक शेरवीन, अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन, प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान आज सुबह इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। मोहम्मद सलीम खान की वफात पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, सीनियर नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट, नायब सदर सरदार चन्नी सिंह, सीनियर नायब सदर गुलाम नबी मोंगा, जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद खान, साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी, साबिक वजीर जीएम सरूरी, एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट, पीडीपी जिला कोऑर्डिनेटर बारामूला अल्ताफ अहमद मलिक समेत दीगर शख्सियात ने सर्वे का इजहार करते हुए मरहूम की पार्टी के तई खिदमात को याद किया और मरहूम के हक में दुआएं मगफिरत की। कई लीडरान ने आज मरहूम के घर जाकर सुगवारान से भी तासीद की। समीन, बड़गाम के शेखपुरा इलाके में आज सीआरपीएफ की गाड़ी चनार के साथ टकरा गई और उसके नतीजे में 3 अहलकार जख्मी हुए। हादसे के बाद कुछ

मेमोरियल सतूनाथ के नदीम अल्ताफ बतौर मेहमान जेवाकार शामिल रहे। सेमिनार के दौरान रजब हामिद की जिंदगी के मुख्तलिफ दो मकाले पढ़े गए, बाद में एक मुशायरे का भी अहतमाम रहा। जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक रोजा कॉन्फ्रेंस 30 जुलाई को उस्ताद गर्ब भिमना में मुनक्कद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम सकीना इत्तू की शिरकत भी मुतवक्के है। ये तकरीब सुबह 11 बजे शुरू होगी। मुत्तहिदा उलमाए अहले सुन्नत जम्मू कश्मीर के एहतमाम से श्रीनगर में हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अहमद सरहंदी और हजरत इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासबत से एक पुरवकार इल्मी और रूहानी सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार में इस बात पर जोर दिया गया कि नई नस्ल को कश्मीर के औलिया इकराम सूफी बुजुर्ग और ऋषियों की तालीमात से रोशनास कराना वक्त की अहम जरूरत है। इस मकसद के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि कश्मीर में शाह हमदान यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कल्चरल यूनिवर्सिटी और दीगर आला तालीमी इदारों में अवलिया इकराम और सूफिया इकराम

0: सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: प्रोग्राम वादी की आवाज़ सुनने वाले सभी सामईन की खिदमत में हमारा खलूस भरा आदाब। सामईन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नए हिंदुस्तान की सेहतमंद तस्वीर की, तिब, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के बदलते मंजरनामे की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे भारत की सेहत के मैदान में तरक्की से। सामईन, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदुस्तान में सेहत का एक ऐसा इनकलाब खामोशी से बरपा हो रहा है जिसकी आवाज़ न तो किसी मशीन की घनगरज से सुनाई देती है, न किसी बड़ी इमारत की तामीर में, बल्कि इसकी बाजगश्त एक दूर उफ्तादा गाँव की आशा कारकुन के कदमों में, एक जिला अस्पताल के नौजवान डॉक्टर की मुस्कुराहट में, एक माँ के इत्मीनान में और एक बुजुर्ग शहरी के एतमाद में सुनाई देती है, तो शायद आपको हैरत हो। लेकिन हकीकत यही है कि गुज़श्ता चंद बरसों में हिंदुस्तान के सेहत के शोबे ने जिस रफ्तार से तरक्की की है, उसने न सिर्फ इलाज के तरीकों को बदला है, बल्कि सेहत के पूरे तसव्वुर को नई जुहत अदा की है। आज सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि बीमारी से पहले इंसान की हिफाजत, इसके मयार ज़िंदगी में बेहतरी और हर शहरी तक मयारी तिब्बी सहूलतों की मसावी रसाई बन चुका है। यही वो तब्दीली है जो नए हिंदुस्तान की पहचान बनती जा रही है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो महसूस होता है कि सेहत का शोबा पहले की नस्बत कहीं ज़्यादा जदीद, मरबूत और अवाम दोस्त हो चुका है। चंद बरस पहले तक किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा हासिल करने के लिए दूर दराज शहरों का सफ़र करना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फासले समेट दिए हैं। टेलीमेडिसिन के ज़रिए दूर उफ्तादा इलाकों में रहने वाले अफराद भी बड़े तिब्बी मराकज़ के माहिरीन से मशवरा हासिल कर सकते हैं। मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड इलाज के अमल को आसान बना रहे हैं, जबकि मसनवी जहानत बीमारियों की तशखीस को ज़्यादा तेज़ और मौसर बनाने में डॉक्टरों की माविन साबित हो रही है। एक्सरे, सीटी स्कैन और दीगर तशखीसी रिपोर्ट्स का तज्ज़िया अब पहले से कहीं ज़्यादा

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामईन, वैक्सीन साजी के मैदान में भी हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपनी मजबूत शिनाख्त कायम की है, जिससे न सिर्फ मुल्क के अवाम बल्कि दुनिया के कई दीगर ममालिक को भी फायदा पहुंचा है। सामईन, कोविड-19 की वबा ने पूरी दुनिया को सेहत के निज़ाम की अहमियत का एहसास दिलाया। उस मुश्किल दौर ने हमें ये सबक दिया कि जदीद अस्पतालों के साथ साथ मजबूत कम्युनिटी हेल्थ नेटवर्क भी नागुजीर है। हिंदुस्तान में डॉक्टरों, नर्सों, लेबोरेटरी माहिरीन, आशा कारकुनान, एम्बुलेंस अमले और सफाई कारकुनान ने गैर मामूली अजम और खिदमत का मुजाहिरा किया। उस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मशावरत, वैक्सीनेशन मुहिम और सेहत से मुतल्लिक अवामी आगाही ने ये साबित किया कि इज्तिमाई कोशिशें बड़े से बड़े बहरान का मुकाबला कर सकती हैं। सेहत का एक और अहम पहलू गैर मुतदी बीमारियों की रोकथाम है। जियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, कैंसर और गुर्दों के अमराज आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तान में अब इन बीमारियों की बरवक्त जांच और एहतियात पर खसूसी तवज्जा दी जा रही है। लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि रोज़ाना की वर्जिश, मुतवाजन गजा, तंबाकू से दूरी, मुनासिब नींद और जहनी सकून किसी भी दवा से कम अहम नहीं। यही वजह है कि कम्युनिटी मेडिसिन का दायरा सिर्फ अस्पतालों तक महदूद नहीं बल्कि स्कूलों, मोहल्लों, देहात और काम की जगहों तक फैल चुका है। जहनी सेहत भी अब कौमी गुफ्तगू का हिस्सा बन रही है। पहले जहनी मसाइल पर खुलकर बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब ये शऊर पैदा हो रहा है कि जहनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है। रिपीट, लेकिन अब ये शऊर पैदा हो रहा है कि जहनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है। नौजवानों, बुजुर्गों, खवातीन और तुलबा में जहनी दबाव, इज़्तिराब और दीगर नफ्सियाती मसाइल के बारे में आगाही बढ़ रही है और लोग बरवक्त मशवरा लेने की अहमियत को समझने लगे हैं। तिब्बी तालीम के मैदान में भी नुमाया पेशरफ्त हुई है। मुल्क में नए मेडिकल कॉलेज कायम हो रहे हैं, जदीद तहकीक को फ़रोग दिया जा रहा है और नई नस्ल के डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों और दीगर तिब्बी माहिरीन को आलमी मैार की तरबियत फराहम की जा रही है। इससे न सेहत निज़ाम मजबूत हो रहा है बल्कि मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने की सलाहियत भी बढ़ रही है। सेहत सिर्फ अस्पतालों से वाबस्ता नहीं बल्कि माहौल से भी जुड़ी हुई है। साफ पानी, साफ सुथरा माहौल, मुनासिब निकासी आब, आलूदगी में कमी और गजाई तहफ़ुज़ वो अवामिल है जो बीमारियों को रोकने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर हमारा माहौल सेहतमंद होगा तो हमारा मुआशरा भी सेहतमंद होगा। इसलिए आज कम्युनिटी मेडिसिन में माहौलियात को भी अहम मुकाम हासिल है। मसनवी जहानत, रोबोटिक सर्जरी, जीन थेरेपी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ड्रोन के जरिए तिबी सामान की फरहमी और जदीद तशखीसी टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की सेहत का नक्शा बदल रही है। लेकिन इन तमाम तरक्कियों के बावजूद एक हकीकत हमेशा बरकरार रहेगी कि सेहत के शोबे का असल मरकज इंसान है। जदीद मशीनें सिर्फ उसी वक्त मौसर साबित होती हैं जब उनके साथ इंसान दोस्ती, हमदर्दी और खिदमत का जज्बा भी शामिल हो। यही जज्बा लाखों डॉक्टरों, नर्सों, मुहक्किकीन, सफाई कारकुनों, आशा कारकुनान और दीगर तिबी अहलकारों में नजर आता है जो खामोशी से कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सामने एक सेहतमंद हिंदुस्तान सिर्फ हुकूमत की कोशिशों से नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी से तामीर होगा। अगर हम सेहतमंद गजा अपनाएं, बाकायदा वर्जिश करें, वक्त पर तिबी मुआयना कराएं, हिफाजती टीकों की अहमियत को समझें, तंबाकू नोशी और दीगर मुजर आदात से दूर रहें और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुआशरे की सेहत बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन का असल पैगाम यही है कि सेहत एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है और हर फर्द इस सफर का अहम शरीक है। सामिन, आखिर में यही कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के सेहत के शोबे की असल कामयाबी सिर्फ नए अस्पतालों, जदीद मशीनों या

नई दवाओं में नहीं बल्कि इस बदलती हुई सोच में पोषिता है, जिसके तहत सेहत को हर शहरी का बुनियादी हक और कौमी तरक्की का बुनियाद समझा जा रहा है। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां साइंस और इंसानियत एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े, जहां टेक्नोलॉजी और हमदर्दी एक साथ चले, जहां बीमारी के इलाज से ज्यादा सेहत के तहफ्फुज़ को अहमियत दी जाए और जहां हर शहरी को बाविकार और मयारी सेहत की सहूलत मयसर हो। यही वो सफर है जो एक मजबूत, खुद एतमाद, खुशहाल और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की सिमत हमारी रहनुमाई कर रहा है। सामिन, प्रोग्राम के इस पड़ाव पर आइए पहले सुनते हैं आप और हम ये खूबसूरत सी गजल।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की शदीद लहर का सामना

सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक खुदकुश हमले, सिक्योरिटी एहलकारों पर गात लगाकर हमले और आम शहरियों को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा देखने में आया है। सवाल ये है कि आखिर इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों की ताकत का नतीजा है या फिर रियासती पॉलिसियों, हुकूमती नाकामियों और अस्करी हिकमत अमली की गलतियों ने भी इस बहरान को जन्म दिया है? पाकिस्तानी हुकूमत और फौज कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का दावा करती रही है। मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस को बड़ी कामयाबी करार दिया गया, अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च किए गए और आवाम को यकीन दिलाया गया कि दहशतगर्दी का खात्मा करीब है। लेकिन अगर आज भी वहां दहशतगर्द तंजीमें न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बाज इलाकों में पहले से ज्यादा सरगर्म दिखाई देती हैं, तो ये सवाल उठाना फितरी है कि आखिर इन पॉलिसियों में कहां खामी रही है। खामी दरअसल है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का दोगलापन। एक तरफ तो वो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते हैं ताकि वो खित्ते में हावी हो जाए या जो भी उनके ख्वाब हैं, और दूसरी तरफ जब उनको अपनी ही दवाई अपने ही मुल्क की तैयार करदा मिल जाती है तो फिर कहते हैं हम तो भाई दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाया है और अब कई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की दिफाई एस्टैब्लिशमेंट और दहशतगर्दी के ढांचे के बीच की लकीरें ही साफ नजर नहीं आती हैं। कई पाकिस्तानी और बैनुल अक्वामी तजियाकार बरसों से इस बात की निशानदेही करते आए हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने मुख्तलिफ अदवार में बाज मुसल्ला ग्रोहों के साथ मुख्तलिफ नवियत के ताल्लुकात या इम्तियाजी रवैये इख्तियार किए। माहरीन के मुताबिक कुछ ग्रोहों को कौमी सलामती या इलाकाई हिकमत अमली के तनाजुर में बर्दाश्त किया गया जबकि दूसरे ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाकदीन का इस्तदलाल है कि इस तरह की पॉलिसियों ने दहशत पसंदी के मजमूई ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बजाय इसे मजीद पेचीदा बना दिया। अफगानिस्तान में 2021 की सियासी तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सरहद पार से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस कम होंगे, लेकिन सूरतेहाल इसके बरक्स रही। तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP के हमलों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि TTP के अनासर अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां करते हैं जबकि अफगान तालिबान इस इल्जाम से इनकार करते रहे हैं। तहम इस पेशरफ ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी हिकमत अमली पर नए सवालात जरूर खड़ा किए। दाखिली सतह पर भी हुकूमत और रियासती इदारों को तनकीद का सामना करना पड़ा है। सियासी अदम इस्तेकाम मुंतखब हुकूमतों और ताकतवर रियासती इदारों के दरमियान कशीदगी और पॉलिसी साजी में अदम तसलसल ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मुतासर किया। माहरीन के मुताबिक जब कौमी तवज्जा सियासी महाज़राई पर मरकूज हो तो सलामती के पेचीदा मसाइल से मौसर अंदाज में निमटना मुश्किल हो जाता है। बलूचिस्तान की सूरतेहाल भी इस बहस का एक अहम हिस्सा है। वहां कई बरसों से शोरिश, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और मुसल्ला हमलों का सिलसिला जारी है। इंसानी हकूक की तंजीमों और बाज मुबसरीन के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों, सियासी शिकायत और तरक्याती अदम मसावत जैसे मसाइल ने मुकामी बेचैनी को बढ़ाया है। पाकिस्तानी हुकाम यहाँ तक अदलिया ने भी मुतासरीन को अब तक सिर्फ मायूस किया है। पाकिस्तान की मईशत भी इस बहरान से बुरी तरह मुतासर हुई है। दहशतगर्दी, सियासी गैर यकीनी सूरतेहाल और सिक्योरिटी खदशात ने सरमायाकारी, सयाहत और इक्तिसादी सरगर्मियों पर मनफी असर डाला है। सवाल ये है कि अगर दहाइयों के मुसलसल ऑपरेशंस के बावजूद हालात बार बार इसी मुकाम पर आ खड़े होते हैं तो क्या सिर्फ फौजी हल काफ़ी है या फिर रियासत को अपनी मजमूई हिकमत अमली का असर नौ जायजा लेना होगा या अपनी इस प्रो टेरर पॉलिसी पर गौर करना होगा कि ऐसा कब तक चलेगा। सामीन, आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी का मसला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं बल्कि हुक्मरानी, पॉलिसी साजी और रियासती तरजीहात का अक्स है। ये हालात एक आईना है जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को उसका चेहरा दिखा रहे हैं। दहशतगर्दी को स्टेट पॉलिसी के तौर अपनाने वाले मुल्क पाकिस्तान को अब इस बात पर गौर तो करना होगा कि वो कब तक आगे पीछे चलकर अमन की मंजिल हासिल करना चाहते हैं। दहशतगर्दी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, पाकिस्तान इसकी बड़ी मिसाल है, मगर दहशतगर्दी के कारोबारी वहां इस कारोबार को किसी भी सूरत बंद नहीं करवाना चाहते। समीन, ये तो थी बात पाकिस्तान के हालात की और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज, या आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्स और FM 103.5 MHz पर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सिर्फ

0: इशू कर रहा है, जो हमारे पास एप्लीकेशन या पेंशनर है ट्रांसजेंडर, वो आज हमारे पास 17 है, 17 एज ऑन डेट हमारे पास ट्रांसजेंडर पेंशनर है।
1: अगर बुजुर्ग शहरियों की बात करेंगे, किसी का ये भी कहना है कि अभी तक उनको पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि आधार कार्ड का कुछ मसला है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए?
0: हाँ, बेसिकली इसमें कुछ इशू आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हजरात है या हमारे पीसीबी हजरात है या हमारे विडो हमारी माए बहने है, इनमें के भी कुबार ये इशू आ रहा है, उनकी पेंशन नहीं जा रहे है उसमें, या तो उनका इशू होता है आधार सीडिंग नहीं होते हैं, उनको सीधे बैंक पे जाना चाहिए, बैंक पे उन्हें एनपीसीएल लिंक करना चाहिए या आधार सीड करना चाहिए, जो ही वो आधार सीड कर देंगे पेंशन उनका स्टार्ट हो जाएगा।
2: इसी तरह अगर हम मैरिट असिस्टेंस की बात करेंगे, कितने बेनिफिशियरीज को अभी तक वो असिस्टेंस मिल गई है जिनने अपनी शादियां इस अमाउंट से की होगी, तो कितने लोग हैं वो?
0: जहां तक 25-26 का ताल्लुक है, इसमें मोर देन 700 एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं जो सैंक्शन भी हुए हैं, उनको तकरीबन कुछ में 75,000 के हिसाब से मिला है जो AAY वाले कैटेगरीज है, और जो बाकी BPL वाले कैटेगरीज उनको 50,000 के हिसाब से मिला है। और इसमें मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, इसमें जब उनको अप्लाई करना होता है उनको 1 month बिफोर डेट ऑफ मैरिज अप्लाई करना चाहिए, जो 10-20 दिन पहले अप्लाई करता है गाइडलाइंस के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। मैं आपकी माध्यम से ये लोगों को कहना चाहता हूँ, या चाहे CSE सेंटर्स है, चाहे बाकी दूसरे लोग हैं जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, हर एक एप्लीकेंट को 1 month बिफोर डेट ऑफ मैरिज अप्लाई करना चाहिए। ये अच्छी स्कीम है, तो वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस शादी के लिए मिल रहा है, बेटर है कि उनको आगे आना चाहिए, लेकिन इसमें भी वही BPL और AAY एलिजिबल है, BPL वालों को 50,000 मिलते हैं और AAY वालों को 75,000 मिलते हैं।
1: इसके लिए कोई डेट रखा गया है कि कब इन्हें अप्लाई करना है, क्या ऐसे जर्नली में चल रहे हैं?
0: नहीं, उनको तकरीबन 30-40 दिन पहले अप्लाई करना चाहिए, ठीक, इसी हिसाब से, ताकि हम वेरिफिकेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि उसको टाइम पे केस सैंक्शन हो जाए और टाइम पे उसको पैसा मिल जाए। कुछ 10-20 दिन पहले अप्लाई करते हैं उसको रिजेक्ट करें, या बेटर है उनके लिए फिर वो डेट चेंज करें, और फिर ताकि ये 30 दिन का गैप या 40 दिन का गैप अच्छी तरह से रह जाए और इस पीरियड में हम अच्छी तरह इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करें।
1: आपने अभी बात की है कि जो जिस्मानी तौर कमजोर लोग हैं, कितने लोगों तक अभी आपने ट्राईसाइकल्स फराहम किए हैं, और जो मुस्तहिक है जो ये ट्राईसाइकल लेना चाहता है तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, किस दफ्तर के पास उसको जाना पड़ेगा ताकि उसको भी इस सहूलियत से फायदा मिल सके?
0: देखिए, आज डिजिटल जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड है, हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जनसुगम पोर्टल, जिसको ट्राईसाइकल की जरूरत हो, जो एलिजिबल हो, उसको अप्लाई करना है जनसुगम पोर्टल पे। जैसे पेंशन के लिए यही पोर्टल है, जैसे मैरिज असिस्टेंस के लिए यही पोर्टल है, ट्राईसाइकल मोटराइज्ड ट्राईसाइकल के लिए यही पोर्टल है, जिसको जो भी एलिजिबल है, इसमें एलिजिबिलिटी यही है, जो एक मेंटली साउंड होना चाहिए और दूसरा लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो, अपर लिम्ब इन्वॉल्व ना हो, सेरेब्रल पैलेसी ना हो, और ये BPL या AAY जमरे से ताल्लुक रखता हो वो अच्छी तरह से, और CMO की तरफ से एक मेंटली फिट सर्टिफिकेट और फिट टू ड्राइव सर्टिफिकेट आनी चाहिए, ये अच्छी तरह से जनसुगम पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है, ये हमारे लॉगिन में आता है, हम इसको अच्छी तरह से सिक्योरिटाइज करके रिहैबिलिटेशन काउंसिल को भेजते हैं और रिहैबिलिटेशन काउंसिल इसको सैंक्शन करता है। जहां तक इस फाइनेंशियल ईयर का ताल्लुक है, अभी तक हमने 5 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट की है और हमारे पास तकरीबन पेंडेंसी है अभी 75 की, जो तकरीबन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन काउंसिल के पास पेंडिंग है, हो सकता है विदिन 4-5 months शायद ये उनके लिए भी आ जाएगा, ताकि हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जो ऑटोमेटिक व्हील चेयर, इसके लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें एलिजिबिलिटी है 14 years अलावा जो भी है, लेकिन BPL और AAY वाले अप्लाई इसमें कर सकते हैं, और इसमें मेडिकल ऑफिसर या CMO की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट आनी चाहिए, ये फिट ड्राइव ऑटोमेटिक व्हील चेयर, तो ये भी जनसुगम पोर्टल पे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम दिलवा सकते हैं। अभी तक हमारे पास 2-4 एप्लीकेशन आए हैं, हम उसको सिक्योरिटाइज करने वाले हैं और हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल को वो भेजने वाले हैं, वो फिर उनको सैंक्शन करें।
1: अच्छा, आपके पास और एक स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो नीट का बच्चा एग्जाम देना चाहता है उसके लिए क्या आपने रखा है ताकि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल सके और इस नीट में वो शामिल हो सके?
0: जहां तक बेटी बचाओ

0: एडमिनिस्ट्रेटिव पड़ाव का ताल्लुक है। इस साल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इसमें उसने एक इनोवेटिव, मैं कह रहा हूँ इनोवेटिव सेटअप लिया है। उसने कहा जो भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स नीट में आना चाहते हैं, नीट कोचिंग के लिए अगर वो एक एज पे खड़े है, उनके पास पैसा है, अब उनके पेरेंट सोच रहे हैं कोचिंग कराए ना कराए, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस 40,000 की कर रहे हैं। इसमें जो सिलेक्शन हो जाएगी वो पहले 20 बेनिफिशरीज को हम 40,000 इसमें 20,000 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर और 20,000 रेड क्रॉस के अंदर है, लेकिन ये सिलेक्शन जो हो जाएगा मेरिट बेसिस पे, जो टॉप 20 मेरिटोरियस होंगे और उन्होंने किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया हो, कोचिंग सेंटर को ये रिकॉग्नाइज्ड हो, हमने आरडी लिंक भी क्रिएट की है, ऑनलाइन फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं, तकरीबन 30 दिनों से ऑनलाइन फॉर्म हम रिसीव कर रहे हैं, 2 अगस्त तक इसका फॉर्म लेने का, 2 अगस्त इज द लास्ट डेट, हम तवक्कुल कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको अच्छी तरह से सिक्योरिटाइज करने, जो भी एलिजिबल और टॉप मेरिटोरियस बच्चे है जो अच्छी तरह से तैयारी नीट के लिए कर रहे हैं उनको हम डेफिनेटली इसमें 40,000 देंगे। इसमें जो इनकम बार हमने रखा है लेस देन 8 लाख इसलिए रखा है ताकि जो कोई बच्चा जिनके पेरेंट्स किसी एज पे खड़ा है वो सोच रहे हैं हम करें या नीट के लिए बच्चे को करवाए तैयारी या ना करवाए तैयारी, उनके लिए एक खासा अमाउंट 40,000 नीट के कोचिंग के लिए तकरीबन 60-70,000 लगते, अगर उसको 40,000 यहां से मिल जाए 30,000 वो अच्छी तरह से मैनेज कर सके ताकि बच्चे का जो मुस्तकबिल अगर उसमें कैपेबिलिटीज है, अगर वो इंटरेस्टेड है मेडिकल फील्ड में आगे जाने के लिए, इसके लिए एक आसान रास्ता हमने खोला।
1: अभी तक कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है?
0: कल मैं चेक कर रहा था, हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई है वो तकरीबन 45 के आसपास हमारे पास आई है, अभी भी एक हफ्ता है, हम तवक्का कर रहे हैं तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आई। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आए हम कमेटी बनी है जिसमें चेयरमैन है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, हम उसको सिक्योरिटाइज करके जल्द से जल्द उनको ये पैसा देंगे।
1: सर फिर एक बार हम उन बच्चों पे आ जाएंगे जो जिस्मानी तौर कमजोर है, आप उनके लिए अवेयरनेस कैंपस भी करते थे पहले, लेकिन अब वो अवेयरनेस कैंप कम ही देखे जा रहे हैं।
0: नहीं, हम कर रहे हैं बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म के एड्स, चाहे हमारे बुजुर्गों के लिए हेयरिंग एड्स है, चाहे हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं या PWDs है उनके लिए वो व्हील चेयर्स या उनके लिए वो सिटिक्स या इनके लिए वो फिटिंग डिवाइसेस वगैरह, इसके लिए ऑलरेडी हमने कैंपस डेट निकाला है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से कोऑर्डिनेशन करके, एलिमको से कोऑर्डिनेशन करके हमने डेट फिक्स किया है। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है जिनको हेयरिंग एड्स की जरूरत है, जिनको कलच की जरूरत है, जिनको ब्रेसेस की जरूरत है, या हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको किसी चीज की जरूरत है वो इसमें आ जाए 29 तारीख को कुलगाम में है। इसी तरह DHpura और देवसर के लिए हमने डेट आरडी इशू किया, हमने पब्लिक नोटिस भी शाया किया, अखबार में भी हमने निकाले, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये सारा इजरा किया है। जितने भी बेनिफिशरीज है वो इसमें आ जाए, जो भी इसमें कुछ लवाजमात है वो पूरे करके वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। सबसे बड़ी बात है जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बेसिक एनर्जी है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, पेरेंट्स को चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दे, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचे, उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करे ये बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि ये जो कुछ सालों से जो नशे की लत लग गई हमारे समाज में, ताकि वो इसकी तरफ ना जाए और अपने एनर्जी को वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में इस्तेमाल करके अपना मुस्तकबिल, अपने मुल्क का नाम, अपने जिले का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करे।
2: इसके साथ ही जिलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर व आवाज शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: आप आज का जिला नामा सुन रहे थे। आज का जिला नामा जिला कुलगाम से मुतालिक था।

0: आवाज़ है, रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें पेश होंगी।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
2: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
3: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
2: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
4: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
2: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही

0: नियुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
2: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
3: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
4: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
5: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी

0: असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक

0: 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 9:15 हो रहे हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तिजामात हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तजामात हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज़ के खातिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के इल्जामात का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने बार बार ये वजाहत की है कि कोई गोली नहीं चली और सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि नीट मामले पर तलबा का एहतजाज तशद्दुद या नफरत नहीं था, बल्कि नौजवानों का एक शदीद इजहार था और सभी सियासी पार्टियों को इसका एहतराम करना चाहिए। राज्यसभा ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। ये बिल कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। मुजवजा कानून कौमी तराने, जनगणमन की तरह वंदे मातरम को कानूनी तहफ़ फराहम करेगा। इसकी खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल को मंजूर किए जाने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, जबकि राज्यसभा में कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में पैदायश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। ऐवान ज़ेरी ने एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक कानून का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत कार में भी पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक तौसी कर दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी और इस वजह से दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात नहीं हो सका। कल लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाना है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के जाने

0: से मरकजी वजीर दाखला पर आज लोकसभा में किए गए तबसरे पर एसपी सिंह बघेल, रामदास आठोले और हर्ष मल्होत्रा समेत कई मरकजी वजीरों ने तनकीद की है। पार्लियामेंट के अहाते में आकाशवाणी से खसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर की जानिब से ऐवान में इस्तेमाल की गई जबान पार्लियामानी कार्रवाई के लिहाज से गैर मुनासिब थी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क तकरीबन 6 दहाइयों के तशद्दुद के बाद बाएं बाजू की उस इंतहा पसंदी से आजाद हो गया है जिसे कभी दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर किया जाता था। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने बताया कि ये हसूलियाबी बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए कौमी पॉलिसी और एक्शन प्लान के मजबूत नफाज और मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल पर मबनी कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सकी। जनाब राय ने ऐवान को बताया कि फिलहाल कोई भी जिला बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा करार नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे ने हालिया बरसों में हुकूमती इकदामात और सनती इस्लाहात की बदौलत काबिल जिक्र तब्दीली का मुशाहिदा किया है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क बतदरीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर उभर रहा है। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड ईडीएफ हुकूमत हिंद की एक ऐसी ही पहल है जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट से तहरीक पाने वाली इख्तरा को फरोग देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के ज्यादातर हिस्से में लगातार सैलाब और नदियों में पानी की कसीर मकदार ने रियासत को संगीन इंसानी बहरान में मुबतला कर दिया है। इसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई है और हजारों अफराद बेसहारा हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि 304 ग्राम पंचायतों के तकरीबन 3,80,000 अफराद मुतासर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इंतजामिया ने तेजी से बदलती सैलाबी सूरत हाल और उथल पुथल भरे हालात के दरमियान राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सतह आब में हुए इजाफे की वजह से बेतरानी नदी केवंझर, जाजपुर और भद्रक जिलों के अपने तास में कहर बरपा कर रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालासोर में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनी हुई है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने नवापाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे सैलाबी सूरत हाल के मजीद बिगड़ने के खदशात बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में गुज़श्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर है। बस्तर डिवीजन, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी समेत मुख्तलिफ जिलों में बड़ी नदियों में तुगयानी आ गई है, जिसके नतीजे में कई गांवों से सड़क राबता मुनक़ता हो गया है। कई सड़कों पर पानी के बहने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासर है। मजीद तफसील हमारे रायपुर के नामा निगार से।
1: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पानतोरा में तालिबात के रिहायशी स्कूल में पानी घुस जाने के बाद 50 से ज्यादा लड़कियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में कुछ स्कूलों में पानी भर जाने से आज तातील का ऐलान करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के वजीराला विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों और दीगर अफसरान को अलर्ट पर रहने और जरूरी एहतियाती इकदाम करने की हिदायत दी है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के लिए बालोद और कांकेर जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए माहिर मौसमियात डॉक्टर गायत्री वानी ने कहा कि रायपुर, दुर्ग और जुनूबी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा से बात की और बालाई आसाम में तबाहकुन सैलाब के पस मंजर में जारी राहत सरगर्मियों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में आसाम के वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने जमीनी सूरत हाल से मुतालिक मालूमात हासिल की और यकीन दिलाया कि मरकज सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत, बहाली और तामीर नाव के लिए दरकार हर जरूरी मदद की फराहमी जारी रखेगा। इस दौरान ओडिशा में सैलाब से पैदा हुए हंगामी हालात में शिद्दत आ रही है, क्योंकि नदियों में सतह आब में इजाफे की वजह से हजारों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीर के रोज रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक्किदा एक मार्च के दौरान

विविधता के श्रोताओं को सतीश विमल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के विविधता कार्यक्रम में सुनते हैं शफी मोहम्मद मीर से उनकी कविता लाल बहादुर शास्त्री पर बात करेंगी रुखसाना। रोशनलाल काचरू की कहानी भी कार्यक्रम का हिस्सा है। खाने के समय के बदलने के फायदों की बात करेंगी साइमा मंसूर और वाल्मीकि जी पर चर्चा करेंगे हिलाल अहमद भट्ट। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शफी मोहम्मद मीर से उनकी ये नातिया कविता।

किसी जननी ने इतना उज्जवल आज तलक ना जाया है। ज्योति वाला आया है, ज्योति वाला आया है, ज्योति लेके आया है, ज्योति लेके आया है, ज्योति वाला आया है, ज्योति वाला आया है। झलक

तू सकल जगत के अंधियारे को तेज से भेदने आया है, ज्योति वाला।

उसकी प्रशंसा मीर करे क्या, उसकी प्रशंसा ईश प्रशंसित आया है। ज्योति वाला आया है, ज्योति वाला

0: और चालाकी से देश की कयादत की। फौजियों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान को जंग में हार का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी की कयादत की तारीफ हुई। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच अमन शांति मुजाकरात के लिए ताशकंद में बातचीत हुई। 10 जनवरी 1966 को मुश्तरक मंशूर पर दस्तखत हुए और इसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया।
1: ये थी रुखसाना और आइए अब सुनते हैं रोशन लाल काचरू से उनकी कहानी।
2: अपने समय के प्रतिष्ठित पुरुषों को, आपके बने निस्सहाय वृद्धों को वृद्धाश्रम में पड़े देखकर ये कहानी लिखी है। वृद्धाश्रम पहुंचा दीनानाथ। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं, बैठा हूँ। आपने सुना कि दीनानाथ को ओल्ड एज हाउस में पहुंचाया गया? हाँ हाँ, क्या हुआ तुम्हें? क्या बोलते हो? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सच बोल रहा हूँ, विश्वास करिए, सच बोल रहा हूँ। ये बात की थी टेलीफोन पर, मेरे एक मित्र बिहारी लाल और मेरे बीच। टेलीफोन की कॉल ऐसी दुखद थी कि सूचना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। बेसुधी ऐसी छा गई मानो मेरे पैरों तले भूमि खिसक गई हो और मैं उसी में दंस गया। अकस्मात मेरे नेत्रों के सामने दीनानाथ नाम में परिवर्तन की आकृति का एक चित्र खड़ा हुआ। वो दीनानाथ जिसके साथ मिलजुल कर एक ही कार्यालय के करीब 125 सहकारियों ने लगभग 25 वर्ष पारस्परिक दुख सुख सहकर गुजारे। एक प्राइवेट कार्यालय होने के कारण जहां कहीं किसी ट्रांसफर की संभावना नहीं थी, आपसी प्रेम भाव आदर सत्कार ऐसा बढ़ गया था जैसे एक परिवार के सदस्य रहे हूँ। दीनानाथ MBBS की डिग्री वाला, अपने समय का एक आदरणीय वरिष्ठ कर्मचारी, एक गुणवान मनुष्य, हर क्षेत्र में हर फनमौला, मिलनसार, सबका शुभचिंतक, एक हृष्ट पुष्ट युवक, छाती तान कर कष्टों का प्रश्नोचित सामना करने वाला वीर मनुष्य, अपने क्षेत्र का एक निडर, निपुण, कौशल, कर्मनिष्ठ, आदरणीय कर्मचारी, हर प्रकार के बोझ को अपना कंधा देने वाला एक कर्मठ हंसमुख पुरुष, सबों का हितैषी, एक आज्ञाकारक बेटा, एक शुभचिंतक भाई, एक सफल पति, अपनी प्रीतमा का प्यारा रक्षक, एक सहायक आशावान सिद्ध पिता, अपने परिवार का एक सफल संचालक, अपनी युवस्था का एक तैराक, एक खिलाड़ी, एक पर्वतारोही, देशी विदेशी यात्री, यौवन कलाओं से विभूषित एक स्वावलंबित युवक। पर दीनानाथ हारे बुढ़ापे, वृद्धावस्था में पड़ा एक परावलंबी हीन दृष्टि वाला ये अस्थि पंजर विदुर, तब का परोपकारी और आज का वृद्धाश्रम वासी, अपने घर, अपने विश्राम स्थल, सगी संबंधियों से, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने वातावरण, अपने घर की मिट्टी से दूर, एकांत, पराया, दूसरों पर आश्रित एक परावलंबी निस्सहाय दीनानाथ। कारण कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, दोष किसी का भी हो, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, पर चिंता करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। क्या मानो इतना अमानो बना है? क्या समय इतना बुरा आ गया है कि आशाओं भरा अपने समय का एक प्रतिष्ठित युवक मुंह ताकता वृद्धाश्रम में प्रविष्ट हो? इतनी असहनशीलता आई है समाज के ऐसे मनुष्यों में कि अपना एकदम सब कुछ भूलकर किसी के या अपने क्रूर वश में आकर पराया बन बैठे? क्या सत्यायोग से आती शिक्षाएं अमूल्य और प्रभावित हैं, अप्रभावित हैं इस कलयुग में? क्या आज्ञापालक पुत्र राम, मर्यादा पुरुष राम, भगवान राम कोई नहीं था? बालक श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर देश देशाटन करने नहीं ले गया था? क्यों हो गए हैं हम सब भूल ये इस मिथ्याचारी संसार में? क्यों रक्षक होकर हम भक्षक बन बैठे हैं? क्यों भूल गए हैं अपनी मर्यादा, अपना कर्तव्य, हम अपना भी भविष्य क्या होगा क्यों नहीं सोचते हैं हम? दीनानाथ जैसे सब जाति के पुरुष पुत्रों के पुत्रों से संबोधन, चाहे आप भूषण चमन, प्रताप कादिर खुर्शीद, राजविंदर, जॉन विलियम

आदि क्यों न हो। ऐसी परिस्थिति के जन्मदाता निर्माण करता याद रखे, माता पिता तो ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, इनका ऋण चुकाना होता है। आयु भर मात्र पितृ ऋण हम चुका नहीं सकते हैं, पर चुकाने का प्रयत्न करते रहना संतानों का परम कर्तव्य है। चाहे इसके लिए हमें संताप पर संताप क्यों न सहने पड़े, संतान को माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी लाठी बनकर, उनके बच्चों जैसे नाज नखरे सहकर, रात गए उनके सिर पैर दबाकर, उन्हें आराम की नींद सुलाकर, स्नान गृह शौचालय में उनका सहारा बनकर, दवाई दूध नाश्ता भोजन आदि कराकर, यानी उनकी वांछित इच्छाएं पूरी करके, अपनी ज्ञान बुद्धि के प्रकाश का उपयोग करके एक सुपात्र बनकर उनके ऋण चुकाने का प्रयत्न करना अपना परम कर्तव्य समझकर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। एक लोकोक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। संक्षिप्त उदाहरण है, एक पुत्र को अपने वृद्ध पिता के आचार विचार, बोल चाल, व्यवहार अपसंद नहीं आते थे। इस पर भी उसे अपने परिवार वालों के सर्वदा ताने व्यंग्य सुनने पड़ते थे। सारा वातावरण उसके लिए असह्य बन गया था। उसने तंग आकर तय किया कि क्यों न पिता को वन में छोड़ाऊं और छुटकारा पाऊं। एक दिन उसने ऐसा ही किया। पिता को कंधों पर उठाकर वो वन की ओर निकला। बीच वन में पहुंचकर उसे एक खुली बड़ी चट्टान दिख पड़ी। सोचा क्यों न पिता को इस चट्टान पर छोड़ दूं और घर का मार्ग लूं। वो इसी विचार से चट्टान के निकट पहुंचा। कंधों पर सवार पिता की दृष्टि उस खुले चट्टान पर पड़ी। उसके ऊपर उसे एक कंकाल दिख पड़ा। याद आया, एक दिन उसने अपने वृद्ध पिता को ऐसे ही कंधों पर सवार करके इसी चट्टान पर छोड़ा था जो गिद्ध चीलों कौओं का शिकार बना है, और उसका कंकाल बच्चा यहाँ पड़ा है। एकदम पिता के मुंह से चीख निकल पड़ी। वो चिल्लाया, नहीं बेटा, यहाँ नहीं, इस चट्टान पर नहीं। वो बेटे से जार जार याचना करने लगा कि उसे किसी और चट्टान पर, किसी दूसरी दिशा छोड़ दे, पर इस चट्टान पर नहीं, क्योंकि उसने इसी भांति अपने पिता को कंधों पर सवार किए एक दिन इसी चट्टान पर छोड़कर घर का मार्ग लिया था, जो अब गिद्ध चील कौओं का ग्रास बनकर कंकाल के रूप पड़ा है। पिता की करना भरी पुकार सुनते ही पुत्र के होश उड़ गए। उसे अपना बुढ़ापा याद आया। क्या फिर मेरा भी बेटा ऐसे छोड़कर भाग जाएगा मुझे? वो होश में आया, उसमें सद्बुद्धि आई, पिता से क्षमा याचना की तथा सम्मान सहित वापस उसे घर लाया। वृद्ध स्त्री पुरुषों से संबोधित है ये। समय के बदलने से युवाओं और वृद्धों की आयु में बढ़ोतरी के कारण दोनों की विचारधाराओं में भिन्नता आती है। युवक युवावस्था में नए नए उपकरणों के संचालन की क्षमता रखता है, नए समाज का वासी है, नई परेशानियां भी है, नई उमंगें वास करती है, नए समाज का सामना करना पड़ता है। उसे दिन रात परिश्रम करने पर भी दो जून की रोटी जुटाना कठिन दिख पड़ता है। उसका जीवन कश्मकश से भरा पड़ा है। वृद्ध को चाहिए अपनी रूढ़िवादी की विचारधाराओं को तर्क करे, समय के साथ अपने स्वयं को बदल दे, अपने आयु भर के अनुभवों से सोचे कि युवक और वृद्ध की सोच में और दैनिक व्यवहार में पृथ्वी आकाश का अंतर है, जनरेशन गैप है, समय के साथ समझौता करना है, संयम से काम लेना चाहिए, घर गृहस्थी का आदर सम्मान रखना आवश्यक और अनिवार्य है। युवकों से भी अनुरोध है कि वृद्धों का सम्मान करें, उन्हें सम्मान की अपेक्षा होती है, इनके चले जाने से ऐसा न पछताना पड़े, उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर था आईना साफ करता रहा। अब दीनानाथ के नाम, ईश्वर भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं, विधाता ने जीव के जन्मते ही उस अन्न जल जलवायु स्थान समय आदि सब का प्रबंध किया होता है, पर जीव को इसकी भनक भी नहीं लगती। हम कृतज्ञ बनते हैं पर वो सर्वदा कृपालु रहते हैं। जब हमारा रहन सहन अन्न जल कितनी देर कहाँ किस समय सब स्थान सब निर्धारित है, तो चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या ठीक कहा गया है। और

0: खत्म हुआ उस डाली का, जिस पर था तेरा आब वदाना। चल उड़े जा रे पंछी,
1: उठो दीनानाथ जी, दृढ़ संकल्प करो कि तुम्हें अब दूसरों के नियमों का पालन करना है। पहले तुम स्वयं दूसरों के लिए नियम बनाते थे, अब नियम सुनो और उन पर चलो। आप एक शिक्षित पुरुष हैं, अपने दृढ़ संकल्पों से, अपने अनुभवों से, अपनी शिक्षा से इस वृद्धाश्रम को अपना जानकर स्वर्ग आश्रम बना सकते हो। आप वो मनुष्य हैं जो दिखा सकता है कि वृद्धों में भी दम है। उठो अपनी अमृतवाणी से नीरस कंठों में अमृत की धारा चला दो। आप पहले भी दीनों के दीनानाथ थे और आप भी वही बनो। कभी मन में नहीं विचारना अब क्या होगा तेरा दीनानाथ। सुमरन रहे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्य है वे संतान जो पूजा स्थल पर अपने माता पिता का चित्र रखते हैं, ईश्वर का रूप मानकर दिवंगत होकर भी उनसे आशीर्वाद पाते रहते हैं। धन्य है वे महानुभाव जो चिकित्सालय, धर्मशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम खोलकर निस्सहायों के सहायक बनते हैं। इस कलयुग में देखते भी है, एक माता पिता चार पुत्रों को पालते हैं, पर चार पुत्र एक माता पिता को नहीं पाल सकते हैं।
2: आप रोशनलाल काचरू को सुन रहे थे। श्रोताओं, खाने का समय बदलने से कम हो सकता है शरीर का वजन, ये कह रही हैं साइमा मंजूर।
3: यूनिवर्सिटी ऑफ सर्वे की तरफ से टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग पर 10 दिन के एक सर्वे के नतीजे के मुताबिक दावा किया गया है कि खाना खाने का समय जिस्म की साख पर अहम असर करता है। इस मुताले में हिस्सा ले रहे लोगों को किसी तरह के खान पान का पालन नहीं करना था और वो जो मन करे खा सकते थे। मुहक्कीकीन ने सर्वे में हिस्से लेने वालों को दो ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप में शामिल लोगों ने पहले की तरह ही खान पान का पालन किया और दूसरे ग्रुप में शामिल लोगों को आम दिनों के मुकाबले में ब्रेकफास्ट 1.5 घंटे देर से और डिनर 1.5 घंटे पहले करने को कहा गया। हर भागीदार ने सर्वे के दौरान एक डाइट डायरी में अपनी खान पान और उसके टाइम को नोट किया। सर्वे से पहले उनके खून के नमूने भी लिए गए और बाद में उनसे एक सवालनामे के जवाब देने को भी कहा गया। सर्वे के नतीजे से पता चला कि जिन लोगों के खान पान के समय में बदलाव किया गया था उनका औसतन वजन 2 किलो तक कम हो गया। सवालनामे से ये भी पता चला कि 57% भागीदारों ने अपने खाने की मकदार में भी कमी दर्ज की, जिसकी वजह भूख कम लगना था। इस सर्वे से मिले नतीजे के आधार पर मुहक्कीन का कहना है कि खाने का समय बदलने से लंबे समय में शर्त या फायदा होता है। हालांकि खाने का समय बदले गए ग्रुप के 57% लोगों का कहना था कि बदले हुए समय के मुताबिक खा पाना आम जिंदगी में उनके परिवार और सामाजिक जिंदगी के हिसाब से कारगर नहीं होगा। दूसरी तरफ 43% लोगों का कहना था कि वो बदले हुए वक्त के मुताबिक डाइट का पालन करने पर गौर कर सकते हैं, अगर खाने के वक्त में थोड़ा बहुत बदलाव करने की छूट हो। बेशक ये सर्वे थोड़ा छोटा है, फिर भी इससे मिले नतीजे से साफ हो गया है कि खाने के समय में बदलाव करके भी अपना वजन कम करने में अहम मदद मिल सकती है और जिस्म को कई फायदे हो सकते हैं।
2: आप साइमा मंजूर को सुन रहे थे। संस्कृत के विख्यात कवि ऋषि वाल्मीकि पर बात करेंगे हिलाल अहमद भट्ट।
4: महायोगेश्वर, महान तेजस्वी, आदि कवि, आदि गीतकार और करुणा सागर वाल्मीकि जी ने पूरी दुनिया के कल्याण के लिए शरद पूर्णिमा को तमसा नदी के किनारे प्रकट हुए। आदिकवि वाल्मीकि जी ने श्री राम के किरदार पर मबनी महाकाव्य श्री रामायण की रचना की। इस महाकाव्य की रचना भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में की, इसलिए उनको संस्कृत काव्य का पितामह कहा जाता है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 100 अख्यान, 500 सर्ग समेत 7 कांडों की रचना की। अपनी अमर कथा महाकाव्य रामायण में वाल्मीकि जी ने श्री राम कथा के जरिए इंसानी तहजीब के बारे में

0: वैदिक साहित्य में दर्ज मजबूत और सुनहरी हकायक की ऐसी हैरतअंगेज तस्वीर पेश की है जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है और मुस्तकिल कदरों और कीमतों से भरपूर है। वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रामायण की रचना उस वक्त की मातृजुबान संस्कृत में की ताकि आदर्श जीवन के उसूल आम लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि समाज मातृजुबान की पकड़ में जल्द आ जाता है। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों में नेक राह पर चलने का हौसला बढ़ा, इंसानी जिंदगी और समाज में सुधार आया, समाज में बदलाव और लोगों को नेक राह पर गामजन करने वाले वाल्मीकि जी पहले क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। समाज को मर्यादा में बांधने के लिए उन्होंने एक अमर कथा के जरिए इंसानी कदरों के अथान और समाज को सही सिमत की तरफ मोड़ने की कोशिश की, पर उस तरफ मोड़ने से पहले एक बहुत ही दुख देने वाली घटना पेश आई। एक बेरहम शिकारी ने तमसा नदी किनारे पर बैठे करोच परिंदे के जोड़े में से नर परिंदे को अपने पान से मार दिया। इस मंजर को देखकर वाल्मीकि जी का दिल बेचैन हो उठा और उसके मुंह से दुनिया का पहला श्लोक निकला। यहाँ सवाल सिर्फ एक परिंदे की हत्या का नहीं था, असल में बात तो जुल्म और बेइंसाफी की थी। समाज की मर्यादा भंग हुई थी। वाल्मीकि जी ने जिंदगी के उस पक्ष के लिए एक दीपक के रूप में काम किया। महाकाव्य रामायण में जहाँ उन्होंने श्री राम के किरदार के जरिए बड़ों की फरमान बरदारी, पात्र प्रेम और शास्त्र विद्या, संगीत, सियासत, साइंस वगैरह गुणों का जिक्र किया, वहीं उन्होंने पहले महाकाव्य श्री योग विशिष्ट की तख्लीक करके समाज का बड़ा आधार किया। महाकाव्य श्री योग विशिष्ट में वाल्मीकि जी ने मुक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए राह में आने वाली सभी उलझनों और मुश्किलों का तफसील के साथ जिक्र किया है। इस ग्रंथ में वाल्मीकि जी ने बताया है कि इंसान को दुनियावी सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख तो हमेशा दुख से पैदा होता है। इंसानी जिंदगी का अहम मकसद मुक्ति प्राप्ति है। मुक्ति का मतलब इच्छा और मोह का नाश। इच्छा दुख की वजह है। जब इच्छा ही खत्म हो गई हो, दुख तो खुद ही खत्म हो जाते हैं। यही मुक्ति है। इंसानी जिंदगी का मकसद अपने वजूद को पहचानना है। वाल्मीकि जी योग विशिष्ट में कहते हैं कि मुक्ति तप करने से, दान करने से या फिर तीर्थ यात्रा करने से हासिल नहीं होती। मुक्ति सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से ही मुमकिन है। मथुरा के राजा जनक की बेटी माता सीता, राजा दशरथ की पुत्र राजा राम की धर्म पत्नी और लोह और कश की माता थी। लोह और कश दोनों भाई धर्म के जानकार और तेजस्वी बालक थे। वाल्मीकि जी ने दोनों भाइयों को महाकाव्य श्री रामायण का मुताला करवाया और इसके साथ ही गीत, संगीत और अस्त्र शस्त्र की तालीम भी दी। कल्याणकारी भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में पकड़ी हुई कलम तालीम और इल्म हासिल करने की तरफ इशारा करती है। किसी शायर ने वाल्मीकि जी हाथ पकड़ी हुई कलम की तारीफ करते हुए कहा है कि ये कलम वो ताकत है जो तलवार को भी झुकाएगी। वाल्मीकि कलम ही धरती पे स्वर्ग को लाएगी। इस जमीन से आसमान तक कलम का ही नूर है। वाल्मीकि कलम में देखो तो कितना सुरूर है। अगर हमें कलमदारी वाल्मीकि जी की दया दृष्टि हासिल करनी है तो उनकी कलम यानी तालीम और ज्ञान प्राप्ति की राह पर गामजन होना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है।
1: ये थे हिलाल अहमद भट्ट।
2: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक दीजिए सतीश मेमल को अनुमति। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। आदाब।
3: आप प्रोग्राम सुन रहे थे विविधता। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
4: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो تشہیر کا سب سے آسان اور

0: हलाहुमा फिल गजल,
1: तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। मैं मोहब्बत में इस मकाम पे पहुंचा हूँ, मैं मोहब्बत में इस मकाम पे पहुंचा हूँ, मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है नसीर अहमद हुर्रा।
1: जैसे कि आप जानती है दीदी, 36 दिन के बाद आज मेरी आपसे बात की। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई लिसनर बहुत दिनों के बाद फोन करता है, बहुत ही मजा आता है। देखो मैं आपको
0: जरूर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करम करें।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मेरी आज 1.5 महीने के बाद रिसीव किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं।
1: साथियों का नाम लेना चाहता हूँ,
0: आपने अपनी पसंद नहीं बताई अभी।
1: चलिए मैम आज मैं आपकी तुम से छोड़ देता हूँ, आप सुनाइए अपनी पसंद पर कोई गजल। ये तो मत पूछना कि मुझे आपके साथ बात करने का बहुत शौक होता है, गजल तो फरमाइश का बहाना होता है।
0: बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन है आपके साथी जो आप साथ सुनेंगे।
1: मंजूर अहमद और है मेरा एक दोस्त मोहम्मद अल्ताफ
0: जी।
1: मेरे जो बेस्ट दोस्त हैं वो तरगाम जरीपुरा में रहते हैं, ये हैं शौकत अहमद बट और साजिद अहमद मगलू।
0: नसीर आपने कॉल किया इसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद।
1: आपका भी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: आप बताएं आप कैसे हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआ होनी चाहिए।
0: हमारी दुआएं साथ हैं। बताइए अपना नाम।
1: मैं साहिल अशरफ बोल रहा हूँ, मूसा पारा इंद्रकूट से। दीदी
0: साहिल, अक्सर बेशतर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप।
1: जी दीदी, जी दीदी।
0: अच्छा बताएं साहिल, क्या काम करते हैं?
1: घर में ही काम करता हूँ, कालबाप का।
0: अच्छा, कालीन बनाते हैं।
1: जी दीदी,
0: क्या अच्छी बात है। अच्छा बताएं आज क्या सुनेंगे?
1: आज एक गजल की फरमाइश करनी है दीदी। जगजीत सिंह ने एक गजाई है,
0: कौन सी?
1: गुलशन भी फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है।
0: जी बहुत ही प्यारी गजल है।
1: जी दीदी, मेरे साथ कुछ साथी भी है।
0: नाम बता के।
1: सबसे पहले आप सुनेंगे दीदी मेरे साथ, और बहजी बिना

0: हेलो, मैं फिले गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी दीदी, खालदा बात कर रही हूँ, खागम त्रिपुरा से। आप हो ना?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो?
1: बस शुक्र अल्लाह का।
0: बताओ खालिदा, आज आपके लिए हम क्या पेश करें?
1: जी आबिदा परवीन जी ने एक गजल गाई है।
0: कौन सी गजल?
1: अरे ओ गो तुम्हारा क्या है, मैं जानू मेरा खुदा जाने।
0: आहा, बहुत ही अच्छा कलाम है।
1: हाँ बहुत ही प्यारी गजल है। और एक बार मैंने सुना था तलहा जहांगीर रहमानी साहब है, उन्होंने बोला था कि मेरी ये फेवरेट गजल है।
0: अच्छा, उसी वजह से आपकी भी फेवरेट बन गई, उनकी फेवरेट है?
1: मुझे वो बहुत फेवरेट है क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी वो रो पे आते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं हम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बताइए आपके साथ कौन है जो ये गजल सुनेगा?
1: पहले तो आप सब लोग हमारे साथ सुनेंगे और मेरी कुछ दोस्त फेरा यासमीना दिलशादा और इस प्रोग्राम के सभी लिसनर।
0: खालिदा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंदीदा गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: चमकी चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, क्या बात है। गजल आपने सुनी गुलाम अली की आवाज में, प्रोग्राम की आखिरी पेशकश थी। अब आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहें, लेकिन आपको बताना चाहेंगे अगर आप भी हमारी इस महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, शनिचरवार 12:30 बजे से दिन के 1 बजे तक।
0: हमारा टेलीफोन नंबर है 2480364। तो हम इंतजार करेंगे आपकी फोन कॉल्स का। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, शुभ बखैर।
2: गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना,
3: जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना।
2: फैसला तुमको भूल जाने का, महफिले गजल।
4: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है, शब के 11 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और

0: पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा बुजुर्गानी खतर। प्रोग्राम के मेहमान हैं सूफी शायर फारूक अहमद भट्ट इब्ने गुलडून, मेज़बान गुलाम रसूल आखून।

10 बजे साइंस सीरियल पेश होगा, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। पंजाबी मैगजीन समाप्त करें शब 10:30 पर।

रात 9 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। प्रोग्राम का मौजू है मौसमी तब्दीली के दौरान कलाम में एहतियात। इस मौजू पर बात करेंगे प्रोग्राम के रूह रवां हजरत मौलाना फयाज अहमद जोरू साहब दामद बरकातहुम। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा। सुनना भूलिएगा सुपानसर प्रोग्राम हम सफर कल रात 9 बजे।

प्रोग्राम सुबह का ही पेशे खिदमत होगा सुबह 6:35 पर, सुबह 7:10 पर लाइव मॉर्निंग शो समाप्त करें पैजामे सोप।

सुबह 10 बजे प्रोग्राम पेश होता है सूफी सदा। कल के प्रोग्राम का मौजू है कृष्ण मसनवी मंस सूफी रंग, तहरीर पेशकश गुलाम रसूल आखून।

इरफाना यूसुफ और साथी सूफियाना मौसीकी पेश करेंगे दिन के 11:30 पर और फिर दोपहर 2:30 इनसे आप मकाम सिंदूरी और मकाम तलंग सुनेंगे दिन के 11:30 पर और फिर दोपहर 2:30 वजन सा रास्ता होगी दोपहर 12:40 पर दिन के 1:10 पर NCERT का तारकर्दा स्पॉन्सर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम पेश होगा सपहर 3:00 पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4:00 नश्र होता है।

गुलाम रसूल बगतियार और साथी चलंत पेश करेंगे सफर 4:45 पर। गोजरी प्रोग्राम समाप्त करेंगे शाम 5 बजे। दयाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात वाकयात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरबीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त नशरिया ही रात 8 बजे। समीन यह कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:15 हुई हमारी आज की मर्जी पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। शब बखैर। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ ऋतिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, क्योंकि भाई अब आ चुकी हैं स्टूडियो में अंजू निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक

0: वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की 2 समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे आईआरजीसी को मदद मिलती है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Dr. Singh criticized Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier, participating in the discussion, Congress MP

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 11:12:24। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, नींद से कह दो कि अब हमसे कोई वास्ता ना रखे, क्योंकि दिल ने अब जागने का नया बहाना जो ढूंढ लिया है।

आंखें बंद करके बस तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, जैसे रूह में उतर आए हो तुम किसी ख्वाब की तरह।

आंखें बंद करके बस तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करते हैं इस तरह, जैसे रूह में उतर आए हो तुम किसी ख्वाब की तरह।

देख लो तसल्ली हमारे दिल की, देख लो तसल्ली हमारे दिल की कि दिल ने फिर कहा है तुम आओगे जरूर, यही भरोसा हर सांस में रहा है।

अच्छा एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मोहब्बत है किसी से तो इसे छुपाते क्यों हैं, ये जानते हुए भी कि धुआं वहीं उठता है, यानी पता तो चल ही जाता है ना इस दुनिया को, या यूं कहें कि मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि मालूम होता है कि नहीं मालूम होती है।

लोग तो वजह ढूंढते हैं जीने की दुनिया में, लोग तो वजह ढूंढते हैं जीने की दुनिया में, और मेरे जीने की वजह तो बस तुम्हारा साथ है।

दोस्तों कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के सम्मान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग

0: और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप निवेशक और नीति निर्माता शामिल होंगे। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान की दो समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे आईआरजीसी को मदद मिलती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को हराया। इस जीत के साथ जैस्मिन ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, "The amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases." Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned.

समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुहानी का। एक बार मैं अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जरा देखो, रात खामोश है और ये पूर्णिमा का चांद चुपके से कह रहा है कि कोई दूर बैठा आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही यादों में बह रहा है।

तू तो रात भर उसके घर की मुंडेर पर भी चमकता है ना, तू तो रात भर उसके घर की मुंडेर पर भी चमकता है। ए चांद बताना, क्या वो मेरी तरह भी करवटें बदलता है।

कोई सवाल मत पूछना आज मेरी उदासी का सबब, कोई सवाल मत पूछना आज मेरी उदासी का सबब, बस सीने से लगा लो ताकि धड़कने सुकून की सांस ले सकें।

कोई सवाल मत पूछना, आज मेरी उदासी का सबब बस सीने से लगा लो ताकि धड़कने सुकून की सांस ले सकें।

लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तुम्हारी चाहत के आगे, लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तुम्हारी चाहत के आगे, बस धड़कनें धीरे से पूछती हैं क्या हम इस बेपनाह मोहब्बत के काबिल हैं।

दूरी अब सहने की हद से गुजरने लगी है, दूरी अब सहने की हद से गुजरने लगी है, कि आप ही जाओ कि ये दिल की धड़कन अब बिखरने लगी है।

न जमाने की परवाह न जन्नत की चाहत है, न जमाने की परवाह न जन्नत की चाहत है, तेरे कंधे पे सिर रख कर कटें कुछ पल, बस यही दिल की राहत है।

दोस्तों, हम आपसे भी कहेंगे कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद यानी 2:10 पर रात सुरमेरी लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी मैं। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया

0: मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग के अनुसार इन प्रतिबंधों के अंतर्गत 8 तेल टैंकरों और 10 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर दबाव डाल रही है और उनसे अनिवार्य समुद्री बीमा लेने के लिए मजबूर कर रही है। अमरीका ने कहा है कि ये कदम ईरान के अवैध तेल व्यापार और गुप्त जहाज बेड़े पर दबाव बढ़ाने की उसकी नीति का हिस्सा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश ने ग्लासगो में 20.46 सेकेंड में रेस पूरी कर जीत दर्ज की। उन्होंने कैमरून के इमैनुअल एसेमी को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। The Lok Sabha has passed the tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said, the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. The government has said that the country became free from left-wing extremism after nearly 6 decades of violence, which was once considered one of the biggest threats to the internal security. In reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said that this has been achieved with resolute implementation of the National Policy and Action Plan to address left-wing extremism 2015 and the coordinated efforts of centre and state governments. He informed the House that at present no district is categorised as LWE affected. Government has said that it has taken significant steps to strengthen the forensic ecosystem in the country through various schemes, including Nirbhaya Fund, having consolidated financial outlay of more than 4,800 crore rupees.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 31 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं अंजू, आपके साथ लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत गीतों भरा कार्यक्रम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी तो ठीक से तुम्हें आंखों में उतारा भी नहीं था, अभी तो ठीक से तुम्हें आंखों में उतारा भी नहीं था कि तुम घड़ी की सुइयों को देखकर उठ खड़े हुए। ये तो हमारा करार नहीं था।

रुक जाती है धड़कन तुम्हें अपने पास पाकर, रुक जाती है पाकर, संभालो मुझे कहीं खो ना जाऊं मैं तुमसे दिल लगाकर।

मंजिल की तो कोई चाहत नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। मंजिल की तो कोई चाहत नहीं, सफर खूबसूरत होना चाहिए। तुम कदम से कदम तो मिलाओ, हम इस मोहब्बत को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।

तेरी चाहत के नशे में चूर हैं हम, अब संभलने की बात ना करो। तेरी चाहत के नशे में चूर हैं हम, अब संभलने की बात ना करो। इस बेखुदी में जो सुकून है, उससे बाहर आने के लिए होश में आने की जिद हमसे ना करो।

दोस्तों अब होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेव। कार्यक्रम हमराही लेकर 3:10 से मुझे अनुमति दीजिए। जल्द मिलूंगी, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक

नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम कर लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकेंड का गेम्स रिकॉर्ड और अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगनकात ने 10.83 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया। ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 3:11 और 19 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब दिल में कोई ख्वाहिश जागती है तो वो एकदम से नहीं बल्कि बहुत नज़ाकत के साथ धीरे धीरे परवान चढ़ती है। तो आइए इस खामोश फिजा में थोड़ा रंग भरते हैं और धीरे धीरे मचलते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में। अभी आपने गीत सुना, आंखों की बातें तो बस आंखें ही करती हैं, आंखों की बातें तो बस आंखें ही करती हैं, दिल की तड़प को तो बस धड़कने समझती हैं। जब बात चले मोहब्बत और हसीन निगाहों की, तो फिर ये आंखें हर राज बयां करती हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से अभी आपने गीत सुना। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। आंखों में तेरी सूरत, दिल में तेरा ख्याल है। तू ना हो साथ तो हर लम्हा मलाल है। मत छोड़कर जाना कभी इस हम सफर को, तेरे बिना तो ये जिंदगी ही बेहाल है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आया सावन झूमके से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीसरी मंजिल से।

दोस्तों कहते हैं कि जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तब दिल की धड़कनें बोलने लगती हैं, और जब दिल किसी को सच्ची शिद्दत से याद करता है तो वो पुकार हवाओं के ज़रिए सीधे चाहने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, फिल्म है ज्वेल थीफ।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म काला बाजार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यादें किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। जब सन्नाटा गहराने लगता है और हवाएं थम जाती हैं, तब दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज़ आती है। वही पुरानी यादें जो दिल के गुलशन में हमेशा खिली रहती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म पतिता से ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से अभी आपने गीत सुना। धड़कने थमती नहीं जब तुम पास आती हो, धड़कने थमती नहीं जब तुम पास आती हो, खामोश लबों से भी तुम बहुत कुछ कह जाते हो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है मेरे हमदम, रूह को महका जाते हो।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म आवारा से ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है। वंदे मातरम विकसित भारत का संकल्प है। वंदे मातरम।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। अधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने का मात्र एक दिखावटी प्रयास है। जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9 लाख 17 हजार कम है। ये 1968 के बाद

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत हो गई है और सावन की फुहार जो सिर्फ ज़मीन को ही नहीं हमारे दिलों को भी भिगो देती है। जब हरी भरी टहनियों पर बूंदें गिरती हैं तो लगता है जैसे कुदरत खुद मुस्कुरा रही हो। आइए सावन को और यादगार बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है आया सावन झूम के से।

दोस्तों, जिंदगी के जो भी पल हैं उनको हंसी खुशी के साथ जिए, क्योंकि बाद में समय निकल जाने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम से। दोस्तों, अगर आपने गांव की जिंदगी देखी हो या कभी गांव में रहे हो तो आपको सोचकर बड़ा अच्छा लगता होगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और वहां का सादगी भरा माहौल दिल को छू जाता है। आइए सुनते हैं चितचोर फिल्म से के जे येसुदास की आवाज में ये गीत।

रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रोटी से।

दोस्तों, रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, पर अगर मन में जुनून और हौसला है तो जीत बिल्कुल निश्चित है, और फिर हर रास्ता आसान हो जाता है।

और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शोला और शबनम से अभी आपने ये गीत सुना। सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, बिल्कुल दोस्तों, सच की राहों पर भले ही भीड़ थोड़ी कम होती है, पर उस रास्ते पर चलने वालों की शान ही कुछ और होती है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म तीसरी कसम से ये गीत।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म यस बोस से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर हो जाता है।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भीगी पलक से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म भीगी पलकें से आप ही और दोस्तों आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही हमेशा बना रहे, पर अब साथ छोड़ने का वक्त आ गया है। हम आपसे मिलते रहेंगे, पर अभी अरुणिमा से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।